के दो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 50 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम भी 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। इस समय प्रातः के 6 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक

बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 196.2 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओ, भक्ति में ही शक्ति है। प्रभु को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हे गौरी के लाल, देवलोक के तुम सरताज, रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता, दीन दुखियों के भाग्य विधाता। सुन लो मेरी पुकार प्रभु, कर दो नहीं अपार।

सदा राम नाम की महिमा अपरंपार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। अर्थात कलयुग में मुक्ति पाने का सबसे सरल साधन राम नाम ही है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। स्वर थे अनूप जलोटा, अनुराधा पौड़वाल, सुरेश वाडेकर और साथियों की। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत आइए हम आपको सुनवाते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार।
1: महापुरुषों के जीवन समुद्र से निकला एक एक चिंतन रत्न जीवन के अंधेरे क्षणों को प्रेरणा के आलोक से जगमगा देता है। हम यदि उनके चिंतन पर मनन करें तो जीवन की दिशा ही बदल सकती है। सच तो यह है कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का पथ ही महापुरुषों की विचार विधियों से होकर गुजरता है। ऐसे महापुरुषों में एक अत्यंत विशिष्ट नाम है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, जिनके विचार आज भी वंदनीय हैं, अनुकरणीय हैं। बापू ने कहा था, सत्य से प्राप्त वस्तु का संग्रह भी सत्य से हो सकता है। आज जब लक्ष्य को पाने के लिए हम उचित और अनुचित साधनों को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर रहे हैं, गांधी जी का ये कथन हमें ये विचार करने पर विवश कर देता है कि यदि हमारा लक्ष्य सत्य का आचरण है तो उसकी रक्षा असत्य के द्वारा संभव नहीं।

0: दूसरे शब्दों में सात्य की नैतिकता अनैतिक साधनों से दूषित हो जाती है। वर्तमान समय में जबकि भौतिक सुखों की चखाचौंध में हम किसी भी लक्ष्य को कैसे भी प्राप्त कर लेना चाहते हैं, तब बापू के इस कथन को ध्यान में रखकर हमें अपने लक्ष्य के निर्धारण में तो सत्य की उपस्थिति का ध्यान रखना ही होगा। इसके साथ ही सत्य पर टिके उस लक्ष्य की रक्षा के लिए भी ऐसे साधनों की तलाश करनी होगी जो सत्य पर आधारित हों। आज चारों ओर हिंसा का एक उन्माद सा छाया हुआ है। हमारी सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को हिंसा का ये डरावना अंधकार धीरे धीरे निकलता जा रहा है। आज हम अहिंसा की क्षमता को भूल गए हैं। गांधी जी ने कहा था, सच्ची अहिंसा में इतनी अधिक शक्ति है कि भीषण से भीषण हिंसा उसके मुकाबले में टिक नहीं सकती। सत्य तो ये है कि अहिंसा के आचरण से हम में एक ऐसा नैतिक बल आ जाता है जिससे हम निडर होकर किसी भी प्रकार के हिंसक आचरण का सामना कर सकते हैं। हिंसा तो वो करते हैं जो अपनी आत्मा से दुर्बल होते हैं, जो दूसरों से और अपने आप से भी भयभीत होते हैं। जब हम आत्मबल के आधार पर एक बार अहिंसा को स्वीकार कर लेते हैं, तब हिंसा को हमारे आगे घुटने टेकने ही होंगे। हिंसा के इस उन्मादी दौर में यदि हम अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखकर अहिंसा की शक्ति को पहचान ले तो सचमुच हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। तब हिंसा का हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में कोई स्थान नहीं रहेगा और हम व्यक्ति से लेकर विश्व तक प्रेम की अमृत धारा प्रवाहित कर सकेंगे। आज हम भौतिकता को जीवन का मूल्य मान बैठे हैं। भौतिकता के इस प्रसार ने हमें इतना स्वार्थी बना दिया है कि हम अपने सुख और भोग विलास के लिए अधिक से अधिक साधनों का संग्रह करने की अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं। बापू ने कहा था, सुवर्ण नियम यह है कि जो चीज लाखों को नहीं मिल सकती उसे लेने से हम दृढ़ता पूर्वक इनकार करते हैं। हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग अपने जीवन को बचाए रखने के लिए गरीबी से संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं हो जाता कि इन निर्धन भाइयों के कष्टों से सच्ची सहानुभूति रखते हुए हम अधिक से अधिक भोग विलास की वस्तुओं के संग्रह पर अंकुश लगाएं? बापू की दृष्टि में सारा विश्व एक था। बापू कहते थे, अस्पृश्यता सहस्त्र फणों वाला एक सर्प है और जिसके एक एक फन में विषैले दांत हैं। आज ये सहस्त्र फणों वाला सर्प हमारे पूरे सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को विष में बना रहा है। बापू का ये कथन सच पूछिए तो हमारे देश के भविष्य के लिए एक गंभीर चेतावनी है। समय रहते यदि हमने इस सर्प के फन को नहीं कुचला तो छूत अछूत का ये वैषम्य हमारे विनाश का कारण बनेगा।
1: इस सूक्त में सृष्टि के आदिदेव हिरण्यगर्भ के प्रति
2: कार्यक्रम चिंतन के तहत अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। कार्यक्रम खेती की बातें में 6:45 पर सुनी जा सकेगी धान की उन्नत किस्म और पौध की तैयारी के विषय में डॉक्टर आरपी सिंह की वार्ता। प्रातः 7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर मधु राजपाल गर्मियों में स्वास्थ्य की देखभाल के विषय में जानकारी देंगी।

उषा शर्मा की गाई दो गीत हम आपको सुनवाएंगे दुख संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 9:45 पर। प्रातः 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा राग भटियार में सितार वादन, कलाकार होंगे पंडित निखिल बनर्जी। 11:00 आज के कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करेंगे संगीतकार और गायक हेमंत कुमार के बारे में और सुनाएंगे कुछ फिल्मी गीत। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में 11:30 पर फिल्मी गीतों के साथ चर्चा के विषय होंगे वन संरक्षण, पर्यावरण के लिए आवश्यक और देशभक्ति के प्रेरणा स्रोत हमारे स्वतंत्रता सेनानी।

शाम 12 बजे सुनीगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। दिन में 1:15 पर कार्यक्रम घर संसार में हम चर्चा करेंगे थार मरुस्थल के बारे में। इसी कार्यक्रम में मेरी माटी मेरा देश में हम बात करेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। साथ ही सुनेगा रमा वर्मा की कहानी जिसका शीर्षक होगा रश्मिया। शोभे माथुर के गाय भजन हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में 1:45 पर।

हमारी सांध्यकालीन सभा में फिल्मी भजनों पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या प्रस्तुत किया जाएगा शाम 5:10 पर। हमारे युवा साथियों के कार्यक्रम युवाणी में शाम 5:30 पर हम चर्चा करेंगे मरुस्थलीकरण के विषय में। इस कार्यक्रम के अन्य आकर्षण होंगे फिल्म संगीत। आप सुनेंगे ग्रीन इंडिया मिशन के विषय में नंदिनी गौर की वार्ता और जीने की कला का विषय होगा जियो और जीने दो। छह बजे ग्रामीण कार्यक्रम में सुनी जा सकेगी मेड़ पर लगने वाले लाभकारी पेड़ के विषय में प्रगतिशील किसान सुखेंद्र सिंह से श्री कृष्ण की बातचीत। लोकगीतों के साथ चर्चा का विषय होगा बीज उपचार का महत्व और बताया जाएगा मंडी भाव और मौसम की जानकारी। शाम 6:30 पर मसूर मंडल कार्यक्रम में सुनेगा ज्योति श्रीवास्तव की कहानी सौदा। साथ ही हम चर्चा कर बताएंगे मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के विश्व दिवस के विषय में। श्रोताओं शाम 7:10 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा राजवीर सिंह की वार्ता जिसका विषय होगा वन क्षेत्र बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्रियान्वित पहले। और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित मणि प्रसाद का राग कौशिक ध्वनि में ख्याल गायन।

श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। आपके सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस का।

राजा शीलनिधि की कन्या अनिंद्य सुंदरी विश्वमोहिनी के रूप पर आसक्त होकर देवर्षि नारद के मन में उसे प्राप्त करने का घोर मोह उत्पन्न हो गया था। अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन्होंने श्रीहरि का अनुपम रूप मांगा और जो रूप प्राप्त हुआ उसे लेकर बड़े अभिमान और विश्वास के साथ स्वयंवर में जा विराजे। वहां शिवजी के दो मनमौजी गण भी थे जिन्हें सब भेद मालूम था। ब्राह्मण का रूप धारण करके वे दोनों भी नारद जी की पंक्ति में बैठ गए। मुनिवर को अपने कल्पित रूप पर जितना गर्व हो रहा था शिवजी के गण उतना ही प्रसन्न होकर हंस रहे थे। देवर्षि नारद का बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर राजकुमारी विश्वमोहिनी के अतिरिक्त और किसी ने नहीं देखा। भय के साथ उसे क्रोध भी हो आया। हाथों में जयमाल लिए उधर से दृष्टि फेर कर वो सभा में घूमने लगी। नारद जी की ओर फिर उसने भूलकर भी नहीं देखा। ये सारी माया रचाने वाले भगवान भी राजा के वेश में वहां उपस्थित थे। विश्वमोहिनी ने जाकर जयमाल उनके गले में डाल दी। नारद जी की घोर निराशा और पराजय देखकर शिव जी के गणों ने कहा, जाकर दर्पण में अपना रूप तो देखिए। मुनि ने जल में झांककर जो अपना बंदर सा रूप देखा तो उनके क्रोध की सीमा न रही और उपहास करने वाले शिवजी के गणों को उन्होंने शाप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने मेरी हंसी उड़ाई, उसका फल भोगो। फिर किसी मुनि की हंसी न उड़ाना।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, गायक कलाकार थे कविता कृष्णमूर्ति और सुरेश वाडीकर। मीडियम वेव 196.9 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। कार्यक्रम खेती की बातें में आइए अब आपको सुनवाते हैं धान की उन्नत किस्म और पौध की तैयारी के विषय में डॉक्टर आरबी सिंह की वार्ता।
1: किसान भाइयों, धान देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। अपने देश की 3/4 जनसंख्या का जीवन यापन धान पर ही निर्भर है।

अतः यह भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। दूसरे प्रदेशों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में धान का औसत उत्पादन काफ़ी कम है, जिसे हम धान की उन्नत किस्मों के अच्छे बीजों को प्रयोग कर अच्छी पौध प्राप्त कर लगाने से बढ़ा सकते हैं। उन्नत किस्मों के बीजों में देसी प्रजातियों के बीजों की तुलना में उत्पादन देने की क्षमता अधिक होती है। अतः किसान भाइयों से अनुरोध है कि आज इस वार्ता के माध्यम से बताए अनुसार धान की उन्नत किस्मों द्वारा अच्छी पौध तैयार कर अपना धान का उत्पादन बढ़ाएं। यूँ तो धान की बहुत सारी किस्में इस समय बाज़ार में उपलब्ध हैं, लेकिन आगरा मंडल में धान की अच्छी पैदावार लेने के लिए समय से पकने वाली किस्मों में साकेत 4, गोविंद, अश्विनी, रत्ना, नरेंद्र 80, पंत धान 12 व IR 50 प्रमुख हैं। इसका अर्थ है कि ये किस्में लगभग

समय से पकने वाली किस्मों में साकेत 4, गोविंद, अश्विनी, रत्ना, नरेंद्र 80, पंत धान 12 व IR 50 प्रमुख हैं। इसका अर्थ है कि ये किस्में लगभग 100 से 120 दिनों में पक कर तैयार हो जाती हैं। इन किस्मों में से अश्विनी तो 96 से 110 दिन में ही पक कर तैयार हो जाती है। इन किस्मों से 45 से 60 कुंतल प्रति हेक्टेयर औसत पैदावार प्राप्त की जा सकती है। मध्यम समय में पकने वाली किस्मों में इस क्षेत्र के लिए जया, पंत धान 4, सरजू 52, PNR 381, IR 8, क्रांति तथा पंत 10 प्रमुख हैं। ये सभी किस्में 120 से 140 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। इनमें से पंत धान 4 व 10 तथा जया प्रजातियों का चावल महीन, सफ़ेद व लंबा होता है तथा औसत पैदावार 50 से 60 कुंतल प्रति हेक्टेयर तक ली जा सकती है। देर से अर्थात जो किस्में पकने में 140 से अधिक समय लेती हैं, इन प्रजातियों में आगरा मंडल के लिए टाइप 9, टाइप 23, टाइप 100 तथा क्रॉस 116 प्रमुख हैं। इन किस्मों से औसत पैदावार 30 से 35 कुंतल प्रति हेक्टेयर प्राप्त की जा सकती है। जो किसान भाई सुगंधित अर्थात खुशबू वाला धान उगाना चाहते हैं, वे टाइप 3, कस्तूरी, पूसा बासमती, हरियाणा बासमती तथा बासमती 370 में से कोई भी किस्म उगा सकते हैं। इन किस्मों की औसत पैदावार 30 से 40 कुंतल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त की जा सकती है। इन किस्मों को उगाने से धान की कीमत काफ़ी अच्छी मिल जाती है, जिससे आपको अधिक लाभ होता है। किसान भाइयों, आगरा मंडल के कुछ जिलों में ऊसर की भी समस्या है। ऊसर वाले क्षेत्रों के लिए ऊसर सुधार के तुरंत बाद CSR 10, ऊसर धान 1, नरेंद्र ऊसर धान 2 व स्वर्ण आदि उन्नत किस्मों में से जो कि ऊसर सुधार के बाद लेने से अच्छी पैदावार दे देती हैं। राजा बलवंत सिंह कॉलेज के अवागढ़ परिसर पर कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म पर ऊसर सुधार के बाद क्रांति किस्म से भी काफ़ी अच्छी पैदावार प्राप्त की गई है। जिन किसान भाइयों के खेतों में जल भराव की समस्या है, वे धान की टाइप 100 किस्म को लगाकर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। धान की कुछ संकर किस्में भी विकसित की गई हैं, जिनमें प्रमुख है पंत संकर धान 1 अथवा UPHR 27 तथा नरेंद्र संकर धान 2, जिसे NDRH 2 भी कहते हैं। ये दोनों किस्में 120 से 135 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं तथा इनसे 60 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर औसत पैदावार आसानी से प्राप्त की जा सकती है। किसान भाई इसके बीज के प्रयोग में विशेष ध्यान यह रखें कि संकर किस्मों का बीज हर साल नया बोने से ही अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है। केवल अच्छी किस्मों के बीज का प्रयोग करने से ही पैदावार में 20 से 25% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। अतः आप अपनी जमीन, बुवाई के समय आदि को ध्यान में रखते हुए उचित किस्म का चयन कर लें, लेकिन ध्यान रखें कि बीज हमेशा विश्वसनीय स्थान से ही खरीदना चाहिए तथा बीज की पैकिंग पर बीज की अंकुरण क्षमता, प्रतिशत तथा टैग अवश्य देख लेना चाहिए। धान की अच्छी पैदावार लेने के लिए आवश्यक है कि आपको पौध अच्छी प्रकार से तैयार करनी चाहिए। नर्सरी हमेशा अच्छी जमीन में तैयार करनी चाहिए। नर्सरी वाले खेत के पास सिंचाई की समुचित साधन भी आवश्यक है, क्योंकि धान की पौध गर्मी में तैयार की जाती है, जिससे पानी की मात्रा और भी बढ़ जाती है। साथ ही किसान भाई धान की पौध ऐसे खेतों में कभी भी तैयार न करें जहां पेड़ों की छाया रहती हो या उन खेतों में पुआल इकट्ठा किया गया हो, क्योंकि छाया वाले खेतों में धान की पौध पर झोंका रोग का प्रकोप हो सकता है व धान का पुआल इकट्ठा करने वाले खेतों में फसल पर भूरा धब्बा रोग अधिक लगता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई के लिए
लगभग 700 वर्ग मीटर भूमि में

0: नर्सरी डालनी चाहिए, जबकि ऊसर के लिए 1000 वर्ग मीटर भूमि में पौध डालने चाहिए। 700 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए महीन धान का 30 से 35 किलोग्राम, मध्यम धान का 35 से 40 किलोग्राम व मोटे धान का 45 से 50 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। ऊसर के लिए बीज की मात्रा 60 किलोग्राम रखनी चाहिए। यदि आप धान की सीधी बुवाई करना चाहते हैं तो 80 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। नर्सरी में बीज डालने से पहले बीज का उपचार करना न भूलें। 25 किलोग्राम बीज के लिए 19 किलोग्राम MEMS 6% वाली अथवा 38 ग्राम MEMS 3% वाली तथा 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 45 लीटर पानी में घोलकर बीजों को रात भर भिगो दें। दूसरे दिन छाया में सुखाकर शाम के समय नर्सरी में बुवाई करनी चाहिए। नर्सरी में बीज की बुवाई प्रजाति के हिसाब से जून के प्रथम सप्ताह से 25 जून तक करनी चाहिए। बुवाई से पूर्व खेत को अच्छी प्रकार तैयार कर लें। साधारणतः 8 मीटर लंबी व 1.25 मीटर चौड़ी क्यारी बना लेनी चाहिए व हर क्यारी के बाद 1 फुट की नाली बनानी चाहिए, जिससे पौध नराई व दवा के प्रयोग में आसानी रहती है। नर्सरी में पौध तैयार करते समय 20 किलोग्राम यूरिया या 50 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट, 35 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट व 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट 21% वाली प्रति 1000 वर्ग मीटर की दर से प्रयोग करने से अच्छी पौध प्राप्त होती है। इस तरह किसान भाई धान की उन्नत किस्मों की नर्सरी तैयार कर पौध लगाएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे।
1: कार्यक्रम खेती की बातें में अभी आपने सुनी धान की उन्नत किस्म और पौध की तैयारी के विषय में डॉक्टर RP सिंह की वार्ता।

आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संस्कृत में समाचार, उसके बाद सुनेगा हिंदी में समाचार, और उसके बाद सुने जा सकेंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: उल्लेखितम्। केन्या देशस्य राष्ट्रपतिना विलियम रूटो इत्यनेन सहापि श्रीमोदी मेलनं कृतवान्। श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं केन्या च वैश्विक दक्षिणस्य आकांक्षासु दीर्घकालं यावत् सहभागित्वं कुर्वन्ति। जापान देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह मिलित्वा श्रीमोदी अवधानं दत्तवान् यत् भारत जापान देशयोः सम्बन्धः विविधेषु क्षेत्रेषु निरन्तरं सुदृढं भविष्यति। फ्रांस देशस्य एवियन नगरम अद्य वैश्विक कूटनीतेः केन्द्रः अस्ति यत् G7 शिखर सम्मेलनस्य महत्वपूर्णे चरणे अस्ति। भारतस्य सहभागी देशस्य रूपेण सहभागित्वेन सर्वेषां दृष्टिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन सह बहुप्रतीक्षितायां द्वैपाक्षिक सम्मेलने दृढतया निबद्धः अस्ति यत् अद्य शिखर सम्मेलनावधौ भविष्यति। 25-2000 वर्षस्य फरवरी मासे वाशिंगटन डीसी इत्यत्र अंतिम वारम मेलनानन्तरं उभयोः मध्ये एतत् प्रथमं मेलनं भविष्यति। अद्यतनस्य संवादस्य समये तौ बहुविध क्षेत्रेषु द्वैपाक्षिक सहयोगं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यतः तथा च परस्पर हितानां क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु चर्चां करिष्यतः इत्यपेक्षा अस्ति। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना सह मेलनम अतिरिच्य अद्य प्रधानमंत्री श्रीमोदी सर्वेभ्यः लाभाय संतुलितं सर्वसमावेशं सुस्थिरं च आर्थिक वृद्धेः पुनरुत्थानम् इत्यस्मिन् विषये तथा कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः सुरक्षितं द्रुत प्रभावी उपयोगं सुनिश्चेतुम् इति विषये G7 इत्यस्य कार्यसत्रे अपि भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमंत्री ईयू परिषदः अध्यक्षेण एंटोनियो कोस्टा इत्यनेन सह ईयू अध्यक्षस्य आयोगस्य अध्यक्षया फॉन डेर लेयन इत्यनया सह त्रिपक्षीय सम्मेलनं करिष्यति। जर्मन चांसलर फेडरिक मर्ज इत्यनेन सह अपि द्वैपाक्षिकोपवेशनं भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः फ्रांस देशस्य एवियन नगरे G7 शिखर सम्मेलने नूतन सहभागित्वस्य निर्माणं तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्य भावस्य पुनर्निर्माणं इत्यस्मिन् विषये सत्रं अभिसंबोधितवान्। विदेश मन्त्रालयेन सूचितं यत् सत्रावधौ प्रधानमन्त्रिणा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागित्व विनिर्माणे विशेषतः वर्धमान परस्पर सम्बद्ध विश्वे विश्वासस्य महत्वम् अधोरेखितम्। सभायां प्रधानमन्त्रिणा अधोरेखितं यत् भारतं सर्वदा मानवतायै प्रथमं इति दृष्टिकोणम् अनुसरति। सः अग्रे अकथयत् यत् भारतस्य अन्ताराष्ट्रिय सहभागित्वस्य दूरदृष्टिः वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य कालातीतदर्शनस्य आधारेण अस्ति, विश्वमेकः परिवारः अस्तीति। फुटबॉल क्रीडायां गतरात्रौ न्यूजर्सी क्रीडाङ्गणे प्रथमसमूहस्य आरम्भिक क्रीडायां फ्रांस देशेन सेनेगल देशं 3-1 इति अंकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वायदा किया है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है।
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी

0: बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक भी करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ भी बैठक करेंगे। कल सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठकें की थी। यमुना नदी के जीर्णोद्धार के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर कुछ ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को क्यों फिलहाल बंद किया गया है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। फ्रांस की ओर से किलियन मबापे ने 2 गोल किए और वे अब 58 गोल के साथ अपने देश के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। एक अन्य गोल ब्रैडली बारकोला ने दागा। सेनेगल के लिए एकमात्र गोल मबाय ने किया। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. The French city of Avignon remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first face-to-face meeting between the two leaders since they last met in Washington, D.C. in February 2025. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. Yesterday, Prime Minister Narendra Modi undertook extensive diplomatic outreach on the sidelines of the G summit in Avignon, France, holding bilateral meetings with leaders from Canada, United Kingdom and UAE yesterday. He also met and interacted with the leaders of several other countries on the sidelines of the G7 meeting. The Ministry of External Affairs said that during their meeting, Prime Minister Modi and his Canadian counterpart, Mark Carney, welcomed the positive momentum in India-Canada relations and reaffirmed their

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं डॉक्टर मधु राजपाल की वार्ता। विषय है गर्मियों में स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करें।
1: डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब। जैसा कि आजकल हम, आप और हमारे सुनने वाले भी महसूस कर रहे हैं कि गर्मी कितनी तेज हो गई है और दिनों दिन बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे तो अब लू भी चलने लगी है, तो डॉक्टर साहब इन गर्मियों में अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अब आदमी अपने सारे काम धाम बंद करके घर पर ही रहे, उसे बाहर निकलना ही पड़ता है। तो बाहर निकलने में अक्सर ये कहा जाता है कि भाई धूप लग गई या लू लग गई, तो ये धूप का लगना या लू का लगना क्या चीज़ है?
2: ये बहुत अच्छा सवाल आज के मौसम को देखते हुए आपने किया है। हालांकि हमारे शरीर में एक तापमान को मेंटेन करने के लिए सिस्टम भगवान ने बना के भेजा है,
1: हाँ।
2: लेकिन वो भी लिमिटेड टाइम तक काम कर सकता है,
1: हाँ।
2: थोड़े से बदलाव को तो वो आराम से सहन कर लेता है। जैसे कि सबसे सही तापमान शरीर के लिए माना गया है 29 डिग्री सेंटीग्रेड,
1: अच्छा।
2: उससे

0: दो डिग्री ऊपर दो डिग्री नीचे कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन हमारी आगरा की गर्मी जिसमें 40 डिग्री तक भी टेम्परेचर जाता
1: बल्कि
0: है
1: डॉक्टर साहब कह लें कि और ऊपर जाता है,
0: और ऊपर
1: पैंतालीस
0: जाता
1: छियालीस
0: भी
1: यहाँ
0: जाता
1: तक।
0: है,
1: हाँ
0: तो उसमें हमारा ये थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम या अंदर तापमान ठीक करने का सिस्टम काम करना बंद कर देता है।
1: अच्छा
0: तो उसमें लंबे समय तक काम करने में हमारे लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। इस समय हमारे दिमाग का एक सेंटर होता है हाइपोथैलेमस, वो काम करता है और तब जाकर के किसी तरीके से जान बचाने में मदद करता है। पर फिर भी अगर तापमान बहुत ज़्यादा है और बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ता है और अंदर के सिस्टम फेल हो जाते हैं, जैसे कि जिनके ज़्यादा पसीना नहीं आ पाता है,
1: हाँ
0: और पसीना हमारा एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, हमें बचाता है बल्कि लू लगने
1: अच्छा
0: से, तो जब ज़्यादा पसीना नहीं आता है और हमें ज़्यादा पानी नहीं मिलता है और हम इस सूखे लू के एटमोसफेयर में काम करते हैं, तो हमें एक बहुत खराब बीमारी हीट स्ट्रोक होती है, जिसको कि आम भाषा में लू लगना कहा जाता है, वो हो जाती है और यह बहुत ही खतरनाक समस्या होती है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे किसी को लू लग गई तो ये कैसे पता चलेगा कि इसको लू लग गई? एक सामान्य लक्षण उसके क्या होंगे?
0: सामान्य लक्षण, जब थोड़ी सी लू लगती है तो मरीज को पहले तो गर्मी लगती है, जी घबराता है, पेट में कुछ कुछ गड़बड़ी होने लग जाती है, कभी दस्त होने लग जाते हैं, कभी अजीब सा उल्टी का एहसास होता है, तो वो तो शुरू के लक्षण होते हैं। इसमें ही समझ लेना चाहिए कि परेशानी हो रही है, और लेट स्टेजेस में शरीर एकदम गर्म हो जाता है, चक्कर आने लग जाता है, बेहोश तक हो जाता है आदमी,
1: अच्छा
0: तो ये ज़्यादा और आगे की स्थिति होती है। और बहुत ज़्यादा होने पे तो टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और एकदम गर्म हो जाते हैं, एकदम बेहोश हो जाते हैं, तो ये इसको रियल हीट स्ट्रोक कहा जाता है। तो जैसे ही शुरू के लक्षण प्रतीत हों, वैसे ही आदमी को ठंडे एटमॉस्फेयर में शिफ्ट कर देना चाहिए। बेस्ट तो है कि उसको ठंडे पानी में ही डुबो देना चाहिए, जब रियल ज़्यादा गर्म लग रहा है तो बल्कि बर्फ़ डाल करके पानी में उसके अंदर आदमी को डुबो दें, नहीं तो
1: उसे नहला दें ठंडे
0: नहला
1: ठंडे
0: दें
1: पानी से।
0: तरीके से, हाँ, और नहीं तो चादरें गीली कर करके उसको लपेट दें ठंडे कम उससे कपड़े से, और खूब पंखा वगैरह चला दें, और अगर वो होश में है तो उसको पानी पिलाना होता है, और अगर सहूलियत हो सके तो 1 लीटर पानी में 8 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक, और अगर नींबू मिल जाए तो नींबू निचोड़ करके थोड़ा देंगे, जिससे उसको थोड़ी एनर्जी भी मिलेगी और थोड़ा अच्छा भी लगेगा। अगर वो होश में नहीं है तो उसको ड्रिप वगैरह लगानी पड़ती है, फ्लूट्स देने पड़ते हैं, तब जा करके उसकी जान बच पाती है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात है कि इस भीषण गर्मी में भी हजारों लोग बाहर निकल रहे हैं, पर सबके सबको तो लू नहीं लगती, कुछ लोगों को लग जाती, तो ऐसा क्या है कि हवा तो वही गर्म हवा चल रही है?
0: ज्यादातर जो जवान लोग हैं उन्हें इस लू का असर कम होता है,
1: अच्छा
0: बड़ी उम्र के लोग हैं या छोटे बच्चे हैं या बीमारी से आप उठे हैं जबकि आपके अंदर की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, तो लू लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं,
1: अच्छा ये उनकी क्या कुछ प्रतिरोधक शक्ति के ऊपर भी
0: कम
1: निर्भर
0: होता
1: करता
0: है,
1: है?
0: बिल्कुल कम होता है, और अंदर जो है बॉडी मास कम होता है, पानी की मात्रा कम होती है, तो वो जल्दी सूख जाता है और जल्दी उनको परेशानियां दिखने लग जाती हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि घर से अगर निकलें, गर्मी में अगर निकल रहे हैं, तो एक तो खूब पानी पी लें, ऐसा घर में बड़े बूढ़े कहते हैं और अभी भी है, या कुछ आम के पन्ना के बारे में कहा जाता है कि इस तरह की चीज़ ले लें, या प्याज रख लें, तो डॉक्टर साहब इन बातों पर आप कुछ बताएं।
0: ये हालांकि सुनने में आती हैं कि ये घरेलू बातें हैं, पर ये बिल्कुल सही हैं और काफ़ी साइंटिफिक भी हैं। अगर आप बाहर जा रहे हैं, पानी आप पी लें, अपने साथ साफ पानी ले लें, और पना जैसे बहुत अच्छी चीज़ मैं मानती हूँ, जो मैंने आपको सॉल्यूशन अभी बताया कि 1 लीटर पानी में 8 चम्मच चीनी और चुटकी भर नमक डाल दीजिए,
1: हाँ
0: तो उसमें मेरा मतलब ये था कि पानी और नमक, क्योंकि जब पसीना निकलता है तो सोडियम क्लोराइड ही निकल रहा है, नमक
1: निकलता
0: ही
1: है।
0: निकल रहा है, और पने में आखिर क्या है, आम के साथ में नमक ही तो हम दे रहे हैं, तो हम पानी, आम और नमक दे रहे हैं मरीज को, तो ये बहुत साइंटिफिक है।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आपने सुनी गर्मियों में स्वास्थ्य की देखभाल के विषय में डॉक्टर मधु राजपाल की वार्ता। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, और अब लीजिए सुनिए संवेद स्वर में ये देश का।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वर में देश गान। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी की आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही क्षणों में।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था, आगामी त्योहारों, नीट UG पुनर्परीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। 21 जून को प्रस्तावित नीट UG पुनर्परीक्षा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में अभ्यर्थियों को 50% छूट के दिए निर्देश। नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध। संदेश संपादन सुविधा भी 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। अब छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में 24 जून तक बढ़ाया ग्रीष्मकालीन अवकाश। अब 25 जून से शुरू होंगी शैक्षणिक गतिविधियां। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था, आगामी पर्व त्योहारों, नीट UG पुनर्परीक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि

0: 21 जून को प्रस्तावित नीट यूजी परीक्षा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रवेश पत्र दिखाने पर किराए में 50% की छूट दी जाए। मुख्यमंत्री ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों एवं 762 नगरीय निकायों में अमृत सरोवरों एवं ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों पर योग कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान श्री योगी ने मुहर्रम के दौरान निर्धारित नियमों व मानकों का पालन करवाते हुए शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आगामी 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर उन्नयन हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने देश के लोगों के लिए अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया ताकि विकसित भारत के स्वप्न को साकार किया जा सके। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आधुनिक अवसंरचना किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में भारत ने बीते 12 वर्षों में इस दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित की हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल लखनऊ में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,37,00,000 आवास का आवंटन किया है, जिसमें से 62,00,000 से अधिक परिवार यूपी के शामिल हैं। श्री खन्ना ने कहा कि इस दौरान स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
1: 2014 से पहले हमारे देश में इतने मेडिकल कॉलेज नहीं थे, इतने डॉक्टर्स नहीं थे कि हम ठीक प्रकार से सभी लोगों को इलाज की सुविधा दे सकें। तो उसके पहले उन्होंने ये मन बनाया कि हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स पैदा करेंगे और डॉक्टर्स पैदा होते सिर्फ मेडिकल कॉलेजों में 818 मेडिकल कॉलेज, जिसमें से 431 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का उन्होंने मन बनाया। और MBBS में कुल 1,28,976 सीटें थी, जिसमें से 77,628 सीटों की वृद्धि की गई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार और यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने से जुड़ी कई मांगों को रेल मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है।

0: ये जानकारी प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आगामी 19 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश को कई रेल सेवाओं की सौगात देंगे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री बिहार के छपरा से ऑनलाइन जुड़कर जनता को संबोधित भी करेंगे। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि उनकी मांग पर दोहरेघाट औड़ियार नई मेमू ट्रेन का वाराणसी तक संचालन, मऊ आनंद विहार स्पेशल ट्रेन का मऊ से नियमित संचालन और छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन मऊ के रास्ते किए जाने को मंजूरी मिल गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच आज लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। मैच को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: इकाना क्रिकेट स्टेडियम में श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय मैच के लिए दोनों टीमें लखनऊ पहुंच चुकी हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय मैच के मद्देनजर स्टेडियम के अंदर और बाहर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने स्टेडियम के आसपास कई मार्गों पर यातायात डायवर्जन भी लागू किया है जो कि सुबह 9 बजे से रात में मैच की समाप्ति तक लागू रहेगा। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रदेश में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश को 24 जून तक बढ़ा दिया है। बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक अब हर साल गर्मियों की छुट्टियां 20 मई से 24 जून तक रहेंगी और नियमित शैक्षणिक गतिविधियां 25 जून से शुरू होंगी। हालांकि शिक्षक, शिक्षा मित्र, प्रशिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी 22, 23 और 24 जून को स्कूलों में उपस्थित रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था, आगामी त्योहारों, नीट यूजी पुनर्परीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। 21 जून को प्रस्तावित नीट यूजी पुनर्परीक्षा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में अभ्यर्थियों को 50% छूट के दिए निर्देश। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध। संदेश संपादन सुविधा भी 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। अब छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में 24 जून तक बढ़ाया ग्रीष्मकालीन अवकाश। अब 25 जून से शुरू होंगी शैक्षणिक गतिविधियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
0: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है।

मीडियम वी 196.9 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रस्तुत है दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो सखी हरप्रीत कौर का प्यार भरा नमस्कार। और अब शुरू करते हैं सूचनाओं का सिलसिला। सबसे पहले कुछ सूचनाएं परीक्षार्थियों के लिए। श्रोताओं, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की ओर से आयोजित बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया गया है। 31 मई को आयोजित परीक्षा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के करीब 30,000 छात्रों ने भाग लिया था। अब जल्द ही इन छात्रों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी और ये काउंसलिंग ऑनलाइन होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से संबंधित 200 कॉलेजों में लगभग 22,000 सीटें उपलब्ध हैं। परीक्षा में सफल उम्मीदवार सीधे इन सीटों पर दाखिला ले सकेंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होगी। छात्रों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज सत्यापन और सीट आवंटन की सुविधा मिलेगी। काउंसलिंग के दौरान छात्रों को अपनी पसंद के कॉलेज और विषय चुनने का पूरा मौका दिया जाएगा और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को जल्द ही शेड्यूल और जरूरी दस्तावेजों की सूची विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी और काउंसलिंग पूरी होने के बाद नए सत्र के लिए कक्षाएं शुरू हो जाएंगी।

12वीं के बाद करियर का सही रास्ता चुनना हर छात्र और अभिभावक के लिए एक बड़ी चुनौती जैसा होता है। कहाँ ले दाखिला, कौन सा कोर्स और कॉलेज है बेहतर, इन सवालों के जवाब अब एक ही जगह मिलेंगे। 1920 जून को आवास विकास रोड स्थित होटल भावना क्लार्कसन में एजुकेशन फेस्ट 2026 का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश के टॉप कॉलेज, विश्वविद्यालय और संस्थान हिस्सा लेंगे, जो छात्रों को करियर की राह दिखाएंगे। इसमें न सिर्फ आपको कॉलेजों की रैंकिंग, कोर्स और उनकी खासियत की पूरी जानकारी मिलेगी, बल्कि ऑन द स्पॉट दाखिला करने का मौका भी मिलेगा। करियर एक्सपर्ट्स की काउंसलिंग से छात्रों को सही दिशा मिलेगी। हर घंटे आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर भी फेस्ट को और रोमांचक बनाएगा। खास बात यह है कि यूपी बोर्ड, CBSE और ICSE की 10वीं और 12वीं में 60% से अधिक अंक लाने वाले मेधावी छात्रों को प्रमाण पत्र और 80% से ऊपर अंक लाने वाले छात्रों को मेडल देकर सम्मानित भी किया जाएगा।

श्रोताओं, प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत उन शिक्षकों को टेट उत्तीर्ण करने का एक और मौका मिलेगा जिन्होंने अभी तक टेट और सीटेट की योग्यता हासिल नहीं की है। शासन स्तर पर उनके लिए विशेष टेट कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए सभी जिलों से ऐसे शिक्षकों की संख्या का विवरण एक सप्ताह के भीतर मांगा गया है। ये कार्यवाही जल्द ही शुरू होगी। शासन

बेसिक शिक्षा परिषद की अंतर्गत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की जिलों से सूचना मांगी है। इसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत कुल नियमित शिक्षकों की संख्या, टेट सीटेट उत्तीर्ण शिक्षकों की संख्या और अभी तक टेट और सीटेट उत्तीर्ण नहीं करने वाले शिक्षकों की संख्या का विवरण शामिल है। ये सूचना एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराई जाएगी और इसके आधार पर कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष टेट परीक्षा आयोजित करने को लेकर आगे की कार्यवाही जल्द ही की जाएगी।

प्रदेश के परिषदीय और मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालय में गर्मी और हीट वेव को देखते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि बढ़ा दी गई है। अब हर वर्ष 20 मई से 24 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विद्यालयों में शिक्षक और छात्र छात्राओं की सहभागिता से सामूहिक योग का अभ्यास कराया जाएगा। 22 जून से 24 जून तक शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा और 25 जून से बच्चे स्कूल आएंगे। श्रोताओं, अब तक बेसिक शिक्षा परिषद के शैक्षणिक कैलेंडर में हर वर्ष 20 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश निर्धारित था। 16 जून से स्कूल खुल गए थे, अब 25 जून को बच्चे स्कूल जाएंगे और पिछले कुछ वर्षों से भीषण गर्मी और हीट वेव की स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है।

डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने बीपीएड चौथे सेमेस्टर दूसरे सेमेस्टर की मई सम सेमेस्टर परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। चौथे सेमेस्टर की परीक्षा 19 जून से 30 जून तक दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 23 जून से 27 जून से दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की जाएंगी।

मंडल रेल प्रशासन की टीम 15 से 21 जून तक योग सप्ताह दिवस मना रही है। मंगलवार को कैंट रेलवे स्टेशन और कॉलोनी में विशेष आयोजन किया गया। लोगों को योग के प्रति जागरूक किया गया और अब 21 जून को अधिकारी क्लब में सुबह 7 बजे कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

मुहर्रम का चांद मंगलवार शाम को दिखाई देने के बाद इमामबाड़े सजने के साथ ही फर्शे अज़ा बिछ गई। आज पहली मुहर्रम है। शहर के प्रमुख इमामबाड़ों में सुबह 8 से रात 11 बजे तक मजलिसों का सिलसिला चलेगा। शहर में शाहगंज, लोहा मंडी, कोतवाली, ताजगंज, सिकंदरा, न्यू आगरा और जगदीशपुरा और इन सभी जगहों में इमामबाड़े और अज़ा खाने हैं। मंगलवार शाम को मुहर्रम का चांद दिखाई देने के बाद इमामबाड़ों में अलम सजाने के साथ ही ताजिए रख दिए गए। करबला में शहीद हुए इमाम हुसैन और उनके साथियों का मातम मनाने का सिलसिला आज एक मुहर्रम से शुरू हो जाएगा। 2.25 महीने तक मुहर्रम की मजलिसों का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं कोतवाली के पाए चौकी में ऐतिहासिक फूलों का ताजिया, इमामबाड़े में मुहर्रम का चांद दिखाई देने के बाद फातिहा का आयोजन अकीदत के साथ किया गया और मजलिसों का सिलसिला सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता रहेगा।

तो कुछ लोग घूमने जाने का प्लान कर रहे होंगे या कुछ निकल चुके होंगे। तो जो लोग रेल यात्रा करके अपने गंतव्य पर जाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ सूचनाएं हैं। रेलवे ने मुंबई सेंट्रल कार्ट गोदाम साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस के नियमित संचालन की घोषणा की है। ये ट्रेन मुंबई सेंट्रल से बुधवार और कार्ट गोदाम से गुरुवार होकर चलेगी और ये मथुरा जंक्शन होकर संचालित होगी।

0: यात्रियों की सुविधा को रेलवे ने 05344 और 05343 लालकुआ वलसाड़ लालकुआ स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। ये ट्रेन लालकुआ से 9 जुलाई तक हर गुरुवार को और वलसाड़ से 10 जुलाई तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी। ये ट्रेन लालकुआ से गुरुवार सुबह 9 बजे चलकर शाम 4:15 पर मथुरा जंक्शन और शुक्रवार को दोपहर 12 बजे वलसाड़ पहुंचेगी। ट्रेन वलसाड़ से शुक्रवार दोपहर 3:25 पर चलकर शनिवार सुबह 10:10 पर मथुरा जंक्शन और शाम 5:45 पर लालकुआ पहुंचेगी। इस ट्रेन में 4 जनरल कोच, 6 स्लीपर, 2 एसी थर्ड इकोनॉमी, 3 एसी थर्ड और 1 एसी सेकंड कोच लगे होंगे। इसके साथ साथ रेलवे ने साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन की घोषणा भी की है। गाड़ी संख्या 04139 और 04140 प्रयागराज दादर प्रयागराज 10 जुलाई तक प्रत्येक शुक्रवार और दादर से 12 जुलाई तक हर रविवार को चलेगी। ये ट्रेन प्रयागराज से शुक्रवार शाम 5:10 पर चलकर देर रात 1:20 पर ईदगाह स्टेशन और शनिवार की रात 10:40 पर दादर पहुंचेगी। ट्रेन दादर से रविवार की रात 12:15 पर चलकर रात 7:10 पर ईदगाह स्टेशन और अगले दिन सुबह 5 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। तो बात ट्रेनों की हो रही है, रेल यात्रा की हो रही है, तो क्यों ना चलिए आपको सुनवा दें ये गीत। और इसके साथ साथ आप रेल यात्रा करने वाले रोमांचक आनंद का मजा ले सकते हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं ये गीत।
1: आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाएं। सुनो रे बच्चों टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी।

भग भग आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम्हारा इंजन, डब्बू तुम कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर सब पैसेंजर। रेडी एक

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक।

बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर तालेगांव मालेगांव मालेगांव तालेगांव वेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल मछली पट्टम दमली पट्टम दमली पट्टम मछली पट्टम ओंगोल नदी गोल नदी गोल ओंगोल कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव मंदाबाद मंदाबाद मंदाबाद मंदाबाद सोतनूर सोतनूर सोतनूर

0: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
1: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करे, ट्रेन को जाने दे और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करे, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करे। याद रखे, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
2: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

बताइए, आगरा आसपास। आप सुनिए कार्यक्रम की कुछ अन्य सूचना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग के लिए विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों से आवेदन मांगे गए हैं। चयनित व्यक्ति प्रति 90 मिनट व्याख्यान के लिए 2000 रुपये मानदेय मिलेगा और इसके लिए आवेदन 20 जून तक किए जा सकते हैं।

शुद्ध पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत नीलीट मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से ओ लेवल और ट्रिपल सी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी

परीक्षार्थियों के लिए एक और आवश्यक सूचना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने 6 जून को प्रस्तावित कई परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के कारण यह निर्णय लिया गया है। अब विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 20 और 26 जून को पूर्व निर्धारित केंद्रों पर आयोजित होंगी।

कार्यक्रम आसपास में अभी आपको जानकारी भी दी कुछ खबरें। प्रदीप कुमार पुत्र उमेश सिंह निवासी खुशालपुर थाना बरनाहल जनपद मैनपुरी से दिनांक 17 मई 2026 से लापता है। प्रदीप की उम्र 32 वर्ष, कद 5 फुट 5 इंच और रंग कोरा है। गुमशुदगी के समय प्रदीप ने टी शर्ट सफेद धारीदार काला लोअर पहना हुआ था। प्रदीप के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना बरनाहल मैनपुरी के पते पर सूचित करें।

प्रीति ने नीला सूट और सलवार पहनी हुई थी। प्रीति के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना सकेट जनपद एटा के पते पर सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना समाप्त हुई।

एक अन्य सूचना के अनुसार गिरीश पुत्र राम प्रकाश निवासी ग्राम कसा थाना जैथरा जनपद एटा से मई सन 2026 से लापता है। गिरीश की उम्र 30 वर्ष, कद 5 फुट 5 इंच, चेहरा लंबा और रंग सांवला है। इसके साथ साथ गिरीश मानसिक रूप से अस्वस्थ है। गुमशुदगी के समय गिरीश ने नीली टी शर्ट नीला लोअर पहना हुआ था। गिरीश के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना जैथरा एटा के पते पर सूचित करें। एक अन्य सूचना के अनुसार प्रीति कुमारी पुत्री जयवीर सिंह निवासी नगला गुलरिया थाना सकीट जनपद एटा से लापता है। प्रीति की उम्र 18 वर्ष, कद 5 फुट 3 इंच, चेहरा गोल और रंग गोरा है। गुमशुदगी के समय

श्रोताओ, सिख धर्म के पांचवे गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के शहीदी दिवस के अवसर पर गुरुवार को विभिन्न कार्यक्रम होंगे। 18 जून को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा माइथान में विशेष कीर्तन समागम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर गुरु अर्जुन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की और मुगलिया हुकूमत की दर्दनाक यातनाएं सहते हुए अपनी शहादत दी। रविवार 18 जून को शाम 6 से रात 10 बजे तक विशेष कीर्तन दरबार सजेगा। श्रोताओं, पहली बार ये आयोजन शाम को होगा और इस मौके पर ठंडे मीठे शरबत की छबील भी लगाई जाएगी।

और इसके साथ कार्यक्रम आसपास संपन्न करने की हर रीत को इजाजत दीजिए। मीडियम भी 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी आगरा केंद्र है।

श्रोताओं, इस समय प्रातः के 8 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप हमारी दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक

0: समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए।

0: वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है। भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
2: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
4: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है।

0: धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्य की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of 3-match series in Lucknow this afternoon. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avion, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. Prime Minister said, it is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority.

0: World Cup 2026. India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall today at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim. Moderate to heavy rainfall is expected during the day over parts of Assam, Meghalaya, Bihar, Kerala and Mahe. And now for a look at today's newspapers. It's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Sarabjit. Most newspapers today open with the details of the G7 in France, addressing an outreach with Trump present, Modi flags seafarers' safety at G7 is the lead in the Hindustan Times. The Indian Express informs government bans Telegram until 22nd of June in bid to secure NEET retest. The Statesman in its editorial piece captioned, "Peace without peace," writes, "The announcement of a framework agreement between the United States and Iran has understandably been greeted with relief. Oil prices have retreated from their wartime highs, stock markets have rallied and governments dependent on Gulf energy supplies have welcomed what appears to be a retreat from the edge. But relief is not the same as resolution. For weeks, the conflict demonstrated how a regional confrontation can swiftly become a global economic problem." The Delhi Tribune says to curb pollution, Delhi may soon allow only BS6 vehicles. And finally, with the weather being benevolently pleasant on Tuesday, the Statesman has captured a picture of people relaxing under the shade of trees on the lawns near India Gate. And with that, it's back to you, Sarabjit.
0: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of three-match series in Lucknow this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि आलमी बहरी गुजरगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और मल्लाहों को टकराव से वाबस्ता खतरात के तनाजुर में तहफ्फुज फराहम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के शहर एवियन में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। दरियाए जमुना के आहिया के लिए तवील अरसे से जेरे इल्तवा केशाऊ डैम प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के बारे में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के माबेन इत्तेफाक राय हो गया है। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने उम्मीदवारों से नीट के दोबारा इम्तिहान का पर्चा लीक होने के दावों से होशियार रहने को कहा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज दोपहर लखनऊ में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि आलमी बहरी गुजरगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और मल्लाहों को टकराव से वाबस्ता खतरात के तनाजुर में तहफ्फुज फराहम किया जाए। फ्रांस के शहर एवियन में कल G7 की सरबराह कॉन्फ्रेंस में एक राबता इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मगरबी एशिया में लड़ाई से आलमी तजारत में रुकावट पड़ गई है और जानी नुकसान भी हुआ है। मगरबी एशिया में बहरी तिजारत को लाहिक बढ़ते हुए खतरात और अदम इस्तेहकाम की इंसानी कीमत को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मल्लाहों की सलामती को यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी है जो आलमी बहरी तिजारत के जरिए सभी मुल्कों को बाहम मुंसलिक करते हैं। वजारत खारजा ने बताया कि वजीर आजम ने बैन अवी साझेदारी कायम करने, खासतौर पर बढ़ती हुई बाहम मुंसलिक दुनिया में एतमाद की अहमियत पर जोर दिया।

0: जनाब मोदी ने यह भी कहा कि बैन अलाक्वामी साझेदारी को अतिया देने वाले और लेने वाले फरीक से आगे बढ़कर यगानगत और मुसावियाना मिल्कियत की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि बैन अलाक्वामी कानून के लिए एहतराम का फुकदान बैन अलाक्वामी यकजहती कायम करने में सबसे बड़ी रुकावट है और इस पर तरजीही बुनियाद पर तवज्जो दिए जाने की जरूरत है। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि अमन इस्तेकाम को यकीनी बनाने की खातिर बैन अलाक्वामी साझेदारी में मुजाकरात और सिफारतकारी को तरजीह दिए जाने की जरूरत है। फ्रांस का शहर एवियां इस वक्त आलमी सिफारतकारी का मरकज बना हुआ है। वहां G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस अहम मरहले में दाखिल हो रही है। भारत एक साझेदार मुल्क की हैसियत से इसमें शिरकत कर रहा है। सबकी निगाहें वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान आज होने वाली दोतरफा मीटिंग पर लगी हुई है, जिसका काफी इंतजार किया जा रहा था। यह मुलाकात सरबरा कॉन्फ्रेंस के मौके पर हो रही है। फरवरी 2025 में वॉशिंगटन DC में दोनों लीडरों के दरमियान मुलाकात के बाद से यह पहली बिल मुशाफा मीटिंग है। उम्मीद है कि आज की मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमा मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा इश्तराक को मजीद वसअत देने के लिए वसीतर तबादले ख्याल करेंगे। साथ ही वो इलाकाई और बाहमी मफाद के आलमी उमूर पर भी बातचीत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये मीटिंग काफी अहमियत की हामिल है, क्योंकि भारत एक बड़ी आलमी ताकत के तौर पर उभरा है और आलमी बिरादरी भी पेचीदा आलमी चैलेंजों के हल के लिए अब और ज्यादा भारत का रुख कर रही है। आलमी मामलात पर तबादले ख्याल को जहद देने में भारत के बढ़ते हुए रोल से उसका सिफारती राबते का दायरा बढ़ने और मुख्तलिफ फोरमों में आलमी रहनुमाओं के साथ सरगम राबतों की अक्कासी होती है। कल सरबरा कॉन्फ्रेंस के दौरान एक राबता इजलास में वजीर आजम ने बैन अलाक्वामी साझेदारी कायम करने और खासतौर पर बढ़ती हुई बाहम मुंसलिक दुनिया में एतमाद की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने इस बात को भी उजागर किया कि भारत ने हमेशा इंसानियत मुकद्दम का रवैया इख्तियार किया है। वजीर आजम ने कहा कि भारत की जेर कमान किए गए मुख्तलिफ इकदामात से इस बात की अक्कासी भी होती है, जिनमें बैन अलाक्वामी शमसी इत्तेहाद कुदरती आफात से पैदा हालात से निमटने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे का मखलूत इत्तेहाद, आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम मुहिम शामिल हैं। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि बैन अलाक्वामी साझेदारी के भारत के नजरिए की बुनियाद वसुधे कुटुंबकम यानी दुनिया एक कुनबा है के दायमी फलसफे में पिन्हा है। फ्रांस के शहर एवियां से अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: अमरीकी सदर के साथ मुलाकात के अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी G7 वर्किंग इजलास में भी शिरकत करेंगे, जिसका मौजू है सभी के फायदे के लिए मुतवाजन जामे और पायदार माशी तरक्की को फाल बनाना। इसके अलावा जनाब मोदी मसनूई जहानत के महफूज तेज रफ्तार और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के मौजू पर वर्किंग लंच में भी शामिल होंगे। वजीर आजम मोदी यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर अंतोनियो कोस्ता और यूरोपीय कमीशन के सदर वॉन देर लेन के साथ सेफरीकी मीटिंग करेंगे और जर्मनी के चांसलर फ्राइडरिख मर्ज के साथ दोतरफा मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर कनाडा और बरतानिया के वजराए आजम और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ दोतरफा बातचीत की थी। जनाब मोदी ने केनिया, मिस्र और जनूबी कोरिया के सुदूर नीज जापान की वजीर आजम से भी मुलाकात की। G7 मुल्कों ने भारत समेत कई साझेदार मुल्कों के साथ सेहत और तरक्की से मुतालिक आलमी इश्तराक को मुस्तहकम बनाने के लिए कई इकदामात का ऐलान किया है। G7 के रहनुमाओं ने जमहूरिया कांगो और युगांडा में इबोला बीमारी के फिर से जोर पकड़ने के तनाजुर में तालमेल के साथ बैन अलाक्वामी कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। भारत, मिस्र, केनिया और जनूबी कोरिया ने भी इकदामात में तेजी लाने की अपील की, जिसमें राबते में आने वाले अफराद का पता लगाना, सरहद पर निगरानी और बेदारी पैदा करना शामिल है। इन रहनुमाओं ने इबोला वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन तैयार करने, तशखीस और इलाज मुआवजे के लिए मदद करने का भी वादा किया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने तवील अरसे से जेरे इल्तवा केशाऊ कसीर मकसदी बांध प्रोजेक्ट के मामले पर कल नई दिल्ली में एक अहम मीटिंग की सदारत की। इस प्रोजेक्ट का मकसद दरियाए जमुना का अहिया करना है। एक बयान में उमूर दाखिला की वजारत ने कहा है कि मजकूरा प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत करने से इत्तेफाक किया है। इसके बाद केशाऊ प्रोजेक्ट को मंजूरी

0: लिए मरकजी काबीना के सामने पेश किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इम्तिहानात का इनाकात कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने वालिदैन और उम्मीदवारों से जोर देकर कहा है कि वो नीट इम्तिहानात से पहले घोटाला साजों से खबरदार रहें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि टेलीग्राम पर ये घोटाला साज कुछ चैनल चला रहे हैं जिन पर ये दोबारा कराए जाने वाले इम्तिहान के पर्चे फराहम करने के दावे कर रहे हैं और इसके लिए ये लोग 14,000 से 25,000 रुपए तक मांग रहे हैं। एजेंसी ने वाजे किया है कि इस दोबारा इम्तिहान के लिए कोई पर्चा इफ्शा नहीं हुआ है। उसने कहा है कि इस सिलसिले में फर्जी सबूत के वीडियोज भी गर्दिश कर रहे हैं जिनमें इम्तिहान से पहले की चैट्स दिखाई गई हैं। NTA ने अपने डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह की वीडियो भी जारी की है जिसमें वो मुल्क में इस ऐप तक रसाई को ब्लॉक करने की वजह बता रहे हैं। भारत ने पिछले 12 साल में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश कयादत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों की बुनियाद पर काबिले जिक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों किसानों खवातीन और नौजवानों की भलाई और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मुल्क की विरासत के तहफ्फुज़ और फरोग के तहत हुकूमत के इकदाम का जिक्र कर रहे हैं।
1: जनवरी 2024 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में अजीमुश्शान श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अंजाम दी, जो सदियों से जारी एक उमंग को पूरा करने का वक्त था। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए एक अकीदतमंद पंकज जारिया ने अपने ख्यालात का इजहार किया।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: अक्टूबर 2022 में मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में महाकाल लोक प्रोजेक्ट के पहले मरहले को मुल्क के नाम वक्फ किया गया। इस राहदारी में अजीमुश्शान मुजस्मों म्यूरल्स और फन तामीर के जरिए भगवान शिव की जिंदगी और रिवायतों की अक्कासी की गई है। वाराणसी में दिसंबर 2021 में काशी विश्वनाथ राहदारी का इफ्तिताह किया गया था। इस राहदारी के जरिए काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी से मिलाया गया है। हमारे नामा निगार से बात करते हुए वाराणसी के एक शहरी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ राहदारी से मंदिर आने वाले अकीदतमंदों को काफी सहूलत मुहैया हुई है।
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: इन बड़ी तब्दीलियों से मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने के साथ साथ सकाफती जड़ों को मजबूत करने की जानिब मुल्क के अहद की अक्कासी होती है।
0: भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में कुछ मकामात पर शदीद बारिश की पेशगोई की है। आसाम मेघालय बिहार केरला माहे तमिलनाडु पुडुचेरी और कराईकल में औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। IMD के मुताबिक राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज चमक का इम्कान है। इधर छत्तीसगढ़ तेलंगाना और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के हालात का इम्कान है। साहिली आंध्र प्रदेश गंगाई मगरबी बंगाल कोंकण गोवा और उड़ीसा में आज गर्मी और हब्स का मौसम रह सकता है। मर्दों के क्रिकेट में आज लखनऊ में 3 मैचों की सीरीज के दूसरे ODI में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम इस सीरीज में 1-0 से आगे है और वो आज का मैच जीतकर इस सीरीज को अपने नाम करने की कोशिश करेगी। खवातीन क्रिकेट में आज लीड्स के हेडिंगले में ICC खवातीन T20 आलमी कप में भारत और नेदरलैंड्स आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर की क्यादत में भारतीय टीम इतवार को बर्मिंगम में खेले गए पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रन से शिकस्त देने के बाद अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने की कोशिश करेगी। फुटबॉल में नॉर्वे ने फीफा आलमी कप में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में ग्रुप 1 के अपने पहले मैच में इराक पर 4-1 से जीत हासिल करके वापसी की है। अब नॉर्वे ग्रुप 1 में सरफहरिस्त आ गया।

0: इससे पहले फ्रांस ने न्यू जर्सी स्टेडियम में फीफा आलमी कप 2026 के ग्रुप एक के पहले मैच में सेनेगाल को 3-1 से हराया था। इस मैच में काइलियन मैप्पे ने अपने करियर का 58वां गोल करके एक रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने आलमी कप में लियोनेल मेस्सी का भी अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कोनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने फ्रांस के शहर एवियान में मुनाकिदा G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शिरकत से मुतालिक खबर को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इंकलाब और कई दीगर अखबारात ने नीट UG दोबारा इम्तिहान से कबल टेलीग्राम ऐप पर पाबंदी की खबर को अपने सफ़े अव्वल पर शाये किया है। खांसी के सिरप सिर्फ लाइसेंस याफ्ता फार्मेसियों को इजाजत। खांसी के सिर्फ फरोख्त की सिर्फ लाइसेंस याफ्ता फार्मेसियों को इजाजत, इस खबर को बेशतर अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को रोजनामा प्रताप ने अपने पहले सफे पर नुमाया किया है कि आने वाली नस्ल के पास मुल्क में तब्दीली लाने के लिए दरकार मुनफरिद तवानाई और नया अज़्म मौजूद है। इसके अलावा आज के अखबारात की अहम बैन अलाक्वामी खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं। अमरीका का B-52 बम्बार तैयारा परवाज के फौरन बाद गिरकर तबाह, हादसे में 8 अफराद की मौत।
0: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सभी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि आलमी बहरी गुजरगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और मल्लाहों को टकराव से वाबस्ता खतरात के तनाजुर में तहफ्फुज फराहम किया जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के शहर एवियां में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। दरियाए जमुना के आहिया के लिए तवील अरसे से जेरे इल्तवा किशाऊ डैम प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के बारे में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के माबैन इत्तेफाक राय हो गया है। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने उम्मीदवारों से नीट के दोबारा इम्तिहान का पर्चा लीक होने के दावों से होशियार रहने को कहा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खत्ते और सिक्किम में तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, प्रातः के 8:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।
1: समझूंगी

साथियों, कार्यक्रम का ये आरंभिक गीत अभी आपने सुना सोनू निगम और अलका याग्निक के जुगल स्वरों में जावेद अख्तर के बोलों को संगीत से सजाया था अनु मलिक ने, फिल्म का नाम था रिफ्यूजी।

0: साथियों, नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे समीर की शब्द रचना, स्वर्ति कुमार सानू और अलका याग्निक की फिल्म थी जीत।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
3: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
4: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओं, आइए आपको सुनवाते हैं घायल फिल्म का गीत, स्वर है लता मंगेशकर और पंकज उधास की, बोल है अनजान की और धुन बनाई है पप्पी लाहिरी ने।

साथियों, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत। स्वर है उदित नारायण का, बोल है जावेद अख्तर, की धुन बनाई है मदन मोहन ने, फिल्म का नाम है वीर सारा।

उदित नारायण के गाए इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब कुछ ही पलों में आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे जिले की हलचल।

0: तो आइए आपको सुनवाते हैं आज अंबेडकर नगर और बांदा जिले की हलचल, आइए सुनते हैं।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अंबेडकर नगर और बांदा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अंबेडकर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुराग चौधरी का।
2: केंद्र सरकार के 12 साल पूरा होने पर अंबेडकर नगर के सभी विकास खंडों में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर एवं स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार युवाओं, महिलाओं और गरीबों के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार अपने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के हर तबके के लोगों को लाभ पहुंचा रही है और इसी का परिणाम है कि आज हमारा देश सशक्त बन रहा है। अंबेडकर नगर में भूमि विवादों के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी ईसाप्रिया के निर्देश पर जिले के सभी तहसीलों के ग्राम पंचायतों में भूमि विवाद निस्तारण चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अकबरपुर तहसील की उप जिलाधिकारी प्रतीक्षा सिंह ने बताया कि ग्राम प्रतापपुर चमुरखा में 56, लोरपुर पालहन में 75, चोनगांव में 39, तारा खुर्द में 30 और औरंगाबाद में 35 भूमि विवादों का निस्तारण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर मिझौड़ा चीनी मिल में जन जागरूकता एवं बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्रमिकों को लेकर चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया गया कि श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले या सुनिश्चित किया जाए। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अंबेडकर नगर में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 21 जुलाई को शून्य दुर्घटना दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए कलेक्ट्रेट सभागार में एक प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने अंबेडकर नगर का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान चारू चौधरी ने जिला अस्पताल, वन स्टॉप सेंटर, वृद्धा आश्रम का निरीक्षण किया। चारू चौधरी ने सर्किट हाउस में आयोजित जन चौपाल में महिलाओं की समस्याओं को सुना और उनके निदान का निर्देश दिया। अंबेडकर नगर में जिलाधिकारी ईसाप्रिया की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई। बैठक में जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं और कर्मचारियों की उपलब्धता एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार की यह योजना पक्के मकान में रहने की गरीबों की मुराद पूरी कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी इंद्रावती ने बताया,
3: हमारा परिवार एक झोपड़ी में रहता था, पक्का मकान एक सपना जैसे था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे उस सपने को पूरा कर दिया। अब हमारे पास अपना पक्का घर है।
2: अंबेडकर नगर में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस विशेष अभियान चला रही है। महिला पुलिसकर्मी सार्वजनिक स्थलों, बैंकों, तहसीलों आदि स्थानों पर जाकर महिलाओं को उनके अधिकार और सुरक्षा के बारे में जागरूक कर रहे हैं। मुहर्रम के त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पुख्ता तैयारी कर रहा है। संवेदनशील इलाकों में जगह जगह सुरक्षा चौकियां बनाई जा रही हैं। जिलाधिकारी ईसाप्रिया और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने शहर का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अंबेडकर नगर में इस समय विकास कार्य तेजी से चल रहा है। जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के द्वारा ग्रामीण इलाकों में तेजी से विकास कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क

0: और नाली निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अंबेडकर नगर में महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज द्वारा मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। कॉलेज प्रशासन अब शाम 4 बजे तक ओपीडी का संचालन कर रहा है। शाम 4 बजे तक मरीजों को अस्पताल की सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में सिर्फ अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेज में लागू हुई है। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार यादव ने बताया कि मरीजों की सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है और इसका लाभ भी मिल रहा है। अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना को धरातल पर लागू करने के लिए प्रशासन सक्रिय है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को अनुदान मिलेगा। इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी ईशा प्रिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु जनपद के कृषकों एवं उद्यमियों को विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्राप्त लक्ष्य एवं अनुदान आदि की समीक्षा की गयी। बैठक में जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत इच्छुक कृषक अपना पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं अथवा जन सेवा केंद्र के माध्यम से करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद अंबेडकर नगर को विभिन्न उद्यानिक कार्यक्रमों के लिए लक्ष्य आवंटित किए गए हैं, जिनमें सब्जी क्षेत्र विस्तार, पुष्प क्षेत्र विस्तार, फल क्षेत्र विस्तार, मसाला फसलों का विकास, प्याज क्षेत्र विस्तार, फेसिंग मल्चिंग तथा सघन बागवानी कार्यक्रम शामिल। किसानों को टिशू कल्चर, मशरूम उत्पादन इकाई, EDBE, वर्मी बेड तथा मल्चिंग जैसे कार्यक्रमों का भी लाभ प्रदान किया जाएगा। जिलाधिकारी ने जनपद के कृषकों से अधिक संख्या में योजना का लाभ लेने हेतु समय से आवेदन करने की अपील की है।
1: अंबेडकर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय निगम का।
2: जनपद के प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद विगत 5 जून को पहली बार बांदा पहुंचे प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने स्थानीय सर्किट हाउस में प्रशासनिक समन्वय समिति की बैठक की। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासनिक व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। बाद में स्थानीय कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बात करते हुए उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि डबल इंजन सरकार के द्वारा बांदा का बेहतर विकास किस तरह से हो, इसको लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक लोगों के साथ चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जनजीवन किस तरह से सुगम और व्यवस्थित हो, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। जनपद के अधिकारी सरकार की आशा के अनुरूप जनता की बेहतर सेवा कर रहे हैं। जहां असुविधा होगी वहां और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। दिनेश प्रताप सिंह ने वार्ता के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा,
3: केवल सरकार को कटघरे में खड़ा करके सस्ती लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से चर्चा करते हैं। जब भारत पे संकट हो तो विदेशी नागरिक नहीं, भारत के नागरिक बन करके देश के प्रधानमंत्री जी का साथ दें। भारत की न्यायालय परीक्षण कर रही है कि राहुल गांधी भारतीय हैं भी या नहीं, इसी कारण वो भारत के विपरीत चर्चा करते हैं।
2: जनगणना कार्य को पूरा करने में प्रदेश में बांदा जनपद प्रथम स्थान पर है। बांदा में काफी तेज गति से जनगणना का कार्य संपन्न हुआ है। इस कार्य में समयबद्ध तरीके से बेहतर कार्य करने वाले प्रगणकों को जिला प्रशासन के द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस वर्ष बांदा पूरे देश में सबसे अधिक तापमान वाला जनपद बना रहा। इसके बावजूद भीषण गर्मी में भी यहां जनगणना कार्य में लगे प्रगणकों ने पूरे मनोयोग से कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा कर लिया। बांदा के जिलाधिकारी अमित आचेरी ने बताया कि प्रभावी मॉनिटरिंग एवं जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों के फल स्वरूप सिर्फ 15 दिनों में कार्य पूर्ण कर जनपद बांदा ने डिजिटल हाउस लिस्टिंग संबंधी कार्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने बताया,
4: बांदा पूरे प्रदेश में सबसे पहला जनपद बना जिसने अपने फेज 1 सेंसस को पूरा किया, और इसके लिए यहाँ के सभी बांदा के जनपद वासी सबको मैं शुक्रगुजार हूँ कि सबने इतना कॉपरेट किया हमारी टीम्स के साथ, और हमारे न्यूमरेटर्स, चार्ज ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिशियल्स, फील्ड ऑफिसर्स, ये सभी बधाई के पात्र हैं, और इन सबकी मेहनत के कारण हम लोग ये मुकाम हासिल कर पाए हैं।
2: यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य विगत 28 मई को बांदा पहुंचे, जहां वे जनपद के चिल्ली गांव में आयोजित ग्राम तीर्थ स्थापना कार्यक्रम के समापन में शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बाद में मुख्यमंत्री ने भाजपा जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। जनपद के चिल्ली गांव में आयोजित ग्राम तीर्थ स्थापना कार्यक्रम में आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने के परिणाम हम भुगत रहे हैं। हमने पेड़ काटे लेकिन लगाने का काम नहीं किया। जल का दोहन तो किया लेकिन संरक्षण नहीं किया। हमें प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि सभी जगह जनता की सुनवाई हो, साथ ही हमारे कार्यकर्ताओं की समस्याओं का भी समय से निस्तारण हो। कांग्रेस के द्वारा महंगाई पर प्रदर्शन करने को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा,
5: ऊर्जा संकट के समय एक गंदी राजनीति करने वालों को जनता ही जवाब दे। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिस देश ने डीजल

0: पेट्रोल गैस के दाम न बढ़ाए, सबसे कम दाम बढ़ाने का काम कहीं हुआ है तो भारत में हुआ है।
1: पुलिस ने बांदा नगर क्षेत्र में नकली और मिश्रित गुटखा निर्माण करने वाली फैक्ट्री बरामद कर मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से लगभग 2 लाख की कीमत के निर्मित व अर्ध निर्मित गुटखा और गुटखा बनाने की सामग्री सहित बड़ी कंपनियों के डुप्लीकेट रैपर भी बरामद किए हैं। बांदा की सहायक पुलिस अधीक्षक नेविस्टक ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के कालूकुआं मोहल्ले से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मकान पर नकली व अपमिश्रित गुटखा बनाया जा रहा है। जानकारी होने के बाद तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वहां मौजूद गुटखा निर्माण कर रहे एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया, जिसके पास से पुलिस को अवैध गुटखा बनाने वाली सामग्री सहित भारी मात्रा में निर्मित व अर्ध निर्मित गुटखा बरामद हुए हैं। जनपद के कमासिन क्षेत्र में 74.91 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन सिंह वाहिनी पंप नहर परियोजना का कांड अब कार्य अब अंतिम चरण पे है। 2.5 साल में इस परियोजना का 90% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नवंबर माह तक इसका कार्य पूरा हो जाएगा। इस कार्य की शुरुआत दिसंबर 2023 को हुई थी। इस आधुनिक पंप नहर की क्षमता 50 क्यूसेक की है। कमासिन और इसके आसपास के दर्जनों गाँव के किसानों को सिंचाई के लिए पानी की समस्या होती है, लेकिन सिंह वाहिनी पंप नहर के निर्माण से अब किसानों की यह समस्या दूर हो जाएगी।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रातः के 9:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा।

एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना। स्वर थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के फिल्म थे ज्वेल थीफ। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। स्वर एक बार फिर से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के हैं, धुन बनाई है रविंद्र जैन ने। फिल्म का नाम है चोर मचाए शोर।

साथियों, अब लीजिए सुनिए फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना से आशा भोसले और मोहम्मद रफी को। गीतकार है SH बिहारी, संगीतकार है OP नैयर।

लक्ष्मीकांत प्यारीलाल के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी की शब्द रचना स्वर्थ मोहम्मद रफी का, फिल्म थी आप आए पहाड़ा। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं उषा शर्मा के गाए कुछ लोक गीत।

0: श्रोताओं, लोक संगीत की कार्यक्रम में अभी आप सुन रही थी उषा शर्मा की गाय कुछ लोक गीत। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता।

साथियों, फिल्म बुलेट राजा से अभी आप सुन रहे थे वाजिद और श्रेया घोषाल को। गीतकार थे कौसर मुनीर, संगीतकार थे साजिद वाजिद।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का आगरा केंद्र, प्रस्तुत किया जा रहा है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता।

0: साथियों, फिल्म जिला गाजियाबाद से अभी आप सुन रहे थे मोहित चौहान और तुलसी कुमार को। गीत गाते शबीर अहमद, संगीत गाते अमजद नदीम।
1: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
2: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
3: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

साथियों, इस गीत में स्वर थे श्रेया घोषाल और अजय की, गीतकार थे स्वानंद किरकिरे, संगीतकार थे अजय अतुल, फिल्म का नाम था सिंघम।

साथियों, फिल्म जबरिया जोड़ी से अभी आप सुन रही थी यासिर देसाई को। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब समय है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं राग भटियार में सितार वादन। कलाकार है पंडित निखिल बनर्जी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित निखिल बनर्जी का राग भटियार में सितार वादन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोता, अब समय है कार्यक्रम आज के कलाकार का, जिसे लेकर हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त गरिमा शाक। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं भारतीय संगीत जगत के उस अनमोल कलाकार को

जिनकी आवाज में गहराई भी थी, ठहराव भी था और एक अनोखी आत्मीयता भी। हेमंत कुमार, उनका मूल नाम हेमंत कुमार मुखोपाध्याय था। उनका जन्म 16 जून 1920 को वाराणसी में हुआ, लेकिन उनका बचपन और संगीत संस्कार मुख्य रूप से कोलकाता में विकसित हुए। वे केवल गायक ही नहीं बल्कि संगीतकार, निर्माता और बंगाली हिंदी संगीत के बीच एक मजबूत पुल की तरह थे। उनकी आवाज को कई लोगों ने वॉइस ऑफ गॉड कहकर भी याद किया। उन्होंने बंगाली गीतों से लेकर हिंदी फिल्म संगीत तक अपनी ऐसी पहचान बनाई जिसे समय की धूल भी फीका नहीं कर सकी। उनकी आवाज में शोर नहीं था बल्कि एक शांत नदी जैसा प्रवाह था जो सीधे दिल तक उतर जाता था। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उनके बेहद लोकप्रिय गीत से।

दोस्तों, हेमंत कुमार का संगीत सफर बहुत कम उम्र से शुरू हुआ। किशोरावस्था में ही उनका रुझान साहित्य और संगीत की ओर बढ़ने लगा था। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू जरूर की, लेकिन उनका मन सुरों की दुनिया में बसता था, इसलिए उन्होंने संगीत को ही अपना जीवन बना लिया। बंगाल में वे हेमंत मुखोपाध्याय के नाम से लोकप्रिय हुए और धीरे धीरे उनकी गहरी मखमली आवाज ने श्रोताओं के मन में एक अलग जगह बना ली। हिंदी फिल्मों में भी उनकी आवाज ने प्रेम, प्रतीक्षा और भावुकता को बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया। उनकी गायकी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वे शब्दों को केवल गाते नहीं थे, बल्कि उनमें भावना भर देते थे। फिल्म पतिता का गीत याद किया दिल ने कहा हो तुम, इसी कोमल भाव का सुंदर उदाहरण है। इस गीत में याद, विरह और प्रेम की मिठास बहुत ही सहज रूप से महसूस होती है। हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें मिलकर इस गीत को एक ऐसा मधुर एहसास देती हैं जो सुनने वाले को बीते हुए पलों की और किसी अपने की यादों में ले जाता है।

दोस्तों, हेमंत साहब के करियर की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि उन्होंने गायक और संगीतकार दोनों रूपों में उत्कृष्ट कार्य किया। एक ओर वे अपनी आवाज से गीतों को अमर बनाते थे, वहीं दूसरी ओर अपने संगीत निर्देशन से फिल्मों के वातावरण को गहराई देते थे। उन्होंने नागिन, 20 साल बाद, कोहरा, अनुपमा, साहिब बीवी और गुलाम, खामोशी, बात एक रात की जैसी फिल्मों में गायन या संगीत के माध्यम से यादगार योगदान किया। खासकर नागिन के संगीत ने उन्हें बहुत बड़ी पहचान दिलाई और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सम्मान भी मिला। 20 साल बाद और कोहरा जैसी फिल्मों में उनका संगीत रहस्य, रोमांच और भावुकता का अद्भुत मेल प्रस्तुत करता है। हेमंत कुमार की धुनों में अनावश्यक सजावट नहीं होती थी, वे सरल, सुरीली और भावपूर्ण होती थी। यही कारण है कि उनके गीत आज भी पुराने नहीं लगते।

दोस्तों, हेमंत कुमार की संगीत रचना का एक अलग ही संसार था। वे भय, रहस्य और रोमांस को संगीत में बेहद खूबसूरती से पिरोते थे। फिल्म 20 साल बाद इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। इस फिल्म का संगीत आज भी हिंदी फिल्म संगीत के क्लासिकल दौर की याद दिलाता है। बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, कहीं दीप जले कहीं दिल, जैसे गीतों ने फिल्म को यादगार बना दिया। हेमंत कुमार की खासियत ये थी कि वे गाने को केवल धुन नहीं देते थे, बल्कि पूरा माहौल बना देते थे। उनकी आवाज में एक रहस्य भी था और एक अपनापन भी। इसी वजह से जब वे गाते थे तो श्रोता गीत सुनते ही नहीं बल्कि उसमें डूब जाते थे। उन्होंने बंगाली संगीत में भी अपार लोकप्रियता हासिल की और रवींद्र संगीत से लेकर आधुनिक बंगाली गीतों तक अपनी एक अलग पहचान बनाई। हेमंत कुमार का संगीत हमें यह सिखाता है कि सादगी में भी कितना गहरा सौंदर्य हो सकता है।

दोस्तों, हेमंत कुमार के गीतों में जो दर्द, शांति और गहराई मिलती है, वह बहुत कम गायकों में दिखाई देती है। फिल्म खामोशी का गीत तुम पुकार लो उनकी आवाज की इसी अनूठी शक्ति का उदाहरण है। ये गीत सुनते हुए लगता है जैसे कोई आवाज दूर से नहीं, भीतर से ही आ रही हो। उनके संगीत निर्देशन में बनी फिल्मों ने यह साबित किया कि वे केवल लोकप्रियता के कलाकार नहीं, बल्कि संवेदना और गुणवत्ता के कलाकार थे। उन्हें 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला। जानकारी के अनुसार उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मानों की पेशकश भी हुई थी, जिन्हें उन्होंने स्वीकार नहीं किया।

हेमंत कुमार का जीवन 26 सितंबर 1989 को समाप्त हुआ, लेकिन उनकी आवाज आज भी समय की सीमाओं से परे सुनाई देती है। वे ऐसे कलाकार थे जिन्होंने प्रसिद्धि पाई, लेकिन अपनी कला की गरिमा और सादगी को कभी पीछे नहीं छोड़ा। उनका व्यक्तित्व शांत था, लेकिन उनकी कला अत्यंत प्रभावशाली थी। उन्होंने हिंदी और बंगाली दोनों संगीत पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। वे उन कलाकारों में से थे जिनके गीत केवल मनोरंजन नहीं करते, बल्कि मन को ठहरना सिखाते हैं। हेमंत कुमार साहब को याद करना भारतीय संगीत के उस स्वर्णिम दौर को याद करना है, जब शब्द, धुन और आवाज मिलकर आत्मा को छू लेते थे। आज भी जब रेडियो पर उनकी आवाज गूंजती है तो लगता है जैसे पुरानी यादों की कोई खिड़की खुल गई हो। इसी सम्मान और स्मरण के साथ ही आपकी रेडियो दोस्त गरिमा शाक्य देती है अपनी वाणी को यही विराम। पर कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं हेमंत कुमार साहब का गाया ये अमर गीत।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का और मैं हूं आपके रेडियो दोस्त करीमा शाक। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि आज हम दो ऐसे विषयों को साथ लेकर चल रहे हैं जो हमारे जीवन, हमारे देश और हमारी आने वाली पीढ़ियों से सीधे जुड़े हुए हैं। पहला विषय है वन संरक्षण पर्यावरण के लिए आवश्यक, जिसे हम विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के संदर्भ में समझेंगे। सरल भाषा में कहें तो मरुस्थलीकरण का मतलब है उपजाऊ जमीन का धीरे धीरे बंजर होते जाना। जब पेड़ कटते हैं, पानी कम होता है, मिट्टी की ताकत घटती है और बारिश का संतुलन बिगड़ता है तो धरती सूखने लगती है। यही कारण है कि जंगलों को बचाना बहुत जरूरी है। जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं होते, वे हमारी सांस, हमारी बारिश, हमारी मिट्टी और हमारे जीवन का सहारा होते हैं। दूसरी ओर, आज हम याद करेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, जिनकी पुण्यतिथि हमें साहस, देश प्रेम और कर्तव्य की याद दिलाती है। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी धरती, अपने राज्य और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। उन्होंने हमें सिखाया कि देश से प्रेम केवल बोलने की चीज नहीं बल्कि निभाने की जिम्मेदारी है। आज हमारी लड़ाई तलवारों की नहीं है, लेकिन हमें अपनी धरती को सूखे, प्रदूषण, जंगलों की कटाई और जल संकट से बचाना है। इसलिए प्रकृति की रक्षा करना भी आज के समय की सच्ची देशभक्ति है। इसी सुंदर भावना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, प्रकृति की खूबसूरती को महसूस कराते इस गीत के साथ।

दोस्तों, जब हम जंगलों की बात करते हैं तो कई बार हमें लगता है कि ये केवल गांव, पहाड़ों या जंगलों में रहने वाले लोगों का विषय है। लेकिन सच तो ये है कि जंगल हर इंसान के जीवन से जुड़े हैं, चाहे वह गांव में रहता हो या शहर में। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, गर्मी को कम करते हैं, बारिश के चक्र को संतुलित रखते हैं और मिट्टी को बहने से बचाते हैं। जब पेड़ कम होते हैं तो जमीन की नमी भी कम होने लगती है। धीरे धीरे खेतों की उपज घटती है, पानी के स्रोत सूखने लगते हैं और कई जगहों पे सूखे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। यही कारण है कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हमें बार बार सावधान करता है कि अगर हमने जंगलों और पानी को नहीं बचाया तो आने वाले समय में हालात और कठिन हो सकते हैं। हमारे देश में किसान की मेहनत, गांव की हरियाली, पशुओं का जीवन और हमारी थाली का अन्न, सब कुछ धरती और जल पर निर्भर है। अगर मिट्टी कमजोर हो जाएगी तो खेती भी कमजोर होगी। अगर पानी कम होगा तो जीवन भी मुश्किल होगा। इसलिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, जैसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, पुराने पेड़ों को कटने से बचाना, बारिश का पानी इकट्ठा करना, खेतों की मिट्टी को बचाने वाले तरीके अपनाना और बच्चों को प्रकृति से जोड़ना। ये काम केवल सरकार का नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। जिस धरती से हमें भोजन मिलता है, जिस हवा से हमें जीवन मिलता है, उस धरती को बचाना हमारा कर्तव्य है। इसी संदेश को बहुत सुंदर ढंग से महसूस कराता है ये गीत।

दोस्तों, हमारी धरती बहुत उदार है। वह हमें अन्न देती है, पानी देती है, फल फूल देती है, छाया देती है और जीवन जीने के लिए सब कुछ देती है। लेकिन आज इंसान की ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं कि कई बार हम प्रकृति से ज़रूरत से ज़्यादा लेने लगते हैं और बदले में उसे कुछ भी नहीं देते। जंगल काट दिए जाते हैं, तालाब पाट दिए जाते हैं, नदियों को गंदा कर दिया जाता है और फिर हम शिकायत करते हैं कि गर्मी बढ़ रही है, बारिश कम हो रही है, पानी नहीं मिल रहा और मौसम बदल गया है। असल में प्रकृति हमें संकेत दे रही है कि अब हमें संभलना होगा। वन संरक्षण का मतलब केवल पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि पेड़ों को बचाना, जंगलों को सुरक्षित रखना, पशु पक्षियों के घर को ना उजाड़ना और मिट्टी पानी का सम्मान करना भी है। आज जरूरत इस बात की है कि विकास भी हो, लेकिन प्रकृति को खत्म करके नहीं। सड़कें बने, घर बने, शहर बढ़े, लेकिन इनके साथ हरियाली भी बची रहे। अगर हर परिवार एक पौधा लगाए और उसे बच्चे की तरह संभाले, अगर हर स्कूल बच्चों को पेड़ पौधों का महत्व समझाए, अगर हर गांव अपने तालाब और पेड़ों की रक्षा करे, अगर हर शहर में खुली जगह और हरियाली को महत्व दिया जाए, तो बदलाव जरूर आएगा। सूखा रोकने का सबसे सरल तरीका है पानी बचाना और हरियाली बढ़ाना। पेड़ जमीन में नमी बनाए रखते हैं, हवा को साफ करते हैं और मौसम को संतुलित रखते हैं। इसलिए जब हम पेड़ बचाते हैं तो हम केवल पर्यावरण नहीं बचाते, बल्कि अपने देश का भविष्य बचाते हैं।

किताबों के नाम नहीं, वे हमारे देश की आत्मा है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि मातृभूमि से प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। इन्हीं महान नामों में एक चमकता हुआ नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। जब भी हम उनका नाम लेते हैं, हमारे मन में एक ऐसी वीरांगना की तस्वीर आती है जिसने कम उम्र में ही साहस, नेतृत्व और देश प्रेम का ऐसा उदाहरण दिया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अंग्रेजों के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया और अपने राज्य झांसी की रक्षा के लिए पूरी शक्ति से संघर्ष किया। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमें बताता है कि मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए बल्कि अपने अधिकार, अपने सम्मान और अपनी धरती के लिए खड़े होना चाहिए। उनका प्रसिद्ध वाक्य मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी केवल एक राज्य की रक्षा की बात नहीं थी बल्कि वह आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की आवाज थी। आज जब हम उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि देश के लिए हमारा कर्तव्य क्या है। आज हमें अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़नी, लेकिन हमें अज्ञानता, लापरवाही, प्रदूषण, पानी की बर्बादी और प्रकृति के विनाश से जरूर लड़ना है। अगर रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी धरती की रक्षा के लिए तलवार उठाई थी तो आज हमें अपनी धरती को बचाने के लिए जागरूकता उठानी होगी। इसी जोश और देशभक्ति के साथ आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, हमारा भारत एक बहुत सुंदर देश है। यहाँ अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनावा, अलग अलग खान पान और अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन देश प्रेम की भावना सबको जोड़ती है। कहीं हिमालय की बर्फीली चोटियां हैं, कहीं राजस्थान का रेगिस्तान है, कहीं गंगा यमुना की पवित्र धाराएं हैं, कहीं केरल की हरियाली है, कहीं मध्य भारत के घने जंगल हैं, तो कहीं खेतों में लहराती फसलें हैं। यही विविधता हमारे भारत को खास बनाती है और इसी भारत को बचाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया। रानी लक्ष्मीबाई ने भी इसी धरती के सम्मान के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया। वे केवल झांसी की रानी नहीं थी, बल्कि भारत की नारी शक्ति, साहस और आत्मसम्मान की पहचान थी। रानी लक्ष्मीबाई ने जिस मिट्टी के सम्मान के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उसी मिट्टी को आज बंजर होने से बचाना हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनकी पुण्यतिथि पर केवल उन्हें याद करना काफी नहीं है, हमें ये भी सोचना होगा कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। क्या हम पानी बचा रहे हैं? क्या हम पेड़ लगा रहे हैं? क्या हम जंगलों को बचाने की बात कर रहे हैं? या फिर क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा और सुरक्षित धरती छोड़ रहे हैं? आज हमें संकल्प लेना होगा कि हम अपने जंगल, जल और जमीन की रक्षा करेंगे। हम पेड़ों को केवल लकड़ी नहीं समझेंगे, बल्कि जीवन का आधार समझेंगे। हम मिट्टी को केवल जमीन नहीं समझेंगे, बल्कि अन्न देने वाली माँ समझेंगे। और हम पानी को केवल सुविधा नहीं, बल्कि जीवन समझेंगे। यही सोच हमें बेहतर नागरिक भी बनाएगी और सच्चा देशभक्त भी। रानी लक्ष्मीबाई का साहस हमें याद दिलाता है कि जब बात अपने देश की हो तो हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए। आज देश की रक्षा का एक बड़ा तरीका है पर्यावरण की रक्षा। आइए हम सब मिलकर ऐसा भारत बनाएं जहां खेत हरे रहें, नदियां बहती रहें, जंगल सुरक्षित रहें और बच्चों का भविष्य खुशहाल रहे। इसी संदेश के साथ मैं, यानी आपके रेडियो दोस्त गरिमा शाक्य, देती है अपनी वाणी को विराम। और अंत में आइए सुनते हैं देश प्रेम से भरा ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, दोपहर के 12 बजने को है, समय है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
3: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक

होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओं। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहां गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहां तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभ देव से जोड़ा जाता है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओं, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियां भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहाँ तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है। आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो श्रोताओं, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है।
आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का

0: पता है audio@cieet.nic.in। हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी।
3: अरे आशीष, दीपिका आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
2: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ पूछो।
2: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
2: अच्छा।
3: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
2: अच्छा।
3: यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
4: अच्छा।
3: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
2: मंगल पांडे।
3: 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
4: अच्छा।
3: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

बड़ बड़ महापुरुषेरा एखाने जन्म निएछे आज के ए देश गोलाम आम्रा प्रतिज्ञा निच्छि भारतवर्षके आम्रा इंग्रेजदेर काछ थेके आजाद।

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के

0: में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
1: दादी उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
0: भाई उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
1: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
0: बेटा उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
2: अच्छा क्या क्या, जरा सुनाओ ना दादी।
0: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
2: ऐसा क्यों?
0: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
1: दादी फिर क्या हुआ?
0: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
4: खुद करनी होगी। सही कहे।
2: फिर क्या हुआ दादी?
0: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
1: फिर क्या हुआ दादी?
0: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
2: अच्छा।
0: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
1: उसके बाद क्या हुआ?
0: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
5: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे तीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे।
4: नहीं होने देंगे, बिल्कुल
5: नहीं। और नहीं हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े।
0: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
5: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
0: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड

0: के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
1: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
2: मंगल पांडे
3: जिंदाबाद,
2: मंगल पांडे
3: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
3: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
3: जिंदाबाद।
0: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉर्म आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
4: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
0: सारी छावनी में खलबली मच गई।
5: के बाद क्या हुआ दादी?
0: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
1: अरेस्ट करो!
4: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे।
5: दादी जी, फिर क्या हुआ?
0: कर्नल व्हीलर वहाँ से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली।

0: खाना मांगता है, तुरंत अस्पताल भेजो।
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूँ।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण

0: मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मसहूर चलल, गोरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भइल, जननी के भेंट परान भइल, आजादी का बल बेदीपा, मंगल पांडे बलिदान भइल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
1: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
2: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
1: अच्छा।
2: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशी का।
4: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
5: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
6: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
5: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
6: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
5: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ। चलो।
6: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
5: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
6: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
5: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
6: ये देखो दीदी, ये मारा। देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
7: अरे ये मारा।
6: अच्छा, तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
7: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
6: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
7: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
5: लगता है कोई आया है। काशु बेटी, देखो दरवाजे पर कौन है।
6: अच्छा माँ, कौन? आप लोग कौन? कहिए किससे मिलना है। अरे
8: हमें अंदर आने दो।
6: अरे क्यों?

0: शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो।
1: तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
2: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
1: ये चाकू देख रही है ना,
2: छोड़ दो। नहीं, मेरी माँ को कुछ मत करो।
3: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम,
1: जल्दी,
3: याद नहीं कहाँ रखी है, छोड़ दो।
4: बहाने बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
3: अरे मेरे बात को छोड़ो,
2: मेरी माँ को छोड़ो।
0: चुप चुप, आवाज निकाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
4: सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
3: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
5: देवेंद्र।
2: हाँ दीदी।
5: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
2: अच्छा, हाँ।

0: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम नए तराने का।
1: आग, कभी कभी रोशनी, कहीं कहीं शोर, रौनकें। कहीं आग आग, कहीं धुआं धुआं, कभी आस पास, कभी यहां वहां, कभी शोर हो तुम, कभी मौन हो तुम।

0: During the meeting held yesterday, Mr. Chauhan highlighted the role of active monitoring by the Stubble Protection Force across 70 tehsils in 14 districts of the National Capital Region. In Puducherry, three new ministers were inducted into the cabinet today, completing the long-awaited expansion of the Council of Ministers. All India NR Congress MLAs P. Rajvelu and VP Shiv Kolundhu and BJP MLA GNS Rajashekaran were sworn in as ministers at a ceremony held at Lok Nivas. In FIFA World Cup 2026, Austria won its first World Cup victory in 36 years with a 3-1 win over Jordan today. Earlier defending champions Argentina also began their World Cup campaign with a dominant 3-0 win over Algeria at Kansas City Stadium in the United States this morning. Lionel Messi scripted history by scoring his 14th, 15th and 16th World Cup goals with a hat-trick in the game. And that is the end of this news bulletin.
1: वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड के जरिए मंतखब करदा 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को तकरर लेटर तकसीम करने के प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुल्क भर में अपनी पहचान बनाई है। पुलिस ने गुज़िश्ता 9 सालों में गुड गवर्नेंस के हदफ को हासिल करने के लिए जिस तरह काम किया है उसने मॉडल पुलिसिंग की मिसाल कायम की। जनाब योगी ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में रियासत में 2.25 लाख पुलिस एहलकारों को मुकम्मल शफाफियत के साथ और बगैर किसी इम्तियाज के भर्ती किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत ने पुलिस एहलकारों की सहूलत पर तवज्जो मरकूज की है और तरबियती सलाहियत में इजाफा किया है। इस मौके पर वजीर आला ने कहा,
2: यूपी पुलिस के स्मार्ट पुलिसिंग की जो परिकल्पना है उसके डिजिटल वॉरियर के रूप में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होने और उस भूमिका का हिस्सा बनने के लिए आप सबको अपने आप, हमने प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया भर्ती आयोगों में बोर्डों में उसके परिणाम आए हैं। हमने 9 लाख से अधिक तो केवल सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो वातावरण बना है, लाखों नौजवानों को उसके माध्यम से निवेश से और उद्योगों की संख्या, आप सोचो कि यूपी के अंदर कुल 14,000 बड़े खाने थे, कुल 14,000, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, एमएसएमई लगभग बंद हो गया था। आज हमारे पास बड़े कारखानों की संख्या इन 9 वर्ष में 32,000 से अधिक हुई है। लाखों नौजवानों को यहां नौकरी मिली है और 96 लाख एमएसएमई यूनिट में फिर से पुनर्जीवित होकर के रोजगार के नए अवसरों को सृजित किया है।
1: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत के अमन अमान की सूरत हाल, आने वाले त्यौहारों, रियासत के 59 अजला में 21 जून को होने वाले नीट इम्तिहान के उम्मीदवारों के लिए खसूसी इंतजाम करने की हिदायत दी। जनाब योगी आदित्यनाथ ने रियासती ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में नीट उम्मीदवारों के किरायों में 50% रियायत का ऐलान किया। वजीर आला ने इम्तिहान से मुतल्लिक अफवाहों, गुमराह किन मालूमात या झूठे दावों को फैलाने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी का हुक्म दिया। वजीर आला ने बैनुल अक्वामी योगा डे की तैयारियों का भी जायजा लिया। मुहर्रम के हवाले से वजीर आला ने कहा कि जुलूसों में असलहे की नुमाइश और ऊंची आवाज में डीजे म्यूजिक की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने अमन और हमाहंगी में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अज़्म भी किया। एनटीए के जरिए 21 जून को मुनक़िद होने वाले आइंदा नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान में शफाफियत को बढ़ाने और पेपर लीक होने के इम्कान को खत्म करने के लिए हुकूमत ने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन पैगाम रसाई को 22 जून तक रोक दिया है। एनटीए ने कहा है कि यह पाबंदी नीट के दोबारा इम्तिहान के दिन और उसके फौरन बाद नाफिज होगी। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को यह भी हिदायत दी गई है कि वह 30 तारीख तक पहले पोस्ट किए गए पैगाम में तरमीम करने के फीचर को बंद कर दे। रियासत में बढ़ते हुए दर्जे हरारत और गर्मी की लहर के हालात के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने बुनियादी तालीम काउंसिल से मुंसलिक स्कूलों और तस्लीम शुदा स्कूलों में गर्मियों की तातीलात 24 जून तक बढ़ा दी है। बुनियादी तालीम और सानवी तालीम महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक अब गर्मियों की तातीलात हर साल 20 मई से 24 जून तक होगी और 25 जून को बाकायदा तालीमी सरगर्मियां दोबारा शुरू होंगी। ताहम असातजा, शिक्षाविद, इंस्ट्रक्टर्स और गैर तदरीसी अमला 22, 23 और 24 जून को स्कूलों में मौजूद रहेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश कयादत में हिंदुस्तान ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर अमल करते हुए गुज़िश्ता 12 सालों में काबिल जिक्र तरक्की की है। इस मौके पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज इस मौजू पर एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है, तरक्की, एतमाद और अवामी बहबूद के 12

0: साल आज इस एपिसोड में हम मुल्की विरसे के तहफ्फुज़ और फरोग के लिए हुकूमती कोशिशों पर बात कर रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया।
0: आज मुहर्रम महीने की यकूम तारीख है। ये महीना गम के लिए जाना जाता है। इसी महीने की 10 तारीख को इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों को कर्बला में शहीद कर दिया गया था। आज यकूम मुहर्रम के मौके पर लखनऊ में शाही जरी का जुलूस 7:00 निकाला जाएगा। और हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम आज अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगी, जिसका मकसद वनडे सीरीज में नाकाबिले तस्खीर बरतरी हासिल करना है। लखनऊ के एकानज स्टेडियम में कप्तान शुभमन गिल की कयादत में हिंदुस्तान का मुकाबला हशमतुल्ला शाहिदी की अफगानिस्तान टीम से होगा। मैच दोपहर 1:30 शुरू होगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2:00 FM पर नश्र किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोता, अब समय है हमारी बहनों के पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार का।

कार्यक्रम घर संसार सुन रही हमारी सभी बहनों को उनकी रेडियो हमसफर मंगला शर्मा पाराशर का सहृदय नमस्कार। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। बहनों, रहीमदास का ये दोहा हमें जल अर्थात पानी का महत्व बड़े ही व्यापक ढंग से समझा देता है कि पानी के बिना कुछ भी नहीं है, पानी है तो सब कुछ है। जहां पानी नहीं वहां क्या है? आइए बहनों, देश के उस सबसे सूखे हिस्से की बात करते हैं जहां बहुत ही कम पानी बरसता है। यह है भारत के राजस्थान राज्य के पश्चिम का मैदानी भाग जो कि थार मरुस्थल कहलाता है। इसका लगभग 85% भाग भारत के राजस्थान और लगभग 15% भाग पाकिस्तान में स्थित है। बहनों, थार शब्द की उत्पत्ति थल से हुई है जिसका अर्थ होता है रेत का टीला। 2,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस थार मरुस्थल की विशेषताओं में ऊंचे ऊंचे रेतीले टीले, कैक्टस, झाड़ियां, घास जैसे कि सेवन और धामण, खेजड़ी और रोहिड़ा जैसे मरुद्भिद पौधे और वन्य जीवों में ऊंट, चिंकारा, काला हिरण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शामिल है। बहनों, गर्मियों में थार मरुस्थल का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और सर्दियों में काफी ठंड भी पड़ती है। थार रेगिस्तान का इतिहास बहुत पुराना है जहां कई प्राचीन सभ्यताएं फली और फूली हैं। हालांकि इस क्षेत्र की संस्कृति बहुत समृद्ध है, विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों के बावजूद यहाँ की लोक कला, संगीत, वस्त्र परंपरा इसे जीवंत करती है। थार रेगिस्तान के अंतर्गत आने वाले प्रमुख जिले जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चुरू, नागौर, बाड़मेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ हैं। थार मरुस्थल पर्यटन का एक बड़ा आकर्षण केंद्र भी है। बहनों, आपको बता दें कि थार मरुस्थल दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। आज थार मरुस्थल की चर्चा करने का एक मुख्य कारण है, जी हाँ बहनों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि के क्षरण यानी कि बंजर होने और सूखे की गंभीर समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करना है। और आइए अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: बहनों, भारतीय परंपरा में शक्ति की उपासना की जाती है, लेकिन हमारे भारतीय समाज की एक विडंबना ये भी है कि जहाँ कन्या की पूजा की जाती है, वहीं कुछ लोग इन्हें गर्भ में ही समाप्त कर देने से भी नहीं हिचकते। कारण है कुछ पुरातन धार्मिक रूढ़ियाँ, जिनके अनुसार संतान के रूप में पुत्र का होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। बहनों, लेकिन समय के साथ बेटियों ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि संतान बेटा हो या बेटी, अगर उन्हें योग्य, शिक्षित और संस्कारी बनाया जाए तो जीवन को सुख और समृद्धि से बिताया जा सकता है। आज की कहानी रश्मिया भी ऐसा ही चित्र लेकर आई है। कहानीकार हैं रमा वर्मा।
3: व्योम और चांदनी एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे। वे दोनों क्लास के होनहार छात्रों में गिने जाते थे। कॉलेज की पढ़ाई के बाद चांदनी कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। इसी बीच चांदनी के पापा ने व्योम से चांदनी का रिश्ता तय कर दिया। दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गया। विवाह के बाद चांदनी अपनी ससुराल में आ गई। चांदनी ने अपने स्नेहिल व्यवहार तथा परिश्रम से व्योम के घर वालों का दिल जीत लिया। बहुत जल्दी ही वो पूरे घर की लाडली हो गई। समय भी पर लगाकर उठने लगा। विवाह के बाद चांदनी को पता ही नहीं चला।

चला कि 2 साल कब निकल गए। इसी बीच चांदनी गर्भवती हो गई। गर्भवती होने की बात जब सास तथा जेठानी को पता चली तो वो भी बहुत खुश हुई और चांदनी का खाने पीने का ध्यान रखने लगी। व्योम भी बहुत खुश हुआ, चांदनी के पांव जैसे धरती पर ही नहीं टिक रहे थे, क्योंकि वो माँ बनकर जीवन की पूर्णता को प्राप्त होने जा रही थी। चांदनी ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम सोना रखा गया। जैसे जैसे सोना बड़ी होने लगी तो चांदनी को आने वाले खर्चों की चिंता सताने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी कि कब तक मैं सास ससुर पर बोझ बनी रहूंगी, मुझे भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और परिवार की सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर उसने अपनी पढ़ाई पुनः प्रारंभ कर दी। अतिशीघ्र ही उसकी मेहनत रंग लाई, वह समाज कल्याण विभाग में क्लर्क के पद पर नियुक्त हो गई। वो बहुत खुश थी, अपने परिवार का संबल बन गई। जब वो नौकरी पर जाती तो सोना की देखभाल उसकी सास करती। इस तरह जीवन की गाड़ी पटरी पर चलने लगी। नौकरी करते हुए अभी चांदनी को 1 साल ही हुआ था कि चांदनी दोबारा गर्भवती हो गई। दोबारा गर्भवती होना किसी को भी अच्छा नहीं लगा, यहाँ तक कि व्योम भी इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहता था। सबसे अधिक तो पूरे परिवार को इस बात की चिंता हुई कि चांदनी के पेट में दूसरी लड़की हुई तो क्या होगा, दो दो बेटियों का दान दहेज पढ़ाई लिखाई व्योम कैसे जुटा पाएगा। घर में आपस में कानाफूसी चल रही थी कि चांदनी ऑफिस से आ गई। चांदनी के आते ही सब चुप हो गए। चांदनी ने अपने कपड़े बदले, हाथ मुंह धोया और सीधी रसोई संभाल ली। सबके लिए चाय बनाकर लाई, बैठकर साथ में चाय पीने लगी। चाय के घूंट उतारते हुए चांदनी ने व्योम से पूछा, क्या बात है, आज सब लोग चुप चुप कैसे हैं? क्या कुछ झगड़ा हुआ है? व्योम ने कहा, नहीं चांदनी, झगड़ा तो नहीं हुआ, एक बात पर चर्चा पर चल रही है, तुम चाय पी लो फिर मैं बताता हूँ। चांदनी ने चाय पी ली, फिर पूछा, हाँ व्योम, अब बताओ कि घर में चर्चा का विषय क्या था जो मेरे आते ही बंद हो गया, बताओ ना। व्योम बोला, चांदनी दरअसल बात यह है कि अम्मा कह रही थीं कि चांदनी जल्दी जल्दी गर्भ धारण करेगी तो कमजोर हो जाएगी, अभी बड़ी बेटी भी छोटी है, यदि कमजोर हो गई तो नौकरी कैसे कर पाएगी, इसलिए चांदनी से कहो कि अस्पताल जाकर जांच करा ले और गर्भ में बेटी हो तो गर्भपात कराना ही सबके लिए बेहतर होगा। उनकी बातों में मुझे भी सच्चाई लगी, इसलिए मैं भी सोचता हूँ कि कल तुम छुट्टी लेकर मेरे साथ अस्पताल चलो और जांच कराते हैं, या जरूरत हुई तो गर्भपात करा देंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, आजकल तो आधुनिक मशीनों द्वारा सब काम होता है, कष्ट नहीं होगा, फिर मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। चांदनी को व्योम की बात बहुत कड़वी लगी। उसने व्योम से कहा, व्योम यह तुम कह रहे हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, यदि मेरे गर्भ में दूसरी बेटी होती भी है तो क्या हुआ, मैं नौकरी कर रही हूँ, तुम भी कोई काम कर लेना, हम दोनों अपनी बच्चियों की पढ़ाई लिखाई दान दहेज विवाह सब खुद करेंगे, फिर मैं तो बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं मानती, क्योंकि आजकल बेटों से ज्यादा बेटियां माता पिता का ध्यान और उनका सहारा बन रही हैं। वे लड़कों की तरह सारी संपत्ति अपने नाम कराकर माता पिता को वृद्धाश्रम में नहीं भेजती, समझे, मेरे गर्भ में बेटा हो या बेटी मैं उसे जन्म दूंगी, मैं गर्भपात नहीं कराऊंगी। व्योम चांदनी का दृढ़ संकल्प सुनकर आग बबूला हो गया और क्रोधावेश में कमरे से बाहर उसका सामान निकाल निकाल कर फेंकने लगा। चांदनी से भला बुरा कहते हुए हिंसक हो गया, उसे घसीटते हुए बोला, जा घर से निकल जा, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, तुझे नौकरी का बड़ा घमंड हो गया है, जा अपने मायके चली जा, बुला ले अपने बाप को। चांदनी ने रोते हुए अपने पापा को फोन किया और कहा, पापा ये मुझे घर में नहीं रहने दे रहे हैं, मुझे आप आके ले जाओ, मैं भी अब यहाँ रहना नहीं चाहती। दूसरे दिन चांदनी के पापा आ गए और अपनी बेटी तथा सोना को अपने साथ लेकर घर चले गए। समय बीतता गया, चांदनी ने दूसरी बेटी को जन्म दिया। उसके नामकरण संस्कार वाले दिन पंडित जी ने उसका नाम मोना रखा। बच्चियां नाना की देखरेख में बड़ी होने लगी। जब वे पढ़ने लायक हो गईं, तो चांदनी के पापा ने दोनों का नाम पास के ही स्कूल में लिखा दिया। बच्चियां पढ़ने लगीं। दोनों बच्चियां अपनी माँ की तरह होनहार थी, इसलिए सोना IAS अधिकारी बन गई और मोना डॉक्टर बनकर सरकारी अस्पताल में लग गई। जिस अस्पताल में मोना की पहली पोस्टिंग हुई वो उसके पापा के मोहल्ले में पड़ता था। एक दिन व्योम की हालत बहुत गंभीर हो गई। उसकी गंभीर हालत में उनके घर वालों ने उसी अस्पताल में भर्ती करा दिया जहां पर मोना अपनी ड्यूटी कर रही थी। मोना एक एक मरीज की रिपोर्ट चेक कर रही थी, तभी गंभीर हालत में बेड पर पड़े मरीज के पास आकर उसकी रिपोर्ट चेक करने लगी।
उस रिपोर्ट पर व्योम का नाम तथा पता लिखा था। मोना समझ गई कि ये मेरे पापा हैं। उन्हें गंभीर हालत में देखकर उसका दिल पिघल गया और आंखों में आंसू भर आए। खुद को संभालते हुए सेवा

0: समय लग गई, उसकी सेवा से व्योम ठीक होने लगे। कुछ दिनों में ही वे बोलने लगे तथा चलने भी लगे। एक दिन जब वे अपने बेड पर बैठे थे, तब उन्होंने मोना को बुलाया और मोना से कहा, बेटी मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ अंकल, पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? बेटी तुम्हारे पिता का क्या नाम है? अंकल मैं पापा का नाम तो नहीं जानती, क्योंकि मैं उनके पास नहीं रही। हाँ मैं अपने नाना का नाम अवश्य जानती हूँ, क्योंकि उनके यहाँ ही मेरा जन्म हुआ। मेरा पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई सब उन्हीं की देखरेख में हुई है, इसलिए मैं सिर्फ उनका ही नाम बता सकती हूँ। उन्हें कुंज बिहारी राठौर के नाम से जाना जाता है। चांदनी के पापा का नाम सुनते ही व्योम चौंक गए और सोचने लगे कि मोना चांदनी की ही बेटी है। उसे देखकर उनके मन में स्नेह का सागर मुड़ने लगा और उनकी आंखों में आंसू भर आए। अपने आंसुओं को पोंछते हुए मोना से बोले, बेटी मैं तुम्हारे नाना से मिलने तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। जैसे ही व्योम ठीक हुए, वे अपनी बेटियों तथा चांदनी से मिलने पहुंच गए। व्योम ने गेट खटखटाया, चांदनी गेट खोलने बाहर आई। व्योम को इतने लंबे अंतराल के बाद दरवाजे पर खड़ा देख उसका हृदय दुख से भर गया। दरवाजा खोले बिना वह अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। व्योम दोबारा दरवाजा खटखटाने लगे। चांदनी के पापा ने जब घंटी सुनी तो वे दरवाजे पर आए। दरवाजे पर व्योम को देखकर वे भी आश्चर्य पड़ गए और थोड़ा सोचने के बाद व्योम को अंदर आने को कहा। व्योम अंदर आकर बैठक में बैठ गए। चांदनी के पापा के पांव छूते हुए व्योम ने कहा, पापा मुझे माफ कर दें, मैं चांदनी को लेने आया हूँ। अब मैं चांदनी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। चांदनी के पापा ने कहा, व्योम माफी मुझसे नहीं चांदनी से मांगो। तुमसे अलग रहकर जो दर्द उसने सहा है वह अकल्पनीय है तथा अवर्णनीय है, अतः तुम्हें चांदनी से माफी मांगनी होगी। आपने ठीक कहा, मैं चांदनी से 100-100 बार माफी मांग लूंगा कि मेरी गलती की सजा आज तक चांदनी भुगत रही है। उसका तो कोई दोष न था, सिर्फ मेरी मूर्खता थी। यह कहते हुए व्योम चांदनी के कमरे में चला गया। चांदनी बेड पर पड़ी सिसकियां भर रही थी। व्योम ने चांदनी को उठा, अपने सीने से लगाया और अपनी गलती की माफी मांगी। चांदनी मुझे माफ कर दो, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वह भी व्योम के गले से लगकर अपने आंसुओं में सारा दुख बहा देना चाहती थी। बहुत देर तक रोती रही। व्योम ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, चांदनी तुम तैयार हो जाओ, हम लोग घर चलेंगे। घर पहुंचकर व्योम ने अपनी बेटियों का सबसे परिचय कराया और कहा, माँ ये बेटियां हमारे घर की रश्मियां हैं, अब दुख का अंधेरा कभी नहीं आएगा, इन रश्मियों से उजाला ही उजाला फैल जाएगा, उजाला ही उजाला फैल जाएगा, उजाला ही उजाला फैल।
1: बहनों अभी आपने सुनी रमा वर्मा की कहानी रश्मियां, और अब समय है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद फिर जुड़ेंगे आपसे कार्यक्रम के अगले सेगमेंट मेरी माटी मेरा देश में।
2: अरे भाई रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो फिर आराम से पार कर लेना।
3: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
4: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: बहनों यह सत्य है कि बालक के चरित्र और उसके व्यक्तित्व को गढ़ने वाली उसकी माँ होती है। भारत के ऐसे ही एक महापुरुष थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी, और उनकी माता थी राजमाता जीजाबाई। जीजाबाई का जन्म 12 जनवरी सन 1598 को महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के सिंदखेड़ में हुआ था। उनके पिता लखुजी जाधव और माता महालसाबाई थीं। उनके पिता निजामशाही दरबार में एक शक्तिशाली सरदार थे। कम उम्र में ही उनका विवाह वेरुल एलोरा के भोसले परिवार के शाहजी राजे से कर दिया गया था, जो निजाम और बाद में आदिल शाह के अधीन एक प्रमुख सैन्य कमांडर बन गए थे। जीजाबाई केवल गृहिणी नहीं थी बल्कि एक कुशल घुड़सवार, तलवारबाज और रणनीतिकार भी थी। यही कारण था कि उन्होंने अपने पति और पुत्र को हमेशा सही राजनीतिक कूटनीतिक सलाह दी। जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन से ही रामायण, महाभारत, अन्य धर्म ग्रंथों की कहानियां सुनाकर नैतिक और चारित्रिक मूल्यों से परिपूर्ण किया था। शिवाजी को अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया और हिंदवी स्वराज्य का

सपना भी जीजाबाई ने दिखाया जब शिवाजी ने मुगलों और आदिलशाहियों के खिलाफ सफलतापूर्वक मराठा साम्राज्य की नींव रख दी और हिंदवी स्वराज की स्थापना की। उसके कुछ समय बाद 17 जून सन 1674 को राजगढ़ किले में जीजाबाई का निधन हो गया। इस तरह जीजाबाई जीवन में बहुत से संघर्षों का सामना करते हुए स्वाभिमान और धर्म की रक्षा के लिए सदैव अडिग रहीं। बहनों, आज राजमाता जीजाबाई की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए आइए सुनते हैं नारी शक्ति को समर्पित ये गीत।

0: सत्य का मार्ग ही सही मार्ग है। यदि 1000 लोग भी किसी गलत बात का समर्थन कर रहे हों, तब गलत को गलत कहने का साहस ही वास्तविक सत्य है। ये महान विचार महात्मा गांधी ने दुनिया के सामने रखे, बल्कि कथनी और करनी को समान रखने का साहस भी उन्होंने दिखाया। बहनों, जीवन पथ पर चलते हुए सत्य और असत्य का निर्णय लेने की विवेकपूर्ण सीख हमें सभी धर्मों ग्रंथों द्वारा भी प्रदान की गई है। ठीक इसी तरह हमारे दैनिक जीवन में घरेलू, कार्यालयी, सामाजिक स्तर पर सही के लिए हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। कभी भी किसी प्रकार के स्वार्थ या भय के कारण अपना निर्णय बदलना नहीं चाहिए। गलत को गलत कहना सीखें, फिर चाहे आपके सामने कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी रिश्ता हो। बहनों, सही और गलत के अंतर को जरूर समझें और गलत को गलत कहना भी सीखें। और अब बारी है कार्यक्रम के खास सेगमेंट कुछ तुम कहो कुछ हम की, जिसमें आप सुनेंगी गर्मियों में पेट्स की देखभाल विषय पर डॉक्टर गिरजेश उपमन्यु से हमारी बातचीत। डॉक्टर गिरजेश, कार्यक्रम घर संसार में आपका स्वागत है।
1: जी नमस्कार।
0: हर मौसम की अपनी विशेषताएं होती हैं, जिसके हिसाब से हम अपनी रहन सहन और खान पान की आदतों में बदलाव करते हैं। इंसानों की तरह यही बात अगर पशु पक्षियों पर भी लागू होती है, तो घर में रहने वाले पेट्स की अगर बात की जाए, तो गर्मी के मौसम में इनकी देखभाल कैसे की जानी चाहिए?
1: पेट्स की देखभाल के लिए हम शुरू करते हैं सुबह उठने से लेकर। पेट्स में जैसे कैट्स है, डॉग हैं, या आजकल बर्ड्स भी लोग रखते हैं, तो इनमें खास तौर से डॉग्स जो हैं वो अपने दैनिक कार्य के लिए घर से बाहर ही जाना पसंद करते हैं। कोशिश करें कि उनको अर्ली मॉर्निंग सुबह टहलाने ले जाएं। जैसे हम अगर लेट ले जाएंगे तो जैसे सूरज आ जाते हैं तो टेम्परेचर राइज होने लगता है, तो फिर उनको हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करें कि सुबह अर्ली

0: ले जाए और ऐसे इवनिंग में भी सूरज ढलने के बाद ही ले जाए। घर में हर समय साफ पीने का पानी रखें ताकि जब जब भी उनको प्यास लगे तो वो अपनी इच्छा से पानी पी सके। दिन के समय जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, अब 40 चला जाता है, तो अपने पेट्स को, खास तौर के डॉग्स को, गैलरी में या गार्डन में या लॉन्स में ना रखें, उनको घर के अंदर रखें और कोशिश करें कि ठंडी जगह पर रहे। अगर ठंडी जगह नहीं है तो कूलर या एसी का आप इस्तेमाल करें। गर्मियां हैं तो आप कोशिश करें कि जैसे दही है जिसकी सीरत ठंडी होती है, इस तरह के फूड्स आप यूज में लें। अगर आप डॉग फूड भी देते हैं तो उसको ड्राई फॉर्म में ना दें, उसको 5-10 मिनट पानी में सोक करने के बाद ही दें।
1: गर्मियों में पेट्स को किस तरह की परेशानियां या डिसीज होने का खतरा रहता है? इनके उपाय और उपचार पर आपके क्या सुझाव हैं?
0: आज जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, अब जैसे हीट स्ट्रोक है, दिन में टेम्परेचर 40 अबव चला जाता है तो उनको हीट स्ट्रोक की समस्या आ सकती है, पहला तो। दूसरा, इस सीजन में टिक्स एंड फ्लीज और अदर एक्टोपैरासाइट्स बहुत होते हैं, तो जब हम जैसे दैनिक कार्य के लिए हम डॉग्स को बाहर ले जाते हैं तो उनको बाहर से टिक और फ्लीज उनको बॉडी पर लग सकते हैं, तो उससे फर्दर डिजीज एक होती है टिक फीवर नाम की, तो उससे बचाव के लिए आप टिक्स के लिए इंजेक्शंस आते हैं, पाउडर आते हैं, टैबलेट्स आती हैं, उनका यूज करें। दूसरा, गर्मी में डर्मेटाइटिस यानी कि खुजली हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, रूसी जैसी स्किन हो रही है, लाल चकत्ते हो रहे हैं, पैचेस में बाल उड़ रहे हैं, एक ये बहुत समस्या रहती है डॉग्स को, तो ये बैक्टीरियल भी हो सकती है, फंगल भी हो सकती है और हमारे रहन-सहन की वजह से भी हो सकती है। अब जैसे हम घर में, हमारे पोछा लगा, गर्मी का टाइम है तो डॉग और कैट्स क्या करते हैं, गीले फर्श के ऊपर लेट जाते हैं, तो वो बार बार नमी लगने से फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या वो अपने पीने का पानी फैला लेते हैं, उसके ऊपर बैठ जाते हैं गर्मी से बचने के लिए, तो ये भी फर्दर आगे डिजीज करते हैं। अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आप देखते हैं तो जल्द से जल्द आप अपने नजदीकी वेट से संपर्क करें।
1: बहुत से लोग जो एनिमल लवर्स हैं वो अपने पेट्स के अलावा स्ट्रे एनिमल्स का ख्याल रखने के लिए भी प्रयासरत रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: स्ट्रे एनिमल्स हैं जैसे डॉग्स हैं, कैटल्स हैं, हॉर्सेज हैं, डोंकीज हैं, इनको भी हीट स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, इनको भी टिक्स लगते हैं, इनको भी छांव चाहिए गर्मी से बचने के लिए, साफ पानी चाहिए। तो हमें एज अ सोसाइटी चाहिए कि हम अपने घर के बाहर पानी की व्यवस्था रखें, नाद वगैरह आप रख लें छोटी छोटी, जिससे कि स्ट्रे एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, कैटल्स हैं, वो उनको पानी के लिए दर दर भटकना ना पड़े, उनको पानी अवेलेबल हो जाए। सोसाइटी में कोई ऐसी स्पेस है, प्लॉट खाली है, तो वहाँ पे आप टेम्परेरी शेड का इंतजाम कर सकते हैं उनके रहने के लिए।
1: आज अपना अमूल्य समय निकालकर जानवरों की देखभाल से संबंधित जो भी जानकारी आपने हमसे साझा की है, उसके लिए आपका धन्यवाद।
0: जी, धन्यवाद।
1: बहनों, अब करेंगे बात पति की। सेहतमंद रहने के लिए पानी पीना बहुत जरूरी होता है और इस तथ्य से हम और आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। खूब सारा पानी पीना और सही ढंग से पानी पीना दोनों अलग-अलग बातें हैं। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बेनो, हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक पानी की अहमियत को जानने और समझने के बावजूद हम सब शरीर की पानी से संबंधित ज़रूरतों को सबसे ज़्यादा अनदेखा करते हैं। कई दफ़ा होता है कि हमें शाम के वक्त याद आता है कि हमने तो दिन भर में बहुत ही कम पानी पिया है, और फिर हम ढेर सारा पानी पीने की कोशिश करते हैं, जो कि बहनों सेहत की लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं। मानव शरीर, खासकर हमारी आंतें, एक बार में केवल एक सीमित मात्रा में ही पानी को अवशोषित करने की क्षमता रखती हैं। एक ही बार में अधिक मात्रा में अगर पानी पी लिया जाए तो हमारा शरीर उसे सोख नहीं पाता और किडनीज पर दबाव बढ़ जाता है। खाना खाने के तुरंत बाद भी

पानी ना पिए, हालांकि खाने के दौरान एक दो घूंट पानी के लिए जा सकते हैं। बहनों, सबसे अच्छा तरीका है कि अपने फोन में रिमाइंडर या फिर प्रति आधा घंटे का एक ऐसा अलार्म लगाएं जो आपको एक गिलास पानी पीने की याद दिलाता रहे। पानी को एक बार में नहीं बल्कि घूंट घूंट करके पीना है ताकि इसका अवशोषण मुंह से लेकर हमारे पेट तक अच्छी तरह से हो जाए। और बहनों, अब घड़ी का इशारा हो गया है कार्यक्रम का समापन करते हुए। दीजिए आज्ञा अपनी रेडियो सहेली मंगला शर्मा पारशर को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारी बहनों का कार्यक्रम घर संसार आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम सुगम संगीत का। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं शोभी माथुर की आवाज में कुछ भजन। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

इसी भजन के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। श्रोता, दोपहर के 2 बजने को है, अब आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, तत्पश्चात हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: campaign against Hezbollah in Lebanon, saying the conflict has continued for too long and has led to excessive civilian casualties. Speaking on the sidelines of the G7 summit in France, Mr. Trump said Israel was fighting Hezbollah too long and that too many people are being killed. India has delivered another 5 tons of essential medicines to Kabul. The External Affairs Ministry said that it reaffirms the country's enduring commitment to providing humanitarian assistance for the well-being of the people of Afghanistan. In cricket, India was 70-1 in 8.1 overs against Afghanistan on the second one-day international of the three-match series in Lucknow. Earlier, Afghanistan won the toss and elected to field first. Shubman Gill-led men in blue are currently leading the series 1-0 and will aim to clinch the series in today's clash. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% up in the afternoon session today. The Sensex rose 225 points to 77,033, while the Nifty advanced 66 points to 24,056 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. G7 leaders adopt declarations on global stability, security cooperation and efforts to counter transnational organized crime. Prime Minister Narendra Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avignon, France, to reach Paris this evening as part of his visit to France. Defence Minister Rajnath Singh says India's sovereignty non-negotiable, cites surgical strikes, Balakot and Operation Sindoor as decisive actions against terrorism. India's defence production soars to record 1.78 lakh crore rupees in financial year 2025-26. Surges 110% since 2020-21. Security forces intensify enforcement and counter-insurgency operations across Manipur. 3 militants arrested, 26 illegal bunkers destroyed. And in men's cricket, second ODI of three-match series between India and Afghanistan underway in Lucknow. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा, 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के

0: के वॉशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
1: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओज के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी

0: खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
1: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
2: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी न हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
4: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
5: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का

0: करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर 78.66 डॉलर हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। समय है उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। इसमें आज की पहली प्रस्तुति में आइए सुनते हैं पंडित निखिल बनर्जी का धुन मांड में सितार वादन।

अभी आप सुन रहे थे पंडित निखिल बनर्जी का धुन मांड में सितार वादन। कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति में आइए सुनते हैं उस्ताद अली अहमद हुसैन का पूर्वी धुन में शहनाई वादन।

अभी आपने सुना उस्ताद अली अहमद हुसैन का पूर्वी धुन में शहनाई वादन। इसी के साथ कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत अब संपन्न होता है।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना फिल्म नागिन से लता मंगेशकर की आवाज में। हेमंत कुमार की धुन पर बोल थे राजेंद्र कृष्ण के। अगला गीत है आशा भोसले की आवाज में फिल्म साहिब बीवी और गुलाम से। शकील बदायूनी के बोल है हेमंत कुमार की धुन।

लता मंगेशकर को आपने सुना फिल्म अनुपमा में। कैफी आजमी की शब्द रचना थी, हेमंत कुमार की संगीत रचना। इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब संपन्न होता है।

अलका याग्निक और अभिजीत के युगल स्वरों में ये गीत था फिल्म हमेशा से। देव कोहली के शब्दों को संगीत में ढाला था अनु मलिक ने। अगला गीत है फिल्म जुल्मी से आशा भोसले और कुमार सानू की आवाजों में। गुलशन बावरा के बोल है दिलीप सेन समीर सेन की धुन।

कुमार सानू और सुरेश वाडकर के युगल स्वरों में ये गीत था फिल्म बेताबी से। विशाल की धुन पर बोल थे बशीर बद्र के। अगला गीत है फिल्म दीवानगी से कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम की युगल स्वरों में। सलीम बिजनौरी की शब्द रचना है, इस्माइल दरबार की संगीत रचना।

कविता कृष्णमूर्ति को आपने सुना फिल्म कोयला में। इंदीवर की रचना को संगीत से सवारा था राजेश रोशन ने। इसी के साथ

कार्यक्रम गीत गुंजन अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। सायकालीन सभा के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने को हैं। अब हिंदी में समाचार होंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती देने संबंधी तंत्रों के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की जरूरत पर बल दिया। सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने पर केंद्रित इस सत्र में उन्होंने अफ्रीका, लातिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 भारतीय प्रतिभाओं और विकासशील तथा अल्प विकसित देशों को एक साथ लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसमें G7 सदस्य देश, सहभागी देश, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्ल्यू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो प्रांत।
0: इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत और फ्रांस ने पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एनेली हेनाम्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक प्रभावशाली वृद्धि है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना सिग्नलिंग अवसंरचना के आधुनिकीकरण और रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले विद्यार्थियों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया।
2: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 46 ओवर में 6 विकेट पर 380 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Prime Minister Narendra Modi today addressed a crucial working session themed Promoting Balanced, Inclusive and Sustainable Economic Growth for the Benefit of All at the ongoing G7 summit in Evian, France. In his address, the Prime Minister underscored the need for international financial institutions to develop mechanisms that impart economic resilience to developing countries. He also proposed connectivity projects linking Africa, Latin America and the Pacific Island countries. He also suggested the creation of international mobilization partnership for accelerating connectivity and trade impact, in which G7's capital, India's talent and Global South's ownership could be combined. During the session, Mr. Modi also highlighted that tangible growth leads to inclusion and well-being of the people and spoke about India's growth story underpinned by Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. The high-level session was attended by G7 member nations, partner countries and key representatives from the International Monetary Fund and the OECD. However, all eyes are firmly set on the Prime Minister's highly anticipated bilateral meeting with the United States President Donald Trump, scheduled for this evening. They are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors, while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. More from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
1: Bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump carries immense diplomatic weight. Although both leaders met briefly yesterday during the group photograph and the working session, now all eyes are firmly set on this formal bilateral meeting. Since the two leaders are holding talks after a long time, it is naturally drawing widespread global attention. It is highly expected that the ongoing West Asia crisis will be a major point of discussion during their meeting. This comes at a crucial time as the US and Iran have recently finalized a deal to end their war and reopen the Strait of Hormuz. Besides this, progress on the trade deal between the two nations is also high on the agenda. India is also likely to focus on the vital issue of energy security. Apart from this critical topic,
2: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है. श्रोताओं, ये लेते हैं जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की. शाम 5:30 पर हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवावाणी, जिसमें आज चर्चा होगी मरुस्थलीकरण विषय पर. वार्ता होगी ग्रीन इंडिया मिशन विषय पर. वार्ताकार होंगी नंदिनी गौर. सेगमेंट आइए जाने में जानेंगे जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के विषय में. सेगमेंट जीने की कला में जिए और जीने दें और ताकत वतन की हमसे है. सेगमेंट में जानिएगा उत्कल मणि और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में. हमारे ग्रामीण अंचल के साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण लोक शाम 6:00, जिसमें चर्चा होगी बीज उपचार का महत्व विषय पर. भेंट वार्ता में सुनिएगा मेड़ पर लगने वाले लाभकारी पेड़ों के विषय में. प्रगतिशील किसान सुखेंद्र सिंह से होगी श्री कृष्ण की बातचीत. साथ ही नई किस्मों के बारे में जानिएगा. मौसम और मंडी भाव का हाल जानिएगा और आनंद लीजिएगा लोकगीतों का. हमारी श्रमिक साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम मजदूर मंडल शाम 6:30 पर, जिसमें चर्चा होगी मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व दिवस विषय पर. कहानी होगी सौदा. कहानीकार होंगी ज्योति श्रीवास्तव. अन्य सेगमेंट होंगे आज का प्रश्न, ज्ञान सागर होंगी, सेहत टिप्स और आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का. श्रोताओं, शाम 7:10 पर समय रहेगा कार्यक्रम विविधा का. आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है, इसी पर आधारित होगी हमारी आज की वार्ता. वन क्षेत्र बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्रियान्वित पहले. वार्ताकार होंगे राजवीर सिंह. कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश आप सुनेंगे शाम 7:31 पर. फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता लेंगे रात्रि 8:00 कार्यक्रम एक और अनेक में. इसके अलावा चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर. श्रोताओं, इसके अलावा भी फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं रात्रि 10:00. समय याद रखिएगा. रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है और शास्त्रीय संगीत का आनंद हमारे श्रोता लेंगे रात्रि 10:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे पंडित मणि प्रसाद से ख्याल गायन.

आप प्रस्तुत करेंगे राग कौशिक ध्वनि। श्रोताओं, इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। वक्त हो चुका है कार्यक्रम सुर संध्या का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुर संध्या की पहली भक्ति रचना मरते दम तक फिल्म से महेंद्र कपूर, सुरेश वाडेकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। गीत और संगीत रविन्द्र जैन का।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोताओं, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम सुर संध्या में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं गोपी फिल्म से भक्त रचना महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

रचना आपने सुनी आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजों में। श्रोताओं, इन भक्त रचनाओं के साथ ही कार्यक्रम सुर संध्या यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

नमस्ते, गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में, जहां हाजिर है आपकी रेडियो वाली दोस्त कनिका सिंह। सबसे पहले तो ये बताएं कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। वैसे आजकल इस गर्मी में नरमी का इंतज़ार तो, यानी कि मॉनसून का इंतज़ार तो हम सभी को है। कभी कभी आंधी, शीतल हवा और हल्की बारिश मन को आनंदित कर देती है, तब लगता है चलो थोड़ी तो राहत मिली। लेकिन कभी कभी चिंता भी होती है, पल भर में तेज़ गर्मी तो कभी अचानक बारिश। मौसम का ये बदलता मिजाज अब हमारे लिए नई बात तो नहीं रह गया है। वैसे तो आजकल सभी के मोबाइल फ़ोन पर मौसम से जुड़े अलर्ट मैसेज आ जाते हैं, लेकिन फिर भी एक बेचैनी बनी रहती है। क्योंकि साथियों, बारिश महज सुहाना मौसम नहीं है, बल्कि किसानों के लिए अच्छी फसल की उम्मीद भी है। यूं तो टेक्नोलॉजी की मदद से मौसम से जुड़ी जानकारी हमें तुरंत मिल जाती है, जिसके अनुसार हम अपनी योजना भी बना सकते हैं। आपने देखा होगा या अखबारों में पढ़ा होगा कि किस तरह शहर में बारिश के दौरान जलभराव जैसी समस्याओं से निपटने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि मौसम के पैटर्न में बदलाव आ रहा है। दोस्तों, हम समय समय पर क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन की बात तो करते हैं। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका असर हमारे जीवन के लगभग हर पहलू पर पड़ रहा है। कभी बढ़ती गर्मी, कभी अनियमित बारिश, कभी सूखा तो कभी बाढ़ जैसी स्थिति, ये सब हमें सोचने पर मजबूर तो कर देती है। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी कि NAPCC शुरू की है। दोस्तों, इसका लॉन्च साल 2008 में ही हो चुका था। आप अब सोच रहे होंगे इसका नाम तो कितना बड़ा है ना, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका मकसद बहुत ही सरल है। बदलती जलवायु की चुनौतियों का सामना करते हुए विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना। ज़रा सोचिए, अगर मौसम का मिजाज लगातार बदलता रहा तो सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ेगा? किसानों पर, मजदूरों पर और उन लोगों पर जिनकी आजीविका सीधे प्रकृति पर निर्भर है। इसलिए इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ऐसे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही ये योजना हमें बताती है कि विकास और पर्यावरण दोनों साथ साथ चल सकते हैं। सड़कें बने, उद्योग बढ़े, रोजगार के अवसर बढ़े, लेकिन प्रकृति का संतुलन भी बना रहे। इसी सोच के साथ स्वच्छ ऊर्जा यानी कि तकनीक, नई तकनीक और पर्यावरण अनुकूल उपायों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और दोस्तों, आज तकनीक भी इस दिशा में हमारी बड़ी मददगार बन चुकी है। मौसम की सटीक जानकारी हो, सौर ऊर्जा का उपयोग हो या प्रदूषण कम करने वाली नई तकनीकें, इन सब के माध्यम से हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला केवल सरकार की तो जिम्मेदारी तो नहीं है, बल्कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। हमारे छोटे छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकते हैं। और दोस्तों, प्रकृति की बात हो और पानी का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पानी ही तो है जो खेतों को जीवन देता है और धरती को हरा भरा बनाता है।

अभी आप सुन रहे थे माचिस फिल्म से पानी पानी रे खारे पानी रे। दोस्तों, पानी और ज़मीन का जो रिश्ता है ना, वो है तो बड़ा ही खास। हमारी ज़िंदगी, खेती और प्रकृति, सब कुछ इन दोनों पर ही तो निर्भर है ना। लेकिन जब पानी की कमी बढ़ने लगती है और ज़मीन धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, तो एक बड़ी समस्या पैदा होती है, जिसे हम कहते हैं मरुस्थलीकरण, यानी कि डेसर्टिफिकेशन। अब जब हम मरुस्थलीकरण सुन करके ना, ऐसा लगता है कि जैसे रेगिस्तान के फैलने की बात हो रही है।

0: लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, और ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका सही मतलब है कि हमारी अच्छी और उपजाऊ ज़मीन धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लग रही है। यानी कि जिस खेत में कभी अच्छी फसल होती थी, जहाँ पेड़ पौधे और हरियाली दिखाई देती थी, वहीं ज़मीन धीरे धीरे बंजर होने लगती है। अब सवाल है कि ऐसा होता क्यों है? इसके कई कारण हैं, जैसे कि पेड़ों की कटाई, एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा पशुओं को चराना, खेती के गलत तरीके और खेतों में ज़रूरत से ज़्यादा रसायनों का इस्तेमाल। पेड़ पौधे मिट्टी को संभाल कर रखते हैं, लेकिन जब पेड़ कम हो जाते हैं तो मिट्टी कमज़ोर पड़ने लगती है और बहने लगती है। मौसम में हो रहे बदलाव भी इस समस्या को बढ़ा रहे हैं। कभी लंबे समय तक बारिश नहीं होती है तो कभी अचानक इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि मिट्टी को नुकसान पहुँचता है। तेज़ हवाएं भी ज़मीन की ऊपर वाली उपजाऊ परत को उड़ा ले जाती है। दोस्तों, ज़मीन की हालात खराब होने का असर सिर्फ खेतों तक सीमित ही नहीं रहता, इसका सीधा असर किसानों, फसलों और हमारे खाने पर पड़ता है। अगर ज़मीन अच्छी नहीं रहेगी तो फसल उत्पादन कम हो सकता है, पेड़ पौधे कम होंगे और कई जीव जंतुओं का घर भी प्रभावित होगा। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि लोगों को अपनी ज़मीन से पर्याप्त कमाई ना हो पाने के कारण दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है। इसीलिए मरुस्थलीकरण केवल मिट्टी की समस्या नहीं है, बल्कि ये हमारे पानी, भोजन और आने वाले कल से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। इसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 17 जून यानी कि आज ही के दिन मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, यानी कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। दोस्तों, इस दिन का उद्देश्य है कि ज़मीन और पानी की सुरक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। ये किसी एक देश या जगह की समस्या नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की चुनौती है। साल 2026 यानी कि इस साल का थीम है रेंजलैंड्स रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट रिस्टोर, यानी कि चारगाह पहचाने, सम्मान करें और फिर से बेहतर बनाएं। चारगाह ऐसे खुले क्षेत्र होते हैं जहां घास और दूसरी वनस्पतियां उगती हैं। ये जगह पशुओं के लिए भोजन का बड़ा सहारा होती है, साथ ही ये मिट्टी को बचाने, पानी को संभालने और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती हैं। दोस्तों, धरती को बचाने के लिए हमें बड़े बड़े काम करने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, छोटे छोटे कदम भी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे पेड़ लगाना, पानी बचाना, मिट्टी और प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल करना। क्योंकि जब हमारी धरती स्वस्थ होगी तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। और इसी को साकार करने के लिए एक्टिवली एक मिशन जो काम कर रहा है वो है ग्रीन इंडिया मिशन। चलिए इसके बारे में जानते हैं हमारी आज की गेस्ट नंदिनी गौर से।
1: आज का हमारा विषय केवल पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि मानव जीवन, कृषि, जल संसाधनों और हमारे भविष्य से भी गहराई से संबंधित है। वर्तमान समय में पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, जल संकट, भूमि क्षरण और जैव विविधता में कमी जैसे गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। इन चुनौतियों में दो सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, मरुस्थलीकरण अर्थात भूमि का धीरे धीरे बंजर होना और सूखा अर्थात जल की लगातार कमी। जब उपजाऊ भूमि अपनी उर्वरता खोने लगती है, पेड़ पौधे कम होने लगते हैं, जल स्रोत सूखने लगते हैं, तब इसका प्रभाव केवल पर्यावरण पर ही नहीं बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। यही कारण है इन समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने और उनके समाधान खोजने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया जाता है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के प्राकृतिक संसाधन असीमित नहीं है और यदि हमने उनका संरक्षण नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर पर्यावरणीय संकटों का सामना करना पड़ सकता है। एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है ग्रीन इंडिया मिशन, जो देश में हरित आवरण बढ़ाने, वनों के संरक्षण, भूमि क्षरण को रोकने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जरा ठहरिए और सोचिए कि ग्रीन इंडिया मिशन इतना जरूरी क्यों है? क्यों पर्यावरण को लेकर वैश्विक जगत में भी चिंता

विविधता बनी हुई है। कल्पना कीजिए कि एक समय ऐसा आए जब खेतों में फसलें ना उगें, नदियां और तालाब सूख जाएं, पेड़ पौधे समाप्त होने लगे और चारों ओर केवल बंजर भूमि दिखाई दे। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक वास्तविक खतरा है जिसका सामना आज दुनिया के अनेक देश कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, वनों की अंधाधुंध कटाई, बढ़ती जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण हमारी धरती का एक बड़ा हिस्सा धीरे धीरे अपनी उर्वरता खोता जा रहा है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए यह चिंता का विषय है। हमारी अर्थव्यवस्था, कृषि व्यवस्था और करोड़ों लोगों की आजीविका भूमि एवं जल संसाधनों पर निर्भर है। मरुस्थलीकरण और सूखा केवल भूमि या पानी की समस्या नहीं, बल्कि ये पूरे पर्यावरण और इकोसिस्टम को प्रभावित करती है। मरुस्थलीकरण के कारण भूमि अपनी उत्पादक क्षमता खोने लगती है, उपजाऊ मिट्टी धीरे धीरे बंजर हो जाती है और उसमें पौधे तथा फसलों के उगने की क्षमता कम हो जाती है। मिट्टी के ऊपरी उपजाऊ भाग का क्षरण होने से कृषि उत्पादन घटता है और हरियाली समाप्त होने लगती है। इन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की, जिसे हम ग्रीन इंडिया मिशन के नाम से जानते हैं। ग्रीन इंडिया मिशन भारत सरकार की राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना के अंतर्गत शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में वन क्षेत्र बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना, जैव विविधता को बचाना तथा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करना है। लेकिन ग्रीन इंडिया मिशन केवल पेड़ लगाने का कार्यक्रम नहीं है दोस्तों, यह प्रकृति और मानव जीवन के बीच संतुलन स्थापित करने का व्यापक प्रयास है। इसका लक्ष्य केवल जंगलों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता में सुधार करना, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना और प्राकृतिक संसाधनों का सतत विकास सुनिश्चित करना भी है। हम सभी जानते हैं कि पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, वर्षा चक्र को बनाए रखने में सहायता करते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। पेड़ पौधे धरती के प्राकृतिक एयर कंडीशनर की तरह कार्य करते हैं, वे तापमान को नियंत्रित करते हैं और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पेड़ों की रक्षा करें। आइए बात करते हैं ग्रीन इंडिया मिशन के कुछ प्रमुख उद्देश्यों के बारे में, जैसे देश में वन और वृक्ष आवरण को बढ़ाना, साथ ही क्षतिग्रस्त और अवनत वनों का पुनर्वास करना, जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी का संरक्षण करना, और इतना ही नहीं स्थानीय समुदाय को रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करना भी इसमें शामिल है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना और भूमि क्षरण तथा मरुस्थलीकरण को रोकना, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक वन प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जल संरक्षण योजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है, स्थानीय लोगों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आज जब हम सूखे की बात करते हैं तो यह समझना जरूरी है कि सूखा केवल वर्षा की कमी का परिणाम नहीं है, कई बार मानव गतिविधियां भी सूखे की समस्या को बढ़ा देती हैं। जब पेड़ कम हो जाते हैं तो वर्षा का पानी जमीन में कम समाता है, भूजल स्तर नीचे चला जाता है, नदियां और तालाब धीरे धीरे सूखने लगते हैं, परिणाम स्वरूप पानी की कमी बढ़ जाती है। ग्रीन इंडिया मिशन इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है, क्योंकि वृक्षारोपण और वन संरक्षण जल चक्र को मजबूत बनाते हैं। पेड़ वर्षा जल को धरती में समाने में सहायता करते हैं और भूजल स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रीन इंडिया मिशन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों, जिसका नाम है जन भागीदारी। सरकार अकेले पर्यावरण संरक्षण का कार्य नहीं कर सकती, इसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी आवश्यक है। यदि हर नागरिक पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे तो हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में ही छोटे छोटे कदम उठाकर इस मिशन में योगदान दे सकते हैं, जैसे हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाना और उसकी देखभाल करना, पानी की बर्बादी रोकना, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना, कागज की बचत करना, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना, ऊर्जा की बचत करना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति दूसरों को जागरूक करना। मेरे युवा साथियों, हम सब देश का भविष्य है। पर्यावरण संरक्षण की इस लड़ाई में हमारी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में वृक्षारोपण

0: कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है, पर्यावरण क्लब बनाए जा सकते हैं, जागरूकता रैलियां निकाली जा सकती हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा सकता है। याद रखिए, आज लगाया गया एक छोटा सा पौधा भविष्य में एक विशाल वृक्ष बनकर हजारों लोगों को छाया, स्वच्छ वायु और जीवन प्रदान कर सकता है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, पेड़ है तो जीवन है, हरियाली है तो खुशहाली है, और हरित भारत ही समृद्ध भारत का आधार है।
1: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
2: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
3: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: दोस्तों, ब्रेक पे जाने से पहले हम जुड़े हमारी आज की गेस्ट नंदिनी गौर के साथ, जिन्होंने हमें समझाया कि कैसे हम, यानी कि हम इस देश के युवा, हमारे भारत देश के युवा समृद्ध भारत की नींव रख सकते हैं। दोस्तों, वैसे हमारे इस भागदौड़ भरे जीवन में ना, हम कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें भूल जाते हैं और या फिर नज़रअंदाज कर जाते हैं। अब यूं ही सोचिए, हमारी अपनी पसंद, अपनी सोच को ही हम सबसे सही मान लेते हैं, लेकिन हर इंसान अलग है, उसकी सोच, उसके सपने और उसका जीवन जीने का तरीका भी अलग हो सकता है। इसलिए दोस्तों, ये जो जियो और जीने दो की बात जब हम कहते हैं, इसका मतलब है कि सामने वाले की भावनाओं, विचारों और अधिकारों का सम्मान करना भी उतना ही ज़रूरी है। सोचिए, अगर हर व्यक्ति दूसरे की बात सुनने लगे, मतभेदों को झगड़े की जगह समझदारी से सुलझाने लगे, तो हमारा समाज कितना बेहतर बन सकता है। ये संदेश हमें सहनशीलता, प्रेम और आपसी सम्मान की सीख देता है। ये बताता है कि खुशी तभी पूरी होती है जब हम अपने साथ साथ दूसरों की खुशियों का भी कद्र करें। तो दोस्तों, आप भी आज ये संकल्प ज़रूर लें कि हम अपनी ज़िंदगी खुलकर जिएंगे और दूसरों को भी उनके सपनों के साथ जीने का पूरा अधिकार देंगे। वैसे दोस्तों, आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि कनिका आज का सवाल तो भूल गई है? जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए आज का सवाल है, उत्कल मणि के नाम से किसे जाना जाता है? वेल, ये कौन है, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाएंगे एक गीत।
1: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
4: दोस्तों, हम जो भारत के युवा हैं, डेफिनेटली बड़े ही गौरवशाली हैं, और हमें ही ये हक है कि हम आने वाले कल की नींव रखें अपने साहस के साथ, अपने उत्साह के साथ।

ज़रा सोचिए, अगर किसी इंसान को अपनी पढ़ाई, करियर और निजी ज़िंदगी से ज़्यादा अपने समाज और देश की चिंता हो, तो वह कितना बड़ा ब्रेव व्यक्तित्व होगा। दोस्तों, आपको याद होगा, अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे किया था एक सवाल कि उत्कल मणि के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों, उत्कल मणि यानी कि उड़ीसा का रत्न, इस नाम से जाना जाता है पंडित गोपबंधु दास को। दोस्तों, गोपबंधु दास का जन्म 9 अक्टूबर 1877 को उड़ीसा के पुरी जिले के सुवांडू गांव में हुआ था। बचपन से ही उनमें लोगों की मदद करने और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा था। दोस्तों, हम अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन 100 साल पहले ही गोपबंधु दास ये समझ चुके थे कि शिक्षा ही समाज को बदल सकती है। इसलिए उन्होंने साखी गोपाल में सत्यवादी वन विद्यालय की स्थापना की। खास बात यह थी कि यहाँ बच्चों को खुले माहौल में पढ़ाया जाता था, ताकि वे किताबों के साथ साथ जीवन के सबक भी सीखें। उनके शानदार कामों से प्रभावित होकर मशहूर वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने उन्हें 1909 में उत्कल मणि यानी कि उड़ीसा रत्न की उपाधि दी। दोस्तों, उनके जीवन से यह सच्ची सफलता हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती है। और जब आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास की बात आती है, साहस की बात आती है, कभी हार ना मानने की बात आती है, तो सबसे पहले नाम आता है झांसी की रानी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का। कम उम्र में ही उन्होंने जीवन की कई कठिन चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, हमारे लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि अपने लक्ष्य पर विश्वास रखो, मुश्किल से कभी मत भागो। यही बात हमेशा हमें याद रखनी और आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, उनकी वीरता का ही प्रतीक ये पंक्तियाँ हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और ये नाम, ये पंक्तियाँ हमें हिम्मत, आत्मसम्मान और नेतृत्व की ऐसी मिसाल देती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें प्रेरित करती रहेंगी। दोस्तों, इसी प्रेरणा के साथ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त कनिका सिंह आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।

श्रोताओं, आज के ग्राम्य लोक कार्यक्रम में मैं यशपाल सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको हमारी राम राम। किसान साथियों, मई का महीना चल रहा है यानी गर्मी का मौसम, लेकिन अभी कुछ दिनों से बरसात और आंधी तूफान देखने को मिला है। हालांकि इस बेमौसम बरसात ने इस भीषण गर्मी में थोड़ी राहत तो दी है और खाली पड़े खेतों में भी इस बरसात के पानी का हमें फायदा मिलेगा, लेकिन जायद की फसल को इस बेमौसम बरसात और आंधी तूफान ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। जी हाँ श्रोताओं, खरबूजा, तरबूजा, करेला और मूंग की फसल तो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। वहीं गर्मी का बाजरा जो पका हुआ खेतों में खड़ा है, उसे इस आंधी और बरसात में बहुत नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार यह सब पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है। साथियों, देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज अलग अलग बना हुआ है। जहां पश्चिमी विक्षोभ का असर से उत्तर भारत में बारिश और आंधी तूफान के आसार हैं, वहीं कमजोर मानसून से दक्षिण भारत समेत कुछ राज्यों में गर्मी और लू का असर जारी रहने का अनुमान है। सुपर अल नीनो जैसी गंभीर जलवायु घटना का खतरा हमारे ऊपर अभी भी बना हुआ है। श्रोताओं, इस मौसम में बदलाव का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारी कृषि पर ही पड़ता है। चाहे ओलावृष्टि हो, बेमौसम बरसात हो, आंधी तूफान हो, सूखा हो या बाढ़ के हालात हो, सभी परिस्थितियों में हमारी कृषि प्रभावित होती है, जिससे हम किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए साथियों, सामान्य परिस्थितियों में खेतीबाड़ी इतनी अच्छी हो जाए कि भाई उससे कम लागत में अधिक लाभ हम कमा सकें और बुरे वक्त में अपने आप को हम संभाल सकें, इसके लिए हमें अपनी कृषि में नई तकनीकी, वैज्ञानिक तरीकों और बेहतरीन बीज का प्रयोग करना चाहिए, जिससे अच्छी पैदावार मिले। फसल की शुरुआत बुवाई से होती है, जिसमें बीजोपचार के बाद ही अगर हम खेत में बीजों की बुवाई करते हैं तो हमें बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। क्या है ये बीजोपचार? आइए आज हम इस बीजोपचार के महत्व पर बात करते हैं। बीज उपचार बुवाई से पहले बीजों को रसायन, जैविक पदार्थों या पोषक तत्वों से उपचारित करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह बीजों को शुरुआती कीटों और फफूंद जनित रोगों से बचाती है, जिससे अंकुरण क्षमता बेहतर होती है और फसल की पैदावार बढ़ती है। किसान साथियों, आधुनिक कृषि में बीज उपचार फसल की उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने में बहुत सहायक होती है। जी हाँ किसान भाइयों, चाहे आप एक जैविक किसान हो, कृषि उत्पादक विक्रेता हो या घर पर जैविक तरीके से खेती करने वाले बागवान हो, सबके लिए बीज उपचार फायदेमंद है। बीज उपचार न सिर्फ अंकुरण को बढ़ाता है, बल्कि बीजों को कीट और रोगों से सुरक्षित रखता है। उपचारित बीज से उगने वाली फसल में अतिरिक्त कीटनाशक डालने की जरूरत भी कम होती है। किसान साथियों, बुवाई के लिए इस्तेमाल होने वाले महंगे बीजों को फफूंद और बैक्टीरिया जनित रोगों से सुरक्षा मिलती है इस बीज उपचार से। शुरुआती कीटनाशक छिड़काव की कम जरूरत पड़ती है, बाद में भी कीटनाशक बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि भाई हमारे बीज बीज उपचारण के बाद आते हैं जो बहुत से रोगों से लड़ने में सक्षम होते हैं। फसल में बीज जनित रोगों और कीटों से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। किसान साथियों, बीज उपचार खास तौर पर उन जगहों पर जरूरी है जहां रोगों का दबाव अधिक होता है या फिर बेमौसम बरसात वगैरह होती है, या ये कहें कि भाई मौसम अनिश्चित रहता है। ऑर्गेनिक खेती में भी यह बीजों का प्राकृतिक पदार्थों से सुरक्षा प्रदान करता है। साथियों, बीज उपचार रासायनिक, भौतिक और जैविक तरीकों से किया जा सकता है। रासायनिक बीज उपचार में बीजों पर फफूंदीनाशी और कीटनाशी या फिर दोनों का लेप किया जाता है, ताकि बीमारियों और कीटों से सुरक्षा हो सके हमारे बीजों की। भौतिक बीज उपचार में गर्म पानी, धूप में सुखाने या अन्य तापीय तरीकों से बीज पर मौजूदा रोगाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा जैविक बीज उपचार में लाभकारी सूक्ष्म जीव जैसे ट्राइकोडर्मा, राइजोबियम आदि के अलावा नीम का तेल, लहसुन का अर्क या बीजामृत जैसे प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। किसान भाइयों, आज के जलवायु परिवर्तन और कीट रोगों से प्रभावित वातावरण में बीज उपचार विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुकी है। यह

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 6 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं ग्रामीण अंचल के साथियों का कार्यक्रम ग्राम्य लोक।

0: महंगे हाइब्रिड बीजों के लिए बहुत लाभ का काम करता है, क्योंकि महंगे बीज अगर बीजोपचार से नहीं करेंगे हम बुआई, तो भाई वो खराब हो सकते हैं, इसीलिए उनका बीजोपचार करना चाहिए जिससे उसका हमें लाभ मिले। यह बीजोपचार एक छोटा कदम है, लेकिन इसका असर पूरी फसल पर पड़ता है। यह बीजों को सुरक्षित तो रखता ही है, साथ में उत्पादन लागत घटाता है और बेहतर उपज की गारंटी देता है। इसीलिए खेतों में बुवाई से पहले बीजोपचार करें और बेहतर फसल लें। किसान साथियों, आपके साथ हम अपने कार्यक्रम को यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन आइए एक छोटा सा विराम लेते हैं और मिलते हैं इस अंतराल के बाद।
1: आपकी गिनती देश किसान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: किसान साथियों, आज के इस आधुनिक युग में एक अच्छी फसल के लिए खाद, बीज और सिंचाई के साथ साथ कृषि यंत्र, बेहतरीन कीटनाशक और नई कृषि तकनीकी का बहुत मायने रखती हैं। अभी कुछ समय में कृषि क्षेत्र में नई खोज हुई है और तकनीकी क्रांति आई है, जिससे खेती की लागत और मेहनत बहुत कम हुई है, जैसे ड्रोन का उपयोग। अब कीटनाशकों और उर्वरकों के सटीक छिड़काव के लिए किया जाने लगा है, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होती है। ऐसे ही ऑटोनोमस ट्रैक्टर, यह AI आधारित ट्रैक्टर GPS का प्रयोग करके खेत में जुताई, बुवाई और कटाई का काम कर सकते हैं। कृषि रोबोट का उपयोग हम फल तोड़ने, खरपतवार हटाने और फसलों की निगरानी के लिए करते हैं। इसके अलावा उन्नत कृषि यंत्रों की खोज ने समय, मेहनत और पैसे की बहुत बचत की है। इसमें स्ट्रोबेलर, जो पराली को इकट्ठा करने में मदद करता है, जीरो टिल ड्रिल, यह मिट्टी में नमी और पोषक तत्वों को बनाए रखकर बिना जुताई के बीज बोने का काम करता है। सुपर सीडर, यह एक ही समय में अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर बुवाई करने वाला उन्नत यंत्र है, जो रोटावेटर और सीडर का मिलाकर के बनाया जाता है। किसान साथियों, इन नई तकनीकी और कृषि यंत्रों की खोजों के अलावा हाल के वर्षों में कीटनाशकों की खोज हुई है, जिनका उद्देश्य पर्यावरणीय अनुकूल और जहरीले और खेत की अधिक लाभ पहुंचाना रहता है। इसमें नैनो कीटनाशक को MIT इंजीनियरों द्वारा ऐसे विकसित किया है कि भाई जिससे कीटनाशक पौधों की पत्तियों पर मजबूती से चिपक जाते हैं। ये नैनो कीटनाशक न केवल कीटों से बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि बारिश से घुलते भी नहीं है, जिससे किसानों को कम मात्रा में प्रयोग करके भी बेहतरीन परिणाम मिल जाते हैं। इसके अलावा माइक्रोबियल कीटनाशक, ये माइक्रोबियल कीटनाशक बनते हैं बैक्टीरिया, फंगस और वायरस से। इनको ऐसे विकसित किया जाता है कि ये केवल लक्षित कीटों पर असर करते हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। किसान साथियों, कीटनाशकों की नई खोज में नीम और जैविक कीटनाशक में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नीम और लहसुन के अर्क को अधिक प्रभावी बनाकर कीटों को सुखाकर मार देते हैं। किसान साथियों, कृषि की इन खोजों का लाभ लें और कृषि से बहुत सारा लाभ कमाएं। आपके साथ हम अपने कार्यक्रम को यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन आइए एक और छोटा सा विराम ले लेते हैं और मिलते हैं इस अंतराल के बाद।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: श्रोताओं, आज 17 जून है। आज के दिन को हम विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे की रोकथाम दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों, इस महत्वपूर्ण दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1994 में की गई थी। पहली बार इसे आधिकारिक तौर पर 17 जून 1995 को मनाया गया। आज के इस दिवस का मुख्य उद्देश्य बंजर होती भूमि, मरुस्थलीकरण और सूखे जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्या के बारे में जागरूक

नियुक्त करना है और इसके समाधान के लिए प्रयास करना है। श्रोताओं, जब उपजाऊ और हरी भरी भूमि धीरे धीरे अपनी नमी और उत्पादकता खोकर बंजर या रेगिस्तान में बदलने लगती है तो इसे ही मरुस्थलीकरण कहा जाता है। वनों की कटाई, अंधाधुंध खेती, जल का अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन इसके मुख्य कारण हैं। जी हाँ श्रोताओं, यह दिवस हमें याद दिलाता है कि भूमि के इन नुकसानों को रोककर जल और पर्यावरण को संरक्षित करके ही हम खाद्य सुरक्षा और जलवायु संतुलन बनाए रख सकते हैं। साथियों, पृथ्वी को बंजर होने से बचाने के लिए आम जीवन में ठोस कदम उठाने होंगे, जैसे कि वृक्षारोपण, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जल संरक्षण, वर्षा जल को संचित करके खेती में ड्रिप सिंचाई जैसे तरीकों का उपयोग करें, जैविक खाद का उपयोग करके फसल चक्र को अपनाएं जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और भाई कम पानी से हम सिंचाई कर सकें। कुल मिलाकर हमें अपनी धरती को रेगिस्तान में बदलने से बचाना है तो ऐसे ही उपाय अपनाकर जागरूक बनना होगा, तभी आज इस दिवस को साकार हम कर सकेंगे। श्रोताओं, हमारा कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले आपका संगीत में मनोरंजन करवाते हैं और इस भीषण गर्मी में महावीर सिंह चाहर द्वारा गाए इस लोकगीत का आनंद लेते हैं।

किसान साथियों, कृषि में खेत की संरक्षण और खेती की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। बरसात के तेज बहाव से पानी का जो कटाव होता है उसे बचाने के लिए हमें मेड़ों को सुरक्षित करना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे में

0: मैं अपनी मेड़ों को सुरक्षित रखना होगा। आज हमारी भेंट वार्ता में प्रगतिशील किसान सुखेंद्र से मेड़ पर लगने वाले लाभकारी पेड़ों पर श्री कृष्ण की बातचीत आपको सुनवाते हैं और समझते हैं कि मेड़ों पर कैसे हम सुरक्षा करें।
1: किसान भाइयों, राम राम। हम लोग अपने खेती बाड़ी का पूरा ध्यान रखते हैं, उसमें एक और बड़ी बात आती है कि जो हमारे खेतों की मेड़ है, जो हमारी मेड़बंदी है, खेतों की सीमा है, उस पर कौन कौन से पेड़ लगाए जाएं। एक बीच में प्रचलन चला कि सफेदा और यूकिलिप्टस के पेड़ लगाए गए, लेकिन ये देखने में आया कि जब यूकिलिप्टस और सफेदा पानी को बहुत सोखते हैं, और बहुत से क्या क्या विकल्प हैं, कौन कौन से लगाए जाने चाहिए, क्या उनसे फायदा है, नए नए कौन सी वैरायटी आ रही है, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ एटा से पधारे हैं प्रगतिशील किसान सुखेंद्र सिंह जी। सुखेंद्र जी, आपका स्वागत है। राम राम।
2: नमस्कार सर।
1: ये बताएं सुखेंद्र जी, जो हमारे आप स्वयं एक प्रगतिशील किसान हैं, जो हमारे खेतों की मेड़ होती है, मेड़ों पर कौन कौन से पेड़ लगाए जाने चाहिए, उनके क्या क्या फायदे हैं?
2: मेड़ों पर सबसे पहले तो हम सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि अभी तक जो हमारे मन में एक गलत ख्याल था कि जैसे कि हम अपनी मेड़ पे कोई अगर वृक्ष लगाते हैं
1: जी,
2: तो सबसे पहले तो पड़ोसी उसका विरोध करता, कहता कि इसकी छाया से हमारी फसल को नुकसान होगा। तो ये थोड़ा सा भ्रम है, क्योंकि कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो वाकई में नुकसान देती हैं, लेकिन सभी प्रजातियां नुकसान नहीं देती हैं अगर हम सूझबूझ के साथ उसको लगाएंगे। तो जैसे कि सबसे अच्छा साधन है मोरिंगा, जिसको हम देसी भाषा में सहजन बोलते हैं
1: जी।
2: तो क्योंकि सहजन से ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को समझने में आएगा, तो सहजन एक ऐसा स्रोत है कि इसको जो जैविक खेती के बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हैं वो भी इसको रिसर्च कर चुके हैं कि अगर हम एक एकड़ खेत पर ज़्यादा न लगाएं तो 8 पौधे लगाएं।
1: 8 पौधे तो बहुत,
2: जैसे कि हमने चारों कोनों पे एक एक ले लिया और बीच में ले लिए दो दो
1: जी,
2: तो हमारे चारों जो है सेट हो गए और जो चार मेड़ हैं उनके बीच में एक एक लग गया। उससे होता क्या है कि जब ये पूरी मेड़ की घेराबंदी हो गई उससे सहजन से, तो सबसे पहले तो ये नाइट्रोजन का बहुत बड़ा स्रोत है।
1: नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है।
2: हाँ, इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है
1: जी,
2: जो कि हमारी फसलों को जो हम यूरिया के माध्यम से देते हैं, पौधों की पूर्ति करते हैं, उसमें लगभग हमारी 70% जो हम ऊपर से दानेदार यूरिया डालते हैं उसकी जरूरत ही नहीं रहती है। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल किए हुए रिजल्ट हैं।
1: मतलब ये बहुत फायदे का सौदा है कि एक तो हमें जो रासायनिक खाद यूरिया का प्रयोग करते हैं उसमें हमें कटौती करनी पड़ेगी, जो लागत कम हो गई,
2: लागत हमारी 70% कम हो जाती है उसमें जो फर्टिलाइजर बेस है। दूसरा हमें क्या है कि इस पौधे से अर्निंग भी होती है
1: जी। वो कैसे?
2: वो इस तरीके से होती है कि जो सहजन है इसके, अगर आप मीठा सहजन लगाना है, अगर अर्निंग का स्रोत बढ़ाना है तो मीठा सहजन लगाइए, तो इसकी पत्तियां जो होती हैं वो हम सलाद में यूज कर सकते हैं, इसको जैसे कि हम रोटी बनाते हैं उसमें यूज कर सकते हैं, इसकी चटनी के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर कोई भाई इस रूप में न खाना चाहे तो इसकी पत्तियों को छाया में सुखा लें
1: जी,
2: और उसका पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद डेली हम फ्रेश होने के बाद सुबह खाली पेट इसका अगर आधा चम्मच ग्लास में घोल के इसको पी लेते हैं तो हमारा क्या है कि इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, जिससे इसमें आयरन का बहुत बड़ा स्रोत है, ये कैंसर से भी लड़ने में सक्षम है
1: जी,
2: इतना अच्छा इसका वो है। ये 300 तरीके के इसमें मिनरल पाए जाते हैं। दूसरा इसका जो बड़ा रीजन है कि इसकी जो फलियां आती हैं, अभी हमारे क्षेत्र में क्या है कि इसका फलियों की जागरूकता ज्यादा नहीं है, इसलिए नहीं खाते। हम लोग साउथ में गए तो वहां एक फली की कीमत 30 से 35 रुपए की थी।
1: एक फली कीमत 30 से 35,
2: एक फली वहां 30 से 35।
1: अगर कोई एक पेड़ में तो बहुत सारी हजारों फलियां निकलती
2: हैं, एक पेड़ से कम नहीं तो 25 से 30 किलो निकलती हैं। ये बिल्कुल मिनिमम औसत है
1: जी,
2: मैक्सिमम तो ज्यादा है क्योंकि पौधे की ग्रोथ के अनुसार है। अभी हम लोग जैसे कि हैदराबाद गए थे तो वहां 30 से 35 रुपए मार्केट में घूमे तो एक फली दे रही थी। अच्छा तरीका है जैसे कि हम इसका अचार बना लेते हैं फली
1: जी,
2: अचार की मार्केट में बहुत तगड़ी डिमांड है क्योंकि इसके जो पोषक तत्व हैं वो लगभग शहरी क्षेत्र के लोगों को पता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इतनी जागरूकता नहीं है
1: जी।
2: तो इसलिए इसका हम अचार रख लेते हैं, इसके बहुत सारी और भी प्रोडक्ट बनते हैं मेडिसिन में जो ये कंपनियां तैयार करती
1: हैं। अच्छा, इसके जो सहजन का पेड़ है उसके और चीजों की भी उपयोगिता है?
2: नहीं, और चीजों की सारी उपयोगिता ये है,
1: जैसे छाल है, लकड़ी है।
2: हाँ, इनके भी हैं, जैसे कि किसी के जख्म लग जाता है तो इसकी छाल काम आती है
1: जी।
2: अभी हमें कल मेले में ही एक लोग बता रहे थे, कह रहे हमने अपनी मम्मी को जो सिंगल पपड़ी ऊपर की होती है उसको निकाल के सेकेंडरी जो परत होती है
1: जी,
2: तो उनके पेट में गैस बनती थी, दर्द होता रहता था, तो उसकी छाल को उबाल के उन्होंने यूज किया तो उनके पेट का दर्द बंद हो गया उससे।
1: वाह,
2: तो ये इसके मेडिसिनल वैल्यू है
1: जी। अच्छा, सहजन लगाने के साथ साथ क्या जैसे छाया वाली बात हमारे किसान भाई सोचते हैं छाया पड़ेगी तो वहां पर फसल में नुकसान होगा, ऐसा कुछ होता है क्या?
2: नहीं सर, सहजन से ऐसा कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि जो सहजन के आसपास के पौधे हमारी जो फसल होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसमें छाया पड़ रही उसमें भी नाइट्रोजन बरस रही।

0: ये ऊपर से
1: जी
0: और जमीन सॉइल से भी उसकी जड़ों के द्वारा भी इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया काम कर रहा है। और मैंने आपसे जैसे कहा कि एक एकड़ के लिए 8 पौधे पर्याप्त हैं, 70% आपकी नाइट्रोजन बचती है
1: जी।
0: तो इसका तात्पर्य यह है कि पूरे खेत में आपके जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो सेट हो गया उसके अंदर, और सेट हो गया तो उसमें फसल कमजोर होने की तो कोई ऐसी
1: प्रश्न
0: ही नहीं उठता।
1: अच्छा, कुछ हमारे किसान भाई और दूसरे पौधे लगाते हैं, कोई नीम लगाता है, कोई शीशम लगाता है या कोई और पौधे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: इसमें सर ये पुराने कल्चर में तो ठीक थी, क्योंकि कारण ये था ये बहुवर्षीय पौधे हैं
1: जी,
0: इसमें हमें काफ़ी वर्षें लगती हैं। दूसरा, इसमें छाया के अलावा मतलब फसल में कोई लाभ नहीं दिखता, बल्कि इनकी छाया से थोड़ा नुकसान भी होता है, क्योंकि इन पत्ते वगैरह गिरते हैं तो वो थोड़ा नुकसान करते हैं, क्योंकि नीब है, एंटीबायोटिक होता है, तो ज़्यादा मात्रा में अगर पत्ते गिरेंगे तो वो भी वहाँ फसल को नुकसान करते। इसीलिए किसान के दिमाग में ही बैठ गया है कि पौधे लगाने से फसल कमजोर हो जाती है, लेकिन सभी पौधों से ऐसा नहीं होता है। दूसरा, इससे केवल लकड़ का ही साधन होता है, लकड़ी के अलावा इसमें कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है।
1: जी
0: इसकी अपेक्षा अगर जैसे महोगनी का एक बहुत है बाउंड्री पे,
1: जी
0: आज की डेट में जो अफ्रीकन महोगनी आती है तो उसकी उम्र लकड़ी की 130 साल है, तो 50 साल तो पानी के जहाज में काम करती है, और उसके बाद फिर हमारे जो इंपोर्टेड फर्नीचर बनते हैं जैसे कि ये संगीत के जितने भी
1: जी हाँ,
0: बनते हैं आइटम, इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, इसमें गिटार है, हारमोनियम है, इन सब में ज़्यादातर उसी महोगनी की लकड़ी ही यूज होती है,
1: जी
0: क्योंकि मजबूती ज़्यादा
1: बहुत
0: होती है
1: मजबूत
0: और वेट
1: होती
0: उसका होता है कम,
1: जी
0: हल्की होती है, तो इसीलिए उनमें काम आती है। दूसरा, महोगनी का 5 साल में एक फल भी आता है,
1: जी
0: महोगनी के ऊपर 5 साल का जब पौधा हो जाएगा तो उसमें फल भी आता है। फल के जो बीज हैं वो शुगर और कैंसर रोधी है,
1: उसमें फायदा होता है।
0: हाँ, उसके बीज का पाउडर बना के, और लगभग अभी आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो 500 से 600 रुपए किलो बीज की डिमांड है,
1: जी
0: बीज के ऊपर का जो खोला है उसकी डिमांड है, क्योंकि जो मॉस्किटो कॉइल जो बनती है
1: जी
0: वो महोगनी के पत्ते और महोगनी की छाल, जितने भी हरे रंग की मॉस्किटो कॉइल बनाएगी वो ज़्यादातर महोगनी का ही अर्क उसमें डालते हैं पत्तों का,
1: जी
0: और जो वैसी लिक्विड बनाते हैं तो उसमें छाल का उपयोग करते हैं।
1: जी
0: तो इसमें क्या होता है कि जो 200 मीटर के अराउंड में जितनी भी एरिया उसकी छाया कवर कर रही है, जहां तक उसकी हवा का संचार हो रहा है,
1: जी
0: वहां तक किसी भी फसल में कोई भी कीट नहीं लगेगा,
1: बहुत सुंदर पौधा है।
0: इतना सुंदर है।
1: जी
0: दूसरा, इसके जो लकड़ी की कीमत है,
1: जी
0: जो इसके लकड़ी की कीमत है वो लगभग अभी अगर ऑनलाइन करोगे तो 2500-2600 रुपए घन फीट है
1: लकड़ी की कीमत,
0: लकड़ी की कीमत
1: जी
0: और ये लगभग 12 से 13 साल में पूरा कंप्लीट प्लांट हो जाता है कटने के कगार पर, जो हम इसको हार्वेस्ट करा सकते हैं।
1: जी
0: लेकिन कुछ किसान भाई क्या करते हैं, इसको हार्वेस्ट न करा के, क्योंकि अब उनको बीज से आय ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि एक सीजन में लगभग 30-40 किलो बीज उसमें आराम से आ जाता है, तो बीज से आय ज़्यादा होने लगी है, तो इस लकड़ी का ये महत्व है कि जितना पुराना पौधा उतनी ही उसकी कीमत ज़्यादा
1: ज़्यादा।
0: तो बहुत सारी जगह तो 25-25 साल हो गए लोगों ने उसको हार्वेस्ट ही नहीं कराया, क्योंकि बीज से साधन हो रहा है और इसकी छाया से भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसके पत्ते, इसकी छाल सब यूज में आ रहे हैं,
1: जी
0: तो इससे भी एक बहुत बड़ा किसान को आय का साधन हो सकता है।
1: अच्छा, जैसे हम लोग मोरिंगा की बात कर रहे थे, क्या उसकी लकड़ी का भी कोई उपयोग है?
0: हाँ, लकड़ी का भी है सर यूज,
1: वो कैसे उपयोग करते हैं, क्या
0: इसकी
1: करते?
0: लकड़ी का सर औषधि गुण है, इसकी
1: जी
0: अर्क निकालते हैं ये जो मेडिसिन कंपनियां वाले होते हैं,
1: जी
0: इनमें ऑयल पाया जाता थोड़ा,
1: जी
0: तो ऑयल को भी इसमें निकाल के मेडिसिन में यूज करते हैं।
1: तो किसान भाई, देखा आपने कि किस तरह से जो नई प्रजातियां हैं, नए अनुसंधान हो रहे हैं, औषधि गुण भी हैं और उसकी पत्ती हो, चाहे फली हो, चाहे लकड़ी हो, छाल हो, हर चीज़ का उपयोग है। तो आप अपने खेतों के आसपास उनकी मेड़ पर मेड़बंदी करें और इस तरह के पेड़ लगाएं, जिससे कि आपकी फसल भी अच्छी होगी और एक अतिरिक्त आमदनी का स्रोत भी ये पेड़ बन जाएंगे। तो आप आए हमारे किसान भाई के लिए, इतनी बढ़िया बातें बताई आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: श्रोताओं, आपने हमारी भेंट वार्ता में मेड़ पर लगने वाले लाभकारी पेड़ों पर प्रगतिशील किसान सुखेंद्र सिंह से श्री कृष्ण की बातचीत सुनी। और आइए अब हम आपको बताते हैं आज और कल के मौसम के बारे में। आज का अधिकतम तापमान रहा 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 31 डिग्री सेल्सियस। आगामी 24 घंटों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। श्रोताओ, अब हमारे कार्यक्रम में वक्त है आपके मनोरंजन का, तो आइए आपका संगीत में मनोरंजन करवाते हैं और आनंद लेते हैं इस मधुर लोकगीत का।

अभी हमारे ग्रामीण अंचल के साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीलोक। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्रमिक साथियों का दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल।

कार्यक्रम मजदूर मंडल सुनने वाले हमारे सभी श्रमिक भाई बहनों को आपके रेडियो साथी रिंकू चौरसिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है साथियों आप सभी का आपके अपने खास और पसंदीदा कार्यक्रम मजदूर मंडल में।

तो साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आनंद के साथ अपना जीवन जी रहे होंगे। साथियों, ये आनंद, ये खुशी तब और भी बढ़ जाती है जब हमारे आसपास का माहौल स्वच्छ, साफ सुथरा और हरियाली भरा होता है ना साथियों? और वो साथियों इसलिए भी क्योंकि हम सभी को पेड़ पौधे, स्वच्छ वातावरण और हरा भरा माहौल सबको पसंद होता है। और जैसा कि हम जानते हैं साथियों कि पेड़ पौधे, नदियाँ, तालाब और हरियाली न केवल प्रकृति की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि हमारे जीवन को भी स्वच्छ, स्वस्थ और सुखद बनाते हैं। लेकिन साथियों, सोच के देखिए ना कि अगर ये सभी चीज़ें धीरे धीरे कम हो या होने लगें तो फिर क्या होगा? साथियों, वही होगा जो आज के समय में होने जा रहा है। जी हाँ साथियों, आज के समय में प्रकृति पर बढ़ते दबाव के कारण हरियाली की कमी, पर्यावरणीय समस्या और मरुस्थलीकरण जैसी समस्या बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उनकी भरपाई की क्षमता से अधिक होता है तो ऐसे में भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होने लगते हैं और मरुस्थलीकरण यानी कि सूखे जैसी समस्या सामने आने लगती है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं मरुस्थलीकरण की, क्योंकि आज है मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व दिवस, जो कि आज ही के दिन यानी कि 17 जून को विश्व भर में मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1994 में प्रस्ताव पारित करके इस दिवस को मनाने की घोषणा की। साथियों, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य भूमि के क्षरण, मरुस्थलीकरण और सूखे के खतरों के प्रति वैश्विक स्तर पर लोगों में जागरूकता बढ़ाना है और इसके समाधान के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना है, जिससे भूमि को मरुस्थलीकरण होने से बचाया जा सके। लेकिन साथियों, उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर मरुस्थलीकरण है क्या और ये किस प्रकार होता है। तो साथियों, आपको बता दें कि मरुस्थलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राकृतिक या मानवीय कारणों से उपजाऊ और हरी भूरी भूमि धीरे धीरे बंजर और शुष्क रेगिस्तान में बदल जाती है। या यूँ कहें कि जब भूमि की गुणवत्ता घट जाती है और पेड़ पौधे नष्ट होने लगते हैं तब खेती योग्य जमीन कम होने लगती है और तब मरुस्थलीकरण जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। साथियों, मरुस्थलीकरण और सूखे होने के कई मुख्य कारण हैं जिनमें आज की मानव गतिविधियां इस समस्या को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। इसी के साथ वनों की अंधाधुंध कटाई, जल की अत्यधिक बर्बादी, अनियोजित शहरीकरण, बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिक प्रदूषण एवं प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, ये सभी मरुस्थलीकरण को बढ़ाने का काम कर रही हैं, जो कि पर्यावरण के साथ साथ मानव जीवन पर भी अपना गहरा असर छोड़ रही हैं। साथियों, आज के समय में इस तरह से बढ़ता मरुस्थलीकरण और जल संकट विश्व के सामने चुनौती बनकर सामने आ रहा है, जिसमें बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा और जलवायु परिवर्तन इस समस्या को और भी गंभीर बना रहे हैं, जो कि चिंता का विषय भी है, जिसके बारे में हम सभी को मिलकर सोचना होगा और समय रहते प्रभावी कदम उठाने होंगे, तभी हम आने वाली पीढ़ियों को जल, भोजन और स्वच्छ वातावरण, पर्यावरण और एक हरा भरा माहौल दे सकेंगे। इसके लिए साथियों, हम सभी को अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, वृक्षारोपण करना होगा और मिट्टी को सुरक्षित रखने के उपाय सुझाने होंगे। इसी के साथ साथियों, जल की बर्बादी को रोकते हुए उसके संरक्षण के बारे में सोचते हुए टपक सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना होगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण कर एवं प्रदूषण को कम करते हुए लोगों को मरुस्थलीकरण और सूखे के खतरों के बारे में जागरूक करना होगा, तभी हम इस तरह से बढ़ते मरुस्थलीकरण और सूखे के खतरों को कम कर सकेंगे। और साथियों, अब वक्त है आपसे आज का प्रश्न पूछने का। तो साथियों, आज का प्रश्न है कि तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। साथियों, इस प्रश्न का जवाब हम आपको कार्यक्रम के मध्य में देंगे। तब तक आपको सुनवाते हैं ये मधुर गीत।

0: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
1: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
2: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: साथियों, आज के ज्ञान सागर में हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी महान वीरांगना, स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत और साहस की प्रतिमूर्ति की, जिनका नाम भारतीय इतिहास में वीरता, त्याग और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में सदैव अमर रहा है और रहेगा। साथ ही हम बात कर रहे हैं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की, जिनकी कल के दिन यानी कि 18 जून को हम सभी पुण्यतिथि भी मनाएंगे। साथियों, रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुनते ही हमारे मन में साहस, पराक्रम, आत्मसम्मान और देशभक्ति की भावना जाग उठती है। वाराणसी में जन्मी रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही निर्भयी और साहसी थी और उनकी वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में देखने को मिला, जो कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। उस समय अंग्रेज भारत के विभिन्न राज्यों पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास कर रहे थे। साथ ही झांसी के महाराजा गंगाधर राव के निधन के बाद अंग्रेजों ने झांसी को भी अपने कब्जे में लेने की घोषणा बनाई। लेकिन साथियों, चूंकि रानी लक्ष्मीबाई महाराजा गंगाधर

0: आपकी पत्नी थी और झांसी की रानी थी, इसलिए वे अपने राज्य के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। और तब उन्होंने इस अन्याय के सामने झुकने से मना कर दिया और उन्होंने दृढ़ता के साथ घोषणा कर दी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह वाक्य उनके आत्मसम्मान और देश प्रेम का प्रतीक बन गया और तब उन्होंने अपनी सेना संगठित की। जब अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण किया तब रानी लक्ष्मीबाई ने किसी साधारण शासक की तरह महल में बैठकर केवल आदेश नहीं दिए बल्कि स्वयं रणभूमि में उतरकर सैनिकों का उत्साह बढ़ाया। इसी के साथ उनकी वीरता का एक और अद्भुत उदाहरण तब सामने आया जब युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों के बीच से निकल गई। तब वहाँ चारों ओर शत्रुओं की सेना थी, लेकिन रानी ने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल से अपना रास्ता बनाया। साथियों, यह घटना आज भी उनकी वीरता की मिसाल मानी जाती है। साथियों, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता केवल शारीरिक शक्ति तक सीमित नहीं थी, उनकी मानसिक दृढ़ता भी उतनी ही मजबूत थी। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोया और अपने राज्य, अपने सम्मान और अपने देश की रक्षा के लिए वे अंतिम सांस तक लड़ती रहीं। 18 जून 1858 को ग्वालियर के निकट युद्ध करते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन साथ ही उनकी मृत्यु पराजय नहीं थी बल्कि उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया और उन्होंने यह कर भी दिखाया कि मातृभूमि के लिए दिया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। और साथियों, अब समय है एक विराम का, जल्द हाजिर होते हैं।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: साथियों, इस विराम के बाद अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक कहानी जिसका नाम है सौदा और जिसकी कहानीकार हैं ज्योति श्रीवास्तव।
2: सावन का महीना लगभग 15 दिन बीतने को है और बारिश का अभी नामो निशान नहीं है। वह तो भला हो आषाढ़ के बादलों का, जिसने छुटपुट बूंदें बरसाई थी, जिससे प्रकृति अपने सावन के रूप में हरी भरी तो दिख रही है, पर नभ में सूर्यदेव ऐसे चमक रहे हैं जैसे सावन को जेठ की दोपहरी परोस रहे हों। जिसे देखो वही गर्मी से परेशान है। अलकनंदा भी अपने कामकाज से फुर्सत होते ही थोड़ी देर के लिए घर के सामने ही अपने प्यारे से चौसा आम के पेड़ के नीचे चारपाई डालकर थोड़ा आराम करने लगती है। वह अपने आसपास के वृक्षों से बातें करने लगती है, मानो उनसे पूछ रही हो कि कैसे हो तुम लोग। फल लदे वृक्ष झूम झूम कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे, किंतु आज अलकनंदा का मन थोड़ा खिन्न सा था। वह सोचती है प्रकृति हमसे किस बात का बदला ले रही है। फिर उसे रामचरित मानस की चौपाई याद आती है। जब जब होई धर्म की हानि, आगे की पंक्तियां अलकनंदा को याद नहीं आ रही थी, पर वह सोचती है कि सच है, जब जब मानव में मानव धर्म और मानवीय मूल्यों का अभाव होता है, नैतिक मानदंडों को धाराशाही किया जाता है, हमारे संबंध स्वार्थ के खोखले ढांचों पर टिके होते हैं, फिर ऐसे में प्रकृति भी अपना प्रकोप तो बरसाती ही है। देखो तो सावन बीतने को है और बारिश का नाम नहीं। ऐसा सोच ही रही थी तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कोरियर वाला कोई ऑर्डर लेके आया था, वह उसको लेकर देखने लगी। अलकनंदा को कोई नया ऑर्डर मिला है। एक बात तो है, इन दिनों में चांदीपुर गांव में दो ही बातें बड़ी चर्चा में हैं। एक अलकनंदा और उसके आम के बागान, जहां से आमों का निर्यात विदेशों में भी किया जा रहा है। कहते हैं ना, श्रम को अगर बुद्धि की सही दिशा मिल जाए तो धरती सोना उगलने लगती है।

बचपन में जिन आमों का नाम हम सिंदूरिया आम के नाम से जानते थे, उसे ही अलकनंदा ने रोज गोल्ड नाम देकर विदेशों में भारतीय आम की धूम मचा दी है। आम मानो खास हो गया है। तिवारी जी के दो ही बच्चे हैं, अलकनंदा और उसका भाई शांतनु। अलकनंदा MBA की पढ़ाई के बाद गांव में ही रहकर तिवारी जी की विरासत संभाल रही थी। उसने अपना कर्म क्षेत्र आम के बागानों को ही बनाया था और उसका भाई शांतनु IIT से MTech कर सॉफ्टवेयर की गलियों में अपना हुनर बिखेर रहा था। तिवारी जी तो अब रहे नहीं, उनके पीछे अलकनंदा ही गांव में उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही है। शांतनु तो शायद पिछले 10 वर्षों से गांव आया ही नहीं, पर आज गांव में यह भी चर्चा है कि शांतनु आने वाला है। अलकनंदा ने भाई के स्वागत की अच्छी तैयारी की है। कामगारों से कहकर आम की सबसे उच्च किस्में उसने शांतनु के लिए रखवा दिए हैं। घर को सजाने का हुनर तो अलकनंदा को आता ही था, पर आज उसने घर को एक विशेष अंदाज में सजाया है। तोरण द्वार के बीच बीच में सुंदर सुंदर रक्षाबंधन वाली राखियां भी बांधी हैं। भाई बहन का स्नेह मुख्य द्वार पर ही झलक रहा है। अलकनंदा ने चंदन को एयरपोर्ट चलने के लिए कहा और वह चंदन के साथ गाड़ी से एयरपोर्ट वाले रास्ते की ओर चल दी। अलकनंदा के गांव से एयरपोर्ट की दूरी यही कोई 8-10 किलोमीटर ही है। अपनी गुलाबी रंग की साड़ी में अलकनंदा आज बहुत ही प्यारी लग रही है। दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में अलकनंदा की नजरें सड़क के दोनों ओर किनारे पर लगे शीशम के वृक्षों पर पड़ी। बचपन से ही इन रास्तों पर शीशम के वृक्षों को देखते आ रही है। कितने वृक्ष काटे भी जा चुके हैं। अलकनंदा चंदन से पूछती है, चंदन आजकल शीशम के वृक्ष की क्या कीमत है? चंदन अपने सामान्य ज्ञान का बखान करते हुए कहता है, दीदी एक वृक्ष यही कोई 80-90 हजार में तो बिक ही जाता है। तब तो अलकनंदा हंसने लगती है और कहती है, आम के साथ साथ शीशम के वृक्षों का भी बिजनेस किया जा सकता है। चंदन भी उसकी हौसला अफजाई करता है, क्यों नहीं दीदी। पर अलकनंदा एक संतोष भरी मुस्कान के साथ कहती है, ना भाई मेरे तो आम ही खास हैं, कितने ही दिलों पर राज करते हैं। यह न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक इनकी धूम मची हुई है। हर दिल में एक मिठास पैदा कर देते हैं। उसकी बातचीत अभी चल ही रही थी कि एयरपोर्ट भी आ गया। अलकनंदा ने देखा शांतनु नीले रंग की जीन्स और हल्के हरे रंग के शर्ट में काफी जच रहा था। दौड़कर उसने शांतनु के गले से गले मिल लिया। शांतनु भी प्यार से उसे गले लगा लेता है और चुटकी लेते हुए कहता है, मेरी बिजनेस वुमन बहन कैसी है? तेरे रोज गोल्ड वाले आम तो अंतर्राष्ट्रीय हो गए हैं। फिर सब लोग गाड़ी में बैठकर घर की ओर चल पड़ते हैं। शांतनु कुछ गंभीर सा था। अलकनंदा ने उसकी गंभीरता तोड़ते हुए पूछा, भाई भाभी और बच्चों को नहीं ले आए? शांतनु जो गांव की ओर बढ़ते हुए रास्तों के हरे भरे खेत खलियान को देख रहा था, बोला, तू तो जानती है अलकनंदा, बाहर की दुनिया में लोग कितने व्यस्त हैं। तेरी भाभी और बच्चे अपनी अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त हैं कि वह यहाँ आने के लिए राजी ही नहीं हुए। वो तो गांव की जमीन का सौदा ना होता तो शायद मैं भी नहीं आ पाता। सौदा? अलकनंदा थोड़ा चौंक जाती है। अब मैं तो हमेशा गांव आ नहीं सकता, फिर इस गांव की जमीन का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अलकनंदा की खुशियों पर मानो भादों की तीव्र बिजली गिर पड़ी। भाई तुमने एक बार मुझसे पूछा भी नहीं। तुझसे क्या पूछना, मैं तेरे रोज गोल्ड वाले आम के बागान थोड़े बेच रहा हूँ। भैया तुझे याद है ना, बाबूजी ने यह जमीन कितनी मेहनत से खरीदी थी। गांव की जमीन की सोंधी खुशबू में उनकी
सांसें बसती थीं।

0: तू पैतृक विरासत को आगे बढ़ाने के बजाय उसे मिटाने आया है। एक बात बता देती हूँ, मैं अपने हिस्से की जमीन को हाथ नहीं लगाने दूंगी। तेरा हिस्सा? हाँ, मेरा हिस्सा। अलकनंदा, तू कैसी बातें कर रही है? गांव में सब क्या कहेंगे? तिवारी जी की बेटी मायके में अपनी जमीन का हिस्सा ले रही है। और भैया, तुम्हें क्या कहेंगे लोग? तिवारी जी का बेटा 10 बरस बाद आया भी तो गांव की जमीन बेचने के लिए, जिसे बाबूजी ने इतनी मेहनत से बनाया था। शांतनु की आंखों में स्वार्थ की एक अजीब सी ज्वाला धहक रही थी। अलकनंदा, यह सब किताबी बातें हैं जो किताबों में ही अच्छी लगती हैं। यथार्थ के धरातल पर इनका कोई मोल नहीं है। अब मैं विदेश से बार बार गांव में इस जमीन की देखभाल तो कर नहीं सकता, फिर इसको रखने का क्या मतलब है? ठीक है भाई, बाबूजी की विरासत की 50% की हकदार मैं भी हूँ। मेरा हक छोड़कर तेरा जो जी में आए वो कर। और इतना कहते कहते अलकनंदा के आंखों में आंसू आ गए। रक्षाबंधन वाले काले सूत, कच्चे सूत के धागे मानो टूट टूट कर बिखर गए हों। दोनों ने एक सन्नाटे के साथ चुपचाप चांदीपुर गांव में प्रवेश किया। और पल भर पहले चांदीपुर गांव की वह हवेली जहां इतनी चहल पहल दिख रही थी, एक सन्नाटा सा पसर गया। और इस सन्नाटे को तोड़ते हुए एक मधुर सी आवाज आई जो भीतर की ओर से आ रही थी। अलकनंदा की सहेली वर्षा आरती की थाली लेकर आ रही थी, लेकिन अलकनंदा ने वर्षा को रोकते हुए कहा, रहने दे वर्षा, अब आरती की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्षा कुछ समझ नहीं पा रही थी। अचानक अलकनंदा को क्या हो गया? अभी तक तो बहुत खुश थी। भाई आएगा तो यह करूंगी, भाई आएगा तो वह करूंगी, अब क्या हो गया? स्कूल के दिनों में शांतनु को वर्षा पसंद करने लगी थी। कैसे हो शांतनु? वर्षा ने शांतनु के चेहरे को निहारते हुए पूछा, जिस पर वक्त की लकीरों ने अपना हिसाब किताब कर रखा है। ठीक हूँ शांतनु, बस इतना ही बोल पाया। वर्षा को याद है बचपन के दिनों में शांतनु उसके पसंद के मीठे मीठे आम कैसे ऊंची ऊंची डालियों से तोड़ लाता था। अलकनंदा वर्षा की जिज्ञासा शांत करते हुए बताती है, सुनो वर्षा, भाई हम लोगों से मिलने या गांव की सुध बुध लेने नहीं आए हैं, यह तो गांव की जमीन का सौदा करने आए हैं।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कहानी जिसका नाम था सौदा और जिसकी कहानीकार थी ज्योति श्रीवास्तव। और चलिए साथियों, इसी के साथ हम आपको बता देते हैं आज के प्रश्न का जवाब। साथियों, हमारा आज का प्रश्न था कि तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, जिसका जवाब है थर्मामीटर, जो कि साथियों अलग अलग प्रकार के होते हैं। और साथियों, अब समय है आपके सेहत से जुड़ी जानकारी देने का। तो साथियों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में तनाव, अनियमित भोजन, शारीरिक गतिविधियों की कमी और बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों में कई तरह की शारीरिक समस्याएं सामने आने लगती हैं, जिनमें से आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत तेज़ी से लोगों में बढ़ रही है। साथियों, इस जटिल बीमारी से बचने के लिए आपकी स्वस्थ जीवन शैली का होना आज के समय में बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ नियमित योग और व्यायाम और पर्याप्त मात्रा में पानी और अच्छी पर्याप्त नींद लेना भी आवश्यक हो जाता है। इसी के साथ साथियों, कुछ ऐसे उपाय और घरेलू नुस्खे हम आपको बता रहे हैं जिससे आप इस समस्या से कई हद तक छुटकारा पा सकते हैं। साथियों, यदि किसी को लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो तो वे एक गिलास पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर पी सकते हैं। इस तरह पानी में नमक मिलाकर पीने से शरीर में तुरंत सोडियम की मात्रा बढ़ने लगती है और बीपी सामान्य हो जाता है। वहीं साथियों, कैफीन या एक कप ब्लैक कॉफ़ी पीने से भी अचानक कम हुआ ब्लड प्रेशर भी सामान्य हो जाता है। तो चलिए साथियों, ये थी सेहत से जुड़ी बातें और अब वक्त है आपके मनोरंजन का। तो आइए सुनवाते हैं ये मधुर गीत।

और चलिए साथियों, इसी मधुर गीत के साथ अब हमारा भी समय हो गया है चलने का। तो साथियों अनुमति दीजिए अपने रेडियो साथी रिंकू चौरसिया को। नमस्कार।

अभी हमारे श्रमिक साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने को है। हमारा अगला प्रसारण आप सुनेंगे समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। उन्होंने अफ्रीका, लातिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजना का भी प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। श्री मोदी ने सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनिश्चित करने पर केंद्रित कार्य सत्र में भी भाग लिया। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय

0: संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इसी बीच श्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर भी सभी की नजरें हैं। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्रू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवा टेक 2026 में भारत मंडपम के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सेटबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सेटबेलो जहाज में हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। गुजरात में वडोदरा में एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। आज तड़के बांसवाड़ा से सूरत जा रही बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लीड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में नीदरलैंड्स ने भारत के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत ने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। इधर लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 84 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi today addressed a crucial working session themed Promoting Balanced, Inclusive and Sustainable Economic Growth for the Benefit of All at the ongoing G7 summit in Evian, France. More from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
1: In his address at the session, the Prime Minister underscored the need for international financial institutions to develop mechanisms that impart economic resilience to developing countries. He also proposed connectivity projects linking Africa, Latin America, and the Pacific Island countries. He also suggested the creation of international mobilization partnership for accelerating connectivity and trade, in which G7 capital, India's talent, and Global South's ownership could be combined. During the session, Mr. Modi also highlighted that tangible growth leads to inclusion and well-being of the people. And spoke about India's growth story underpinned by Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. Ankit Kumar, Akashwani News, Evian, France.
2: The high-level session was attended by G7 member nations, partner countries and key representatives from the International Monetary Fund and the OECD. Prime Minister Narendra Modi held a crucial bilateral meeting with German Chancellor Friedrich Merz on the sidelines of the G7 summit. In a social media post, the Prime Minister informed that both the leaders discussed ways to further cement bilateral cooperation by working together in trade, investments, circular economy, defence, IT and more. Prime Minister Modi also held a bilateral meeting

बल्कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, जल संरक्षण और सतत विकास से भी जुड़ा हुआ है। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार अनेक योजनाएं संचालित कर रही हैं। छीड़ वन एवं बंजर वन क्षेत्रों में पुनर्वास हेतु स्थानीय समुदाय की भागीदारी से वृक्षारोपण राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित हैं। इसमें वन संरक्षण समितियों के माध्यम से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाता है। वन एवं वृक्षारोपण बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई है, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता सुधारने पर विशेष बल दिया गया है। प्रतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत विकास योजनाओं में वन भूमि के उपयोग के बदले वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए गए हैं। राज्यों को वन विभाग एवं पौधरोपण के वित्तीय सहायता भी मुहैया कराई गई है। शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्र बढ़ाने तथा नागरिकों को प्रकृति से जोड़ने के उद्देश्य से शहरों के आसपास नगर वन विकसित करने के प्रयासों के अंतर्गत नगर वन योजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के हरित आवरण को बढ़ाकर 2027 तक 15% करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर काम कर रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यापक स्तर पर वनीकरण, सामाजिक वानिकी और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से लगातार पौधरोपण जैसे बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। वनों का क्षेत्र फल बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदम इस प्रकार हैं: बृहद वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी योजना, मित्र वन योजना, उप वन योजना, हेरिटेज वन योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, मिशन छाया, हरित पट्टी, ग्रीन बेल्ट विकास योजना, मेगा वृक्षारोपण अभियान, हेरिटेज ट्री अडॉप्शन स्कीम, सघन वृक्षारोपण अभियान योजना, नगर वन प्रतिपूरक वनीकरण, स्कूल एवं कॉलेज हरित अभियान, हरित चौपाल, छीड़ एवं बंजर वन स्कीम भारत प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ अभियान एक पेड़ माँ के नाम द्वारा भी जन भागीदारी के माध्यम से व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम भी इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। किसानों की आय वृद्धि करने और हरित आवरण को विस्तार देने हेतु राष्ट्रीय बांस मिशन जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी लगातार करोड़ों पौधे लगाने का महा वृक्षारोपण अभियान चल रहा है, जिसमें एक दिन में सर्वाधिक पौधे लगाने के कई रिकॉर्ड स्थापित किए गए हैं। ग्राम पंचायतों, विद्यालयों, स्वयंसेवी संगठनों और आम नागरिकों की भागीदारी के माध्यम से इस अभियान के प्रति जागरूकता प्रदान की जा रही है। प्रत्येक नागरिक को कम से कम एक पौधा लगाने एवं उसकी देखभाल के लिए प्रेरित करने के लिए एक व्यक्ति एक वृक्ष अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश की प्रमुख जीवनदायिनी नदियां जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती आदि के किनारे पौधरोपण कर उनमें मिट्टी कटाव रोकने एवं उनके जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नदी तट पर जल संग्रह क्षेत्र के हरितीकरण के विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को खेतों की मेड़ों पर वृक्ष लगाने हेतु प्रोत्साहन दिया जा रहा है और प्रत्येक सड़क, नहर और रेलवे किनारे वृक्षारोपण को मूर्त रूप दिया जा रहा है। गांव के किसानों को खेती के साथ वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन कर शीशम, सागौन, यूकेलिप्टिस, पापुलर आदि की खेती पर विशेष बल दिया जा रहा है, जिससे कि वानिकी को बढ़ावा दिया जा सके। स्कूल एवं कॉलेज हरित अभियान विद्यार्थियों को पौधरोपण और संरक्षण से जुड़ना, पर्यावरण शिक्षा और व्यवहारिक रूप से बढ़ावा देना है। प्रत्येक वर्ष जुलाई में व्यापक वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों के जरिए जन जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता पर जोर दिया जा रहा है। जैव विविधता संरक्षण एवं वन्य जीव आवास विकास संरक्षित क्षेत्र के आसपास हरित पट्टिका का विकास कर प्राकृतिक वनों के संरक्षण एवं विस्तार पर बल दिया गया है। हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियानों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। राज्य सरकार के अनुसार करोड़ों पौधों का रोपण

0: किया गया है तथा उनकी जियो टैगिंग और निगरानी की व्यवस्था भी विकसित की गई है। भारत वन स्थित रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन एवं वृक्षावरण में निरंतर वृद्धि के प्रयास जारी हैं। वन केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि जीवन, जल, जलवायु और जैव विविधता के आधार हैं। केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं तभी पूर्ण सफल होंगी जब जन भागीदारी सुनिश्चित हो। वृक्षारोपण के साथ साथ पौधों का संरक्षण और संवर्धन भी उतना ही आवश्यक है। एक पेड़ लगाना पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का पहला कदम है, जबकि उस पेड़ को जीवित रखना वास्तविक योगदान है। धरती, अंबर, जल और जंगल, इनकी रक्षा सबका मंगल। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, महाअभियान, एक पेड़ माँ के नाम। जीवन का एक ही सहारा, पर्यावरण हम सबको प्यारा। पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए रखो इसका ध्यान।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा में अभी आप सुन रहे थे वार्ता, वन क्षेत्र बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्रियान्वित पहले। वार्ताकार थी।
2: फसल की बात है निराली, गुड़ है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
3: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी के निर्माता इफको।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो किसान, मीडियम वेव के मीटर पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
5: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PMsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, बेहतर सुरक्षा से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार। नीट पुनर्परीक्षा के उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मिलेगी 50% की छूट। मुख्यमंत्री ने जरूरतमंद उम्मीदवारों के लिए ठहरने की अस्थायी व्यवस्था करने के भी दिए निर्देश। बदायूं में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर जताया दुख। और लखनऊ में खेला जा रहा है भारत अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय मैच। टीम इंडिया ने जीत के लिए खड़ा किया 403 रनों का लक्ष्य। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित ग्रेड ए के 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आप सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन को बढ़ाने के सारथी हैं। श्री योगी ने कहा कि ड्यूटी के प्रति सजगता और हर कार्य में गंभीरता होनी चाहिए। ड्यूटी के दौरान रील बनाना अनुशासनहीनता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा के बेहतरीन वातावरण में अर्थव्यवस्था को गति मिली है।

0: नौ वर्ष में यूपी की अर्थव्यवस्था तथा प्रति व्यक्ति आय 3 गुना से अधिक बढ़ी है।
1: हमने प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया भर्ती आयोगों में बोर्डों में उसके परिणाम आए हैं। हमने 9 लाख से अधिक तो केवल सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो वातावरण बना है लाखों नौजवानों को उसके माध्यम से निवेश से और उद्योगों की संख्या आप सोचो कि यूपी के अंदर कुल 14,000 बड़े कारखाने थे। कुल 14,000 इतनी बड़ी आबादी का राज्य एमएसएमई लगभग बंद हो गया था। आज हमारे पास बड़े कारखानों की संख्या इन 9 वर्ष में 32,000 से अधिक हुई है।
0: प्रदेश में नीट पुनर्परीक्षा के उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा में लगभग 3.5 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि परीक्षा के लिए दूसरे जिलों में जाने वाले और वहां ठहरने के लिए स्थान की समस्या से जूझ रहे उम्मीदवारों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाए। इस संबंध में परिवहन निगम ने निर्देश जारी कर दिए हैं। किराए पर छूट की व्यवस्था 20 और 21 जून को लागू रहेगी। उधर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
2: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति आत्मनिर्भरता के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की पर भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षित भारत ही विकसित भारत की आधारशिला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने सुरक्षा और सामरिक सामर्थ्य के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। इसी क्रम में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने वाराणसी में कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है।
3: जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर सबका साथ देने का काम किया है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को और हम लोग दीर्घायु होने की कामना भी करते हैं ताकि आने वाले भविष्य में जो प्रधानमंत्री जी का सोच है कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनाना है उसमें हमका योगदान हो सके।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
5: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
4: वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुँच प्रदान कर रहा है।
6: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
4: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलेन

0: अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव की परिस्थितियों को देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि बढ़ाकर 24 जून तक कर दी है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब प्रत्येक वर्ष 20 मई से 24 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा और 25 जून से विद्यालयों में नियमित पठन पाठन आरंभ होगा। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था से पूरे प्रदेश में एक रूपता सुनिश्चित होगी और विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा शिक्षकों को स्पष्ट शैक्षणिक कैलेंडर उपलब्ध हो सकेगा। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि विद्यालय खुलने से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 220 कार्य दिवस और नियमित पठन पाठन सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारियों को भी स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित करने से पूर्व इस विधिक प्रावधान को ध्यान में रखने के निर्देश दिए गए हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: बदायूं जिले के थाना उझानी क्षेत्र में ग्राम बुटला के पास आज एक ट्रैक्टर और ई रिक्शा में हुई टक्कर में 6 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 3 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदायूं में हुई दुर्घटना में जान माल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि उनकी सहानुभूति उन सभी के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र होने की कामना भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे में हुई जनहानि पर गहरा शोक जताया है। लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जा रहा है। शुभमन गिल और ईशान किशन के शतकों की बदौलत भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रनों का लक्ष्य रखा है। समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 2 विकेट के नुकसान पर 86 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, बेहतर सुरक्षा से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार। नीट पुनर्परीक्षा के उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मिलेगी 50% की छूट। मुख्यमंत्री ने जरूरतमंद उम्मीदवारों के लिए ठहरने की अस्थायी व्यवस्था करने के भी दिए निर्देश। बदायूं में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर जताया दुख। और लखनऊ में खेला जा रहा है भारत अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय मैच। टीम इंडिया ने जीत के लिए खड़ा किया 403 रनों का लक्ष्य। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर,
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31 हुए हैं और वक्त है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश में हम याद करेंगे भारत की माटी में जन्मी उस वीरांगना की, जिनका नाम सुनते ही साहस, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना जाग उठती है, जो तूफानों से टकराने की हिम्मत रखती थी, जो

दुश्मन के सामने सर उठाकर चलती थी। वो भारत की बेटी वीरता की पहचान थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हिंदुस्तान की शान थी। जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात करेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की।

श्रोताओं, रानी लक्ष्मीबाई केवल एक नाम नहीं बल्कि नारी शक्ति, साहस और आत्मसम्मान का जीवंत मिसाल हैं। उन्होंने हमें ये सिखाया कि जब देश की आन बान शान पर संकट आता है तो एक नारी भी रणभूमि में उतरकर इतिहास रच सकती है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। श्रोताओं, ये केवल एक पंक्ति नहीं बल्कि उस अदम्य साहस का सम्मान है जिसने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी थी।

प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन आन शान या की जान।

जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचार।

दया का भाव या किशोर का चुनाव या कि हार का वो घाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या किशोर का चुनाव या कि हार का वो घाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे वे जय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो।

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। श्रोताओं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म

नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। प्यार से इन्हें मनु कहा जाता था। बचपन से ही इन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला का प्रशिक्षण मिला। इनके प्रिय घोड़ों के नाम बादल, सारंगी और पवन थे। इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और इसी के कारण इन्हें झांसी की रानी कहा जाने लगा।

श्रोताओं, हमने बात की रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई जिनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था। झांसी के महाराजा और लक्ष्मीबाई के पति जिनका निधन 21 नवंबर 1853 को हो गया, जिसका प्रमुख कारण लंबे समय से खराब स्वास्थ्य और शारीरिक कमजोरी था। मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने एक बालक को गोद लिया जिसका नाम दामोदर राव था, जिसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया और लैप्स की नीति के अनुसार झांसी को अपने अधीन करने का प्रयास किया, जो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष की एक महत्वपूर्ण कारण बना। श्रोताओं, मात्र 29 वर्ष की आयु में 18 जून 1858 को झांसी के लिए युद्ध करते हुए ग्वालियर के निकट झांसी की रानी वीरगति को प्राप्त हो गई। उनके अदम्य साहस को नमन करते हुए श्रोताओं, नमन करते हैं उस मां को

श्रोताओं, जिस उम्र में लोग सपने देखते हैं, उस उम्र में लक्ष्मीबाई ने इतिहास रच दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि साहस का कोई लिंग नहीं होता और देश प्रेम से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। आज उस वीरांगना की वीरता, त्याग और देशभक्ति भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। दीप बुझा नहीं, मशाल बनकर जलता है। वीरों का बलिदान कभी नहीं मिटता। हर भारतवासी के दिल में है जिसकी निशानी। अमर रहे नाम तुम्हारा, हे झांसी की रानी, हे झांसी की रानी। तो श्रोताओं, इन चंद बातों के साथ ही कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज चुके हैं। वक्त है फिल्म संगीत के कार्यक्रम एक और अनेक का। कार्यक्रम में आज एक आवाज आप सुनेंगे अरिजीत सिंह की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत रॉय फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में, जिसमें इनका साथ दे रही हैं अदिति सिंह शर्मा, शब्द रचना कुमार की, संगीत अमाल मलिक का।

श्रोताओं, कबीर सिंह फिल्म से ये गीत आपने सुना अरिजीत सिंह के स्वर में। कार्यक्रम में ये अब सुनते हैं सोनू की टीटू की स्वीटी फिल्म से अरिजीत सिंह के स्वर में एक और गीत।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना जीत गांगुली के संगीत निर्देशन में। वो लिखी थे इरशाद कामिल ने, आवाज थी अरिजीत सिंह की। इस गीत को हमने लिया था फिल्म आशिकी 2 से। कार्यक्रम में ये अब सुनते हैं हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म से ये गीत, मिठुन अरिजीत सिंह और शाशा त्रिपाठी की आवाजों में। मनोज मुंतशिर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है मिठुन ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में छिछोरे फिल्म से ये गीत आपने सुना अरिजीत सिंह के स्वर में। अमिताभ भट्टाचार्य की बोलों को संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने। श्रोताओं, इन गीतों के साथ ही कार्यक्रम एक और अनेक यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। श्रोताओं, एक बार फिर से रुख करते हैं फिल्म संगीत की ओर और सुनते हैं चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आई मिलन की रात फिल्म से अनुराधा पोडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। आनंद मिलन के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में दूध का कर्ज फिल्म से ये गीत आपने सुना अनुराधा पोडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी अनु मलिक ने। श्रोताओं, इन गीतों के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब आप सुनेंगे हमारी इसी सभा में रात्रि 10 बजे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी समाचार, तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत
1: मिलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता

0: एक्सीलेंस, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने की दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवा

संचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की सातवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000

0: हजार से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को

उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों एनआरआई पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में एनआरआई विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड

0: वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
1: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर ₹94.53 पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज़, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1,200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chase target of 403 runs set by India in second ODI of 3-match series in Lucknow. A crucial bilateral meeting was held between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump at Evian, France on the sidelines of G7 summit this evening. During the talks, issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figured prominently. Prime Minister Modi commended President Trump for the progress in peace efforts in West Asia. The Prime Minister said that India has consistently emphasized the importance of the freedom of navigation and all should work together to place a particular emphasis on it. Mr. Modi added that lakhs of Indian seafarers in maritime trade are on duty in different oceans of the world and their safety is of utmost importance to India.
3: एक्सेलेंसी हम

0: हेरिटेज विद इनोवेशन। इन वाराणसी, द काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इनॉग्रेटेड इन दिसंबर 2021 हैज ट्रांसफॉर्म्ड द पिलग्रिमेज एक्सपीरियंस बाय डायरेक्टली कनेक्टिंग द टेंपल विद रिवर गंगा। स्प्रेड अक्रॉस 5.5 एकर्स, द प्रोजेक्ट हैज इनहांस्ड एक्सेसिबिलिटी एंड रिवाइटलाइज्ड वन ऑफ इंडियाज मोस्ट रिवर्ड स्पिरिचुअल सेंटर्स। टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज, अ रेसिडेंट ऑफ वाराणसी प्रियांशु सिंह सेड दैट द कॉरिडोर इज प्रोवाइडिंग ईज ऑफ एक्सेस टू पिलग्रिम्स।
1: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है।
2: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क इन काशी। अर्लियर द रोड लीडिंग टू द टेंपल यूज्ड टू बी क्वाइट नैरो, व्हिच कॉज अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, बट नाउ सिंस द कॉरिडोर हैज बीन बिल्ट, द क्राउड मैनेजमेंट इज मोर एफिशिएंट एंड पीपल कैन विजिट एंड हैव अ दर्शन मोर इजीली।
1: दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: सकलैन अख्तर, आकाशवाणी न्यूज, दिल्ली।
3: The India Meteorological Department IMD has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal for tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Bihar, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal tomorrow. The IMD said that conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into some more parts of Telangana, Odisha, Jharkhand, Bihar and some parts of Chhattisgarh during the next 4 to 5 days. In cricket, chasing a target of 403 runs set by India, Afghanistan were 225 for 8 in 42 overs in the second ODI of the three-match series in Lucknow when reports last came in. India were bowled out 402 in 49.5 overs. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at VivaTech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1,200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chased target of 403 runs set by India in second ODI of three-match series in Lucknow. That is all in the news at 9. Good night.
4: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एवियों में G7 सरबराह इजलास के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग की। मीटिंग में बहरी जहाजों के अमले की सलामती और आबनाई हुरमुज को खुला रखने के उमूर पर बातचीत की गई। वजीर आजम ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स, यूरोपीय काउंसिल के सदर अंतोनियो कोस्ता और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ भी दोतरफा मीटिंगें की। पेरिस में विवाटेक 2026 के दौरान इंडिया पवेलियन की इफ्तिताही तकरीब में भारत और फ्रांस ने जिद्दत तराजी, मसनूई जहानत और तकनीकी ताउन के फरोग के अज़्म का इआदा किया। रेलवे ने कनेक्टिविटी और मुसाफिरों की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई प्रोजेक्टों की मंजूरी दी। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों और मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में लखनऊ में 3 एक रोजा बैन अलावामी मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। फ्रांस के शहर एवियां में G7 सरबराह इजलास 2026 के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक अहम दोतरफा मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान वजीर आजम मोदी ने मगरबी एशिया में अमन के कयाम की कोशिशों में होने वाली पेशरफ्त पर सदर ट्रंप की तारीफ की। वजीर आजम ने कहा कि भारत हमेशा समंदरी रास्तों पर जहाजों की आमदोरफ्त की आजादी की अहमियत पर जोर देता रहा है और तमाम मुल्कों को इसके तहफ्फुज़ के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वजीर आजम ने मजीद कहा कि दुनिया के मुख्तलिफ समंदरों में बहरी तिजारत के शोबे से वाबस्ता लाखों भारतीय मल्लाह अपनी खिदमत

0: अंजाम दे रहे हैं और उनकी सलामती भारत के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मस्नूई जहानत AI के महफूज तेज रफ्तार और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के मौजू पर मुनक्किदा वर्किंग लंच में शिरकत की। इस इजलास में G7 के रुकन मुल्कों, शराकतदार ममालिक और मस्नूई जहानत की मारूफ कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान शरीक हुए, जहां डिजिटल इख्तरा के मुस्तकबिल पर ख्यालात का तबादला किया गया। वजीर आजम मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने इलाकाई और आलमी हालात वाकयात पर बातचीत की, जिसमें मगरबी एशिया की सूरत हाल और रूस यूक्रेन तनाज़ा भी शामिल था। दोनों रहनुमाओं ने दोतरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायजा लिया और भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में नई रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। इस सिलसिले में चांसलर मर्स के भारत के कामयाब दौरे और रवां साल भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदे के मुजाकरात की तकमील का भी जिक्र किया गया। चांसलर मर्स ने वजीर आजम मोदी को इस साल जर्मनी में मुनक्किद होने वाली 8वीं भारत जर्मनी बैन हुकूमती मुशावरत में शिरकत की दावत दी। वजीर आजम मोदी ने सरबराह इजलास के मौके पर यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फोन देर लैन और यूरोपीय काउंसिल के सदर अंतोनियो द कोस्टा के साथ भी मीटिंग की। पेरिस में जारी विवाटेक 2026 में भारतीय पवेलियन के इफ्तिताह के मौके पर भारत और फ्रांस ने इख्तराम मस्नूई जहानत और टेक्नोलॉजी के शोबे में तावुन के अपने अहद को दोहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल और फ्रांस की मस्नूई जहानत और डिजिटल उमूर से मुतालिक वजीर एनएलए हेनाम्प ने दोनों ममालिक के माबेन कलीदी शराकतदारी की बढ़ती हुई अहमियत को उजागर किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इख्तराकारों और स्टार्टअप से खिताब करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुएल मीखों के जरिए भारत फ्रांस इख्तरा के साल 2026 के ऐलान के जरिए भारत और फ्रांस की शराकतदारी मजीद मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि मस्नूई जहानत AI के दौर में भारत को कई नुमाया फवायद हासिल हैं, जिनमें नौजवान आबादी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी स्टेम के माहिरीन की बड़ी तादाद, मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा और जमहूरी तर्ज हुक्मरानी शामिल हैं। उन्होंने भारत फ्रांस इख्तरा के साल का जिक्र करते हुए कहा कि स्टार्टअप्स और तहकीकी इदारों के जरिए बढ़ता हुआ तआवुन नई राहों और मौके को जन्म दे रहा है। काबिले जिक्र है कि विवाटेक 2026 में कायम इंडिया पवेलियन कौमी सतह के सबसे बड़े पवेलियन में शुमार होता है, जहां भारत के तेजी से फरोग पाते हुए स्टार्टअप्स और इख्तराई माहौलियाती निजाम की भरपूर नुमाइश की जा रही है। पेरिस से महेश चोबड़े की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के अपने दौरे के एक हिस्से के तौर पर आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय बिरादरी के अफराद उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनके खैर मकदम के लिए तैयारियां जारी हैं। कल सुबह वजीर आजम मोदी सरकर्दा चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान के साथ मीटिंगें करेंगे और तवक्को है कि यह तबादला ख्याल दोपहर तक जारी रहेगा। इसके बाद वजीर आजम मोदी विवाटेक समिट में शिरकत करेंगे, चूंकि यूरोप की टेक्नोलॉजी और इख्तराअ से मुतालिक एक अहम मीटिंग है। तवक्को है कि जनाब मोदी इस मौके पर खिताब भी करेंगे। शाम में वजीर आजम एक कम्युनिटी तकरीब में शिरकत करेंगे और भारतीय बिरादरी के साथ तबादला ख्याल करेंगे। भारतीय रेलवे ने गुजरात, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल और मध्य प्रदेश में रेलवे की गुंजाइश बढ़ाने, माल बर्दारी के निजाम को बेहतर बनाने, हिफाजती इंतजाम को मजबूत करने और शहरी नकलो हमल के बुनियादी ढांचे को जदीद बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए से जायद मालियत के मुतादिद बुनियादी ढांचा जाती मनसूबों की मंजूरी दी है। इन मनसूबों में गुजरात के एक अहम रेलवे सेक्शन पर दोहरी लाइन बिछाने, महाराष्ट्र में मालगाड़ियों के लिए एक नई कॉर्ड लाइन तामील करने, मशरकी रेलवे में सिग्नलिंग निजाम को जदीद बनाने और इंदौर में एक अहम रोड ओवर ब्रिज की असर नौ तामीर शामिल है। इन इकदाम से रेलवे ऑपरेशंस की कारकर्दगी में इजाफा, मसरूफ रेलवे राहदारियों पर दबाव में कमी, मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात की फराहमी और

0: मौशी सरगर्मियों को फरोग मिलने की तवक्को है। कच्छ के खित्ते में रेलवे राबते को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए मगरबी रेलवे के 49 किलोमीटर तवील आदिपुर भुज सेक्शन की दोहरी लाइन बिछाने के मनसूबे को तकरीबन 493 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई है। इस मंसूबे से इलाके में मुसाफिरों और माल बर्दारी दोनों के लिए बेहतर सहूलतें फराहम होंगी। इस तरह भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र में 3.7 किलोमीटर तवील सोमटाने चिखली कोड लाइन की तामीर की मंजूरी दी है, जिस पर तकरीबन 172 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जदीदकारी के एक अहम इकदाम के तहत मशरूकी रेलवे में 450 करोड़ रुपए के सिग्नलिंग अपग्रेडेशन मंसूबे को भी मंजूरी दी गई है। रेलवे और इत्तला तो नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज तकरीबन 600 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से पुणे रेलवे स्टेशन की बड़े पैमाने पर तौसी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा 6 प्लेटफार्मों के साथ मजीद 6 नए प्लेटफार्म तामीर किए जाएंगे, जिसके बाद प्लेटफार्मों की कुल तादाद 12 हो जाएगी। इसके अलावा कामकाज की कारकर्दगी और मुसाफिरों की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम की जगह जदीद इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम नस्ब किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर अमल करते हुए भारत ने नुमाया तरक्की की है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद अहम इक़दाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मुल्क के सकाफती विरसे के तहफ्फुज़ और फरोग के लिए हुकूमत के जरिए किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत ने अपनी तहजीबी विरासत के तहफ्फुज़, फरोग और उसका जश्न मनाने के लिए कई तारीखी इकदाम किए हैं, जिनसे लाखों शहरियों में फख्र का जज्बा पैदा हुआ है। अहम वाकयात में सबसे अहम वाकया जनवरी 2024 में पेश आया, जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में अजीमुशान श्री राम मंदिर में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा को अंजाम दिया। ये सदियों पुरानी एक ख्वाहिश की तकमील थी। हाल ही में मंदिर का दौरा करने वाले एक अकीदतमंद पंकज जारिया ने आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए अपने तजुर्बात बयान किए।
2: थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में महाकाल लोक प्रोजेक्ट का पहला मरहला अक्टूबर 2022 में कौम के नाम वक्फ किया गया। ये अजीम कॉरिडोर शानदार मुजस्मों, दीवारों पर बने फन पारों और तामीरात पर मुश्तमिल है, जो भगवान शिव की जिंदगी और उनसे मंसूब रिवायात की अक्कासी करते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और मस्नूई जहानत पर मबनी निगरानी के निजाम से आरास्ता महाकाल लोक विरासत और जिद्दत का हसीन इम्तिजाज पेश करता है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसका इफ्तिताह दिसंबर 2021 में किया गया था, ने यात्रियों के सफर के तजुर्बे को यकसर बदल कर रख दिया है। ये कॉरिडोर मंदिर को बराह रास्त दरियाए गंगा से जोड़ता है। 5.5 एकड़ पर मुहित इस प्रोजेक्ट ने लोगों की रसाई को बेहतर बनाया है और भारत के सबसे मौजिज रूहानी मराकज इसमें से एक को नई जिंदगी बख्शी है। आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए वाराणसी के रहने वाले प्रियांशु सिंह ने कहा कि ये कॉरिडोर यात्रियों की आमदोरफ्त में काफी आसानी फराहम कर रहा है।
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये इनकलाबी इकदामात इस बात की अक्कासी करते हैं कि मुल्क अपनी सकाफती जड़ों के तहफ्फुज के साथ साथ एतमाद के साथ मुस्तकबिल की जानिब गामजन है। सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: दिल्ली पुलिस के खसूसी सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के मुबैना हैंडलर शहजाद भट्टी से वाबस्ता 8 रुकनी कसीर रियासती दहशतगर्दी मॉड्यूल के मजीद 5 मुलजमों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन गैंग बेस्ट 2.2 के दौरान मस्कूरा मॉड्यूल के 3 अरकान को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान को दिल्ली और पड़ोसी रियासतों में पुलिस अहलकारों को निशाना बनाने, पाकिस्तान में मौजूद रबताकारों की तशहीर

ने और आईएसआई की सरपरस्ती में मुबैना तौर पर कायम तंजीम तहरीक तालिबान हिंदुस्तान को फरोग देने की जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5 हथियार, शहजाद भट्टी नेटवर्क से मुतालिक पोस्टर्स और दीगर काबिल एतराज मवाद भी बरामद किए, जिनमें पुलिस एहलकारों को धमकियां देने वाली वीडियोज भी शामिल हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों और मगरबी बंगाल के जैली हिमालयाई खत्ते में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल बिहार, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के इलाकों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। IMD ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन के दौरान तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और बिहार के मजीद कुछ इलाकों, नीज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में जनूब मगरबी मानसून की पेशकदमी के लिए हालात साजगार हैं। महकमे मौसमियात ने अगले 2 रोज के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक कल झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अंडमान और निकोबार जजायर में इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। क्रिकेट में लखनऊ में 3 एकरोजा बैन अलावामी मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रन का निशाना रखा है। इससे कबल भारतीय टीम 49 ओवर्स में 5 गेंदों में 402 रन बनाकर आउट हो गई। शुभमन गिल और ईशान किशन ने सेंचुरियां बनाई। गिल ने 154 रन बनाए जबकि किशन ने 125 रन स्कोर किए। इससे कबल अफगानिस्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अब से कुछ देर पहले तक अफगानिस्तान की टीम ने 44.3 ओवर्स में 8 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एवियो में G7 सरबराह इजलास के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग की। मीटिंग में बहरी जहाजों के अमले की सलामती और आबनाई हुरमुज को खुला रखने के उमूर पर बातचीत की गई। वजीर आजम ने जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्ज, यूरोपीय काउंसिल के सदर अंतोनियो कोस्ता और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फोन देर लेन के साथ भी दोतरफा मीटिंगें की। पेरिस में विवाटेक 2026 के दौरान इंडिया पवेलियन की इफ्तिताही तकरीब में भारत और फ्रांस ने जिद्दत तराजी, मसनूई जहानत और तकनीकी ताउन के फरोग के अज़्म का इआदा किया। रेलवे ने कनेक्टिविटी और मुसाफिरों की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई प्रोजेक्टों की मंजूरी दी है। और मर्दों के क्रिकेट में लखनऊ में 3 एकरोजा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रन का निशाना रखा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: भारत की सुरक्षा केवल उसकी सीमाओं पर तैनात सैनिकों के साहस से ही सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि उस शक्ति से भी होती है जो उन्हें आधुनिक हथियार, अत्याधुनिक तकनीक और मजबूत रक्षा उपकरण उपलब्ध कराती है। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में गिना जाता था। लड़ाकू विमान हों, मिसाइलें हों, युद्धपोत हों या फिर आधुनिक हथियार प्रणालियां, हमारी निर्भरता विदेशी देशों पर काफी अधिक थी। लेकिन बीते कुछ वर्षों में तस्वीर तेजी से बदली है। अब भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। वर्ष 2020-21 की तुलना में इसमें 110% से अधिक की वृद्धि हुई है। रक्षा निर्यात भी बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गया है। निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी, रक्षा गलियारों का विकास, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलें इस परिवर्तन की आधारशिला बनी हैं। भारत किस तरह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, रक्षा उत्पादन में ये वृद्धि हमारी सामरिक शक्ति को किस तरह मजबूत कर रही है, वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की क्या नई पहचान बनी है और आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की चुनौतियां और संभावनाएं क्या हैं, इन पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय बैनर्जी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी और रक्षा विशेषज्ञ भी आप हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद। जय हिंद।
1: लेफ्टिनेंट जनरल, आपसे शुरू करते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि

0: वर्ष 2020-21 की तुलना में आज जो हमारा रक्षा उत्पादन है उसमें तकरीबन 110% की वृद्धि हुई है। एक सैन्य रणनीतिकार के नजरिए से हम बात करें तो इस भारी बढ़ोतरी ने भारतीय सशस्त्र बलों यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों को किस तरह बूस्ट किया है और साथ ही साथ विदेशी कल पुर्जों पर हमारी निर्भरता को कितना कम किया है?
1: मैं कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं, शक्ति में शांति और उसी में मनोबल ऊंचा होता है आर्म फोर्सेस का। पहले जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, तकरीबन 65% पूरा का पूरा हम लोग आयात करते थे और अब तकरीबन 65% हम भारत में खुद बनाते हैं। तो ये जो पहल है हमारी आत्मनिर्भरता की, मेक इन इंडिया की, इससे बहुत फर्क पड़ा है। जो डिफेंस कॉरिडोर का सेटअप होना, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एक साथ मिलजुल करके काम करना, डीआरडीओ का इनका मनोबल ऊंचा करना, इनको प्रोत्साहित करना, स्टार्टअप को साथ ले चलना, अकेडेमिया के साथ करना, जो यूजर्स है उनको साथ में लेकर के चलना, तो ये जो बेसिक कार्रवाई है, काफी पहले प्रोसीजर्स होते थे, उन प्रोसीजर से जिससे देरी होती थी उनको हटा दिया। अब जब भारत के अंदर कोई भी चीज बनती है और खासकर जब वो बनती है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हो, ये नहीं कि भारत में बनाने बात अलग है, पर वो वस्तु बनाना जो इंटरनेशनल से टक्कर दे, और वो हम लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में। इस प्रकार अपने बनाए हुए रेडार ने किस प्रकार से दुश्मन के एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए दुश्मन को नुकसान पहुंचाया, और यही कारण था कि अबाउट 88 आवर सिर्फ 100 घंटे से भी कम में पाकिस्तान ने घुटने टेके। ये क्या दर्शाता है कि पाकिस्तान को पूरा का पूरा चीन का पूरा रक्षक तुर्की है उसको मदद कर रहा, पाकिस्तान अपना खुद कर रहा और उसको पेनिट्रेट करना, ये तब हो सकता है जब आप आत्मनिर्भर हो, जब आप दूसरे के ऊपर निर्भर ना करें, मेक इन इंडिया हो। आपको मालूम है आपकी चीज क्या है, आपने अपने एरिया के मुताबिक स्पेसिफिक इसे बनाया है, तो ये जो एक है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1.78 लाख करोड़ एन ऑल टाइम हाई, और जैसे आप कह रहे हैं कि ऑफकोर्स 2000 मतलब पिछले साल से तो आपको 15.6%, वो उससे पहले अगर देखा जाए तो 110% से भी ज्यादा, और वापस अगर 2013-14 की ओर देखेंगे तो उस वक्त तो हार्डली डिफेंस प्रोडक्शन यूज्ड टू बी समथिंग लाइक 43,000 करोड़, और अब इट इज प्राइवेट प्रोडक्शन हमारा तकरीबन 43,000 करोड़ है। प्राइवेट प्रोडक्शन, यू कैन वेल इमेजिन 1,78,000 करोड़ में प्राइवेट का कंट्रीब्यूशन है, दैट्स ऑलमोस्ट अबाउट द सेम एज व्हाट वाज द टोटल डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ 2014।
0: अजय जी, आपसे समझने की कोशिश करते हैं, आप लंबे समय से भारत के विदेश और रक्षा नीतियों को कवर करते रहे हैं। एक वो भी दौर था जब हम दुनिया के शीर्ष हथियार खरीदारों में से एक थे, और आज यानी 25-26 की हम बात करें तो हमने 38,424 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है। आयातक से निर्यातक बनने के इस सफर में वैश्विक पटल और जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से भारत का कद कितना बढ़ा हुआ आप देख रहे हैं?
2: देखिए, पहले मैं एक बिंदु बताऊंगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, जो कुलकर्णी सर भी बात कर रहे थे। निजी सेक्टर ने तकरीबन 24% किया है इसे 1,78,000 करोड़ में से। निजी सेक्टर की ग्रोथ सबसे इम्पोर्टेंट है, जब तक वो ग्रो नहीं करेगा तब तक हम देश में एक्सपोर्ट या जिसे कहते हैं नहीं कर पाएंगे। जैसे आप बात कर रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट का कैसे सफर आया है, वो सफर ग्रेजुअल होता है, हमेशा ग्रेजुअल होता है। पिछले 10-12 साल में स्पीड बहुत पकड़ी है, बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ी है। हम कोई 400-500 करोड़ की एक्सपोर्ट करा करते थे 10-12 साल पहले, और अब कोई 38,000 करोड़ की जैसे आपने नंबर दिया उतनी कर रहे हैं। अब ये एक्सपोर्ट जो है ये कई ऐसे मुल्कों को हो रही है जो तुर्की के आसपास हैं, पहले तो ग्रीस है, आर्मेनिया है, बिना का रॉकेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ और एक्सपोर्ट हो रहा है जो कि चीन के साथ, जिनकी तालमेल नहीं बैठ रही उन मुल्कों के साथ, जैसे वियतनाम को, इंडोनेशिया को, फिलीपींस को, ब्रह्मोस की हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके लिए हम पार्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग यूएस से, उनकी कंपनियों को भी हम पार्ट सप्लाई करते हैं, हमारी कई निजी कंपनियां यहाँ। आगे आने वाले दिनों में हमने अभी बहुत स्पीड पकड़नी है। आपने एक बात बोली कि हम सबसे बड़े इम्पोर्टर हुआ करते थे, इम्पोर्टर अभी हम रहेंगे 10-12-15 साल और रहेंगे, जब तक हमारे पास एयरक्राफ्ट का इंजन, युद्धपोत यानी वॉरशिप का इंजन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज, और सबसे बड़ी बात जैसे F-400 मिसाइल मारक क्षमता, जैसे हमारा एक कुशा प्रोजेक्ट चल रहा है उसको कंप्लीट होने को 5-7 साल लगेंगे। जब तक वो ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट नहीं हो जाएंगे हम इम्पोर्टर रहेंगे। ये एक सच्चाई है, हमारे देश को मान के चलना चाहिए। हर देश सारा कुछ नहीं बनाता, हम एक बहुत बड़े इस टाइम एक्सपोर्टर की तरह उभर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया, मगर ये अभी 10-15 साल और लगेंगे हमको टोटली सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए, और अभी स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है। ये मैं आपके श्रोताओं को एक ऑनेस्टली और बिल्कुल सच्ची बात बता दूं, स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है।
0: जी हाँ कुलकर्णी सर, अगर इसी

0: चर्चा को आगे बढ़ाएं, जैसा कि बैनर्जी जी कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र की जो भागीदारी बढ़ी है उससे एक नई उम्मीद की किरण रक्षा क्षेत्र में जगी है। आपको क्या लगता है कि रक्षा उत्पादन में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच जो ये सिनर्जी है, यानी जो तालमेल है, इसे आप कैसे देखते हैं और क्या ये मॉडल आने वाले समय में हमें फाइटर जेट्स और सबमरीन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट बना सकता है?
1: देखिए, फाइटर एयरक्राफ्ट को देखते हुए अभी हम देखते हैं टाटा ने फर्स्ट एयरक्राफ्ट अपना फ्लाई करने की कोशिश की नागपुर से, और जैसे बैनर्जी साहब बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत वक्त लगता है, ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, इतनी आसान नहीं है और कोई दूसरा देश आपको देता भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पहल की है प्राइवेट इंडस्ट्री ने, कम से कम पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर के डीआरडीओ ने अपनी फैसिलिटीज उनको मुहैया कराई है, उसको देखते हुए जरूर मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और खासकर डिफेंस के अंदर प्राइवेट सेक्टर को एक बात का आभास होना चाहिए, वो फौज है उनसे खरीदती रहेगी, क्योंकि अगर आप उनको बोलेगा 100 हवाई जहाज बना करके उसके बाद फैक्ट्रीज बंद हो जाए, वैसे नहीं हो सकता है, 100 के बाद वो प्रोडक्शन चल, उसके लिए एक्सपोर्ट बहुत जरूरी है। जब आप बनाते हैं जस्ट नॉट फॉर मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड, मतलब फैक्ट्रीज चलती रहनी चाहिए, ये नहीं कि 40 पीस आर्टिलरी के दे दिए उसके बाद फैक्ट्री क्या करेगी, आपके लिए बनाए उसके बाद क्या होगा। तो ये जो सस्टेनेंस है ऑफ प्रोडक्शन, सस्टेनेंस ऑफ एंड मॉडिफिकेशन, उसके ऊपर इनोवेशन, तो ये जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आई है, और खासकर मैं कहूंगा टाटा की हो, महिंद्रा हो, एल&टी हो, कल्याणी भारत फोर्ज हो, अशोक लेलैंड हो, अडानी, अल्फा डिजाइन, ये जितने भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके, मुझे लगता है बहुत जबरदस्त। और जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी भी 1,78,000 करोड़ का है, इसमें तकरीबन मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 25% प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, इट इज अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन, इसको बढ़ना है। और ये तभी हो सकता है जब सिनर्जी हो, जिसकी आप बात कर रहे हैं, सिनर्जी इज अ मस्ट, यानी कि जो बनाने वाला है मैन्युफैक्चरर, जो इस्तेमाल करने वाला है यूजर, ये दोनों का जो तालमेल है ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यूजर भी कुछ ऐसी चीज मांगे जो बनने में तकलीफ हो और मैन्युफैक्चरर भी ऐसी चीज बनाए जो यूजर को ना पसंद हो, तो दोनों का तालमेल बहुत जरूरी, नंबर वन। नंबर टू, जब चीज हिंदुस्तान के अंदर बनती है तो उसके ऊपर जो मॉडिफिकेशंस करते हैं वो उसको बहुत आसानी होती है। अभी आपने मार्क वन बनाया है, आपने हमने ही बनाया है हिंदुस्तान के अंदर, तो उसको मार्क टू बनाने में दिक्कत नहीं आती है, उसके मेंटेनेंस, सप्लाई, स्पेयर, उसको पाने में दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो सिनर्जी है बहुत जरूरी है, जिसमें डीआरडीओ की भी काफी हद तक उसका सपोर्ट उनको मिलना चाहिए। हमारे पास बड़े बड़े जमीनें हैं, ग्राउंड्स हैं, जहाँ पे आप फायरिंग कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं आपका मटेरियल कैसे काम कर रहा है। तो ये जो सारा कुछ मिलकर के अकेडमिया है, IITs है, वहां के बच्चे बड़े होशियार हैं, वो आगे आते हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो आगे आते हैं, तो आई थिंक गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है आत्मनिर्भर के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, वो बहुत जरूरी है। और डिफेंस कॉरिडोर जिस तरीके से बने हैं, इससे आप देखते हैं कि इनोवेशन को एक स्फूर्ति मिलती है, और इस इनोवेशन के कारण आप देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। आप भारत के अंदर ही अपने हम बिहार, जैसे आप कह रहे हैं, बिहार वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर, और हो सकता है कई एक साल तक हमें ऐसे रहना पड़े, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स नॉट सो इजी, ये बहुत जो डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है इट इज वेरी वेरी नीच टेक्नोलॉजी, और उसको पाना आसान नहीं, चाहे वो सीकर्स हो या स्टिल्थ हो। और आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमने अमेरिका से तेजस के लिए अपने इंजन मांगे, और कहा हो 2 साल हो गए, 2 इंजन नहीं आ पाए, 2 साल हो गए, क्यों? हमने उनके भरोसा, उन्होंने कहा नहीं हमने तो फैक्ट्री बंद कर दी है, हम आपके लिए अभी बनाना शुरू करेंगे, इसमें लगे। पर अगर आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा फिर MCA प्रोजेक्ट जो है वो कभी भी नहीं रुकेगा। तो बहुत जरूरी है ये डिफेंस में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट, जो बीच बीच रुकावटें आती है ब्यूरोक्रेटिक, वो नहीं, वो सरकार ने हटा दिए, तो इससे जो है बहुत फर्क पड़ा है।
0: बनर्जी साहब, अगर 2013-14 की बात करें तो हमारा स्वदेशी रक्षा उत्पादन 43,786 करोड़ रुपए का था, जो अब 4 गुना के करीब बढ़ गया है। बतौर पत्रकार, नीतिगत स्तर पर वो कौन कौन से डिसीजन आप मानते हैं जो गेम चेंजर साबित हुए हैं रक्षा क्षेत्र में उत्पादन के नजरिए से?
2: पहली बात तो ये कि भारत सरकार ने कोई 5-6 साल पहले एक लिस्ट निकाली रक्षा मंत्रालय के लिए कि ये आइटम जो है अब हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, आपने इंडिया में ही बनाने हैं। वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो लिस्ट अपडेट होती रहती है, उसको इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रबर की सील है, कोई हेलीकॉप्टर में लगती है, हर कुछ घंटे की फ्लाइट के बाद बदली जाती है, वो इम्पोर्ट नहीं होगी। कुछ व्हीकल, आर्टिलरी गन इम्पोर्ट नहीं होगी, अब हम खुद बनाते हैं आर्टिलरी गन, ठीक है। पनडुब्बी, एक हैरानी वाली बात यह है कि हमने एक सबसे बड़ा विमानवाहक युद्धपोत बनाया है INS विक्रांत, जो हमने खुद बनाया है। नेवी के साथ अब 95-98% जो शिप है वो इंडिया में बनते हैं। हमने एक परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी यानी

0: एसबीएन जिसे बोला जाता है नेवल पार्लेंस में, आईएनएस अरिहंत और उसके तीन आगे की श्रेणियां बना चुके हैं, ये सब हम कर चुके हैं। जो नीति चेंज हुई वो ये चेंज हुई, छोटी छोटी चीजें जो हम इम्पोर्ट कर रहे थे वो इम्पोर्ट नहीं होंगी, मेटलर्जिकल पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स, हर हेलीकॉप्टर में, प्लेन में टैंक है उसमें या व्हीकल है उसमें मूविंग पार्ट होता है, वो इम्पोर्ट नहीं होगा। तो वो जो पॉलिसी आई वो फिर इंडियन इंडस्ट्री ने उसको टेक ओवर कर लिया। जैसे मिसाल के तौर पर आज सुखोई और MiG-29 लड़ाकू विमान है भारतीय वायुसेना के पास, तकरीबन सुखोई 270 और MiG-29 कोई 60 के आसपास है, और MiG-29 नेवी के पास भी है करीब 40-45, तो 100 वो हैं और 370 विमान है हमारे पास जो कि रूसी ओरिजिन के हैं। उनके स्पेयर पार्ट्स तो अब आ नहीं सकते रशिया से, वहां तो जंग छिड़ी हुई है, तो वो अब इंडियन एयरफोर्स यहां पर लोकल इंडस्ट्री के साथ बात करके उसको यहीं पर बनाने का प्रयास कर रही है। भाई डाईकास्ट तो है ही ना, पार्ट तो आपके पास है, उसको बनाइए स्पेयर पार्ट को। दूसरी चीज, ड्रोन यानी यूएवी बहुत एक महंगी टेक्नोलॉजी है, जटिल प्रणाली है, उसको आप इंपोर्ट करने की बजाय अब एयरफोर्स फिर से प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिला के कह रही है कि तुम बनाओ हमारे साथ मिलकर। एक और जटिल प्रणाली है जिसे बोलते हैं 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, उसको हमने नाम दे रखा है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब रक्षा मंत्रालय ने पहली बार निजी क्षेत्र को वो विमान के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो कि 5वीं श्रेणी का लड़ाकू विमान है उसको बनाने के लिए निजी क्षेत्र में 3 कंपनियों को, 3 कंसोर्टियम्स को इनवाइट करा है कि अपनी बिड दीजिए। ये पहली बार है कि निजी कंपनियों को बुलाया गया। अगेन निजी कंपनियों को फिर से एक बोला गया है सबमरीन्स में भी, जैसे मैंने आपको बताया कि परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी हम बनाते हैं, मगर परंपरागत पनडुब्बी जिसे बोलते हैं हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, वो उस पनडुब्बी अभी हम एक जर्मनी से बनने की तैयारी है, एक फ्रांस से पहले बन रही थी, अब उसको बनाने की भी तैयारी है इंडिया में। हेलीकॉप्टर अभी तक हम ALH बना रहे थे, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बना रहे थे, और अब हम अपने आप एक बड़ा हेलीकॉप्टर Mi-17 एक थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर होता है वो हम रूस से इम्पोर्ट कर रहे थे, अब उसकी जगह एक नया हेलीकॉप्टर आ रहा है उसे बोलते हैं इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। उसके हेलीकॉप्टर की 2 श्रेणियां होंगी, एक नेवी यूज करेगी और एयरफोर्स यूज करेगी। जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था 8-10 साल हमें पेस मेंटेन रखनी पड़ेगी तभी हम आत्मनिर्भर होंगे।
1: कुलकर्णी जी आपसे थोड़ा और समझना चाहेंगे, जैसा कि ड्रोन तकनीक का बैनर्जी साहब ने जिक्र किया, रक्षा मंत्री भी कहते हैं कि नीतिगत समर्थन और नई पहल बहुत जरूरी है, इनोवेशन, डिफेंस स्टार्टअप्स भी काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो भविष्य की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जैसे AI और ड्रोन, उस क्षेत्र में हम दुनिया के तमाम देशों की अगर तुलना करें तो कहां खड़े हैं और उस दिशा में क्या प्रगति हो रही है?
2: देखिए ड्रोन वॉरफेयर अब समथिंग हम लोगों को यकीनन उसके साथ अडॉप्ट होना है। हम देख रहे हैं ड्रोन वॉरफेयर किस प्रकार से जबरदस्त इस्तेमाल किया गया यूक्रेन और रूस की लड़ाई में, किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है ईरान के युद्ध में। तो ड्रोन वॉरफेयर तो बहुत ही जरूरी है, हमने खुद देखा ऑपरेशन सिंदूर में हमने किस प्रकार से एंटी ड्रोन पर पूरी कार्रवाई करके पाकिस्तान के जो ड्रोन है उनको गिराया, और वो भी ड्रोन जो पाकिस्तान को तुर्की ने दे वो गिराया, जो वो ड्रोन जो चीन ने पाकिस्तान को दिए वो गिराया। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत जरूरी है, हम धीरे धीरे करते, ये नहीं कहूंगा कि वी आर एट द बेस्ट, बट डेफिनेटली नाउ वी आर गेटिंग एट दैट लेवल, और इसको भारत के अंदर बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम इम्पोर्ट ही करते रहेंगे तो बहुत महंगा होगा ये। तो इस तरह आज की तारीख में अगर हम देखें स्टार्टअप देखें जरूर, चाहे स्टार्टअप के पास आपके पास चाहे नेविगेशनल लॉजिस्टिक हो या उसके सीकर हो या उसके पास फोटोग्राफिक, जैसे बहुत कुछ साधन है जो स्टार्टअप के पास है वो इस्तेमाल करें। तो बहुत जरूरी है इनोवेशन, बहुत जरूरी है ये स्टार्टअप को एनकरेज करना, बहुत जरूरी है रोबस्ट R&D, बहुत जरूरी है प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन और यूजर का उसके साथ इंटरफेस। यूजर को भी बहुत जरूरी है कि अपने आप को दूर ना रखे कि जब मेरे को सामान ला करके दिखाओगे तब मैं देखूंगा तब बताऊंगा, ना जी अब तो फेल हो गया ना। यूजर एंड मैन्युफैक्चरर का इंटरफेस चलता रहना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर हम ये हमारे लिए है, इस आत्मनिर्भरता तो भारत के लिए है, और जब बढ़िया बनेगा और सस्ता और अच्छा बनेगा तो ऑटोमेटिकली विश्व में उसकी मांग बढ़ेगी। कहा जाता है कि भारत के अंदर जब कोई भी सामान टेस्ट होता है तो हमारे जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है और टेस्टिंग जो पैरामीटर्स है जिसको GSQR हम लोग सेट करते हैं बहुत ऊंचे है, और वो उस मार्केट का जब एक दफा पास हो जाता है तो पूरा विश्व इंतजार कर रहा होता है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो स्मॉल आर्म्स हो, चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, उनको लगता है अगर भारत ने लिया है मतलब ये बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत सच में उसको इस्तेमाल करता है और जब इंट्रोड्यूस करता है बहुत कुछ देखभाल करने के बात करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे -50 डिग्रीज भी है +50 डिग्रीज भी है, तो दोनों तरीके के है हमारे में, तरह तरह के टेरेन कंडीशन है, तो ये सबको देखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग जब भारत के अंदर करते हैं। इसमें रक्षा मंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा, इनोवेशन बहुत जरूरी है, अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, जो चीज जरूरी नहीं कि जो चीज यूरोप में सक्सेस कर गई वो भारत में होगी, भारत का रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी

0: हम लोग ड्रोन को मद्देनजर रखते हुए, यूएवी को मद्देनजर रखते हुए, न्यू वॉरफेयर टेक्नोलॉजी, चाहे साइबर है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे स्पेस है, नेविगेशनल है, जियो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, हर एक चीज के साथ मिल करके अपना बनाना, अपने तरीके से उसको यकीन करना कि इसको कोई हैक ना कर सके, इसको कोई लड़ाई के मैदान में कोई भी हैकिंग नहीं होगी या जाम ना कर सके, जो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि हम भारत के अंदर बनाए और इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो भी बिजनेस कोई भी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो मुझे लगता है काफी थ्रस्ट दिया जा रहा है क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर बने हैं उसमें बहुत जरूरी है, या अगर ये हो जाता है फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ ने हमारे को एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है नेतृत्व रखी, तो बहुत जरूरी है कि डिफेंस सेक्टर में भी हम लोगों ने उसी आले दर्जे पे अपना प्रोडक्शन होना चाहिए, जिससे कि हमें गर्व होना चाहिए और हमको भी लगना चाहिए कि हमारे शक्ति से हमारा मनोबल ऊंचा हुआ।
1: बनर्जी साहब, जो आकाशवाणी के श्रोता दूर दराज के गांव से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमने बड़े बड़े आंकड़ों पर चर्चा की, वो ये जानना चाहते हैं जब भारत जैसे देश का रक्षा उत्पादन इस तरीके से बढ़ता है तो एक सामान्य नागरिक को और देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है।
2: इसके कई सारे आंसर। पहला आंसर ये है कि जब हम अपने आप ही बनाएंगे तो हमारे को सबसे पहली चीज फैक्ट्रियां खड़ी होंगी। फैक्ट्रियां खड़ी होंगी तो एक कारीगर चाहिए, और ये मैं लेबर की बात नहीं कर रहा हूँ, कारीगर की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, जब वो फैक्ट्री खड़ी होगी वहां 100-500 आदमी काम करेंगे, उनके आसपास हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल आएगा, जॉब्स आएंगी, और सबसे बड़ी बात, अभी तो डीजी सेक्टर ने शुरू नहीं किया, जब शुरू करेंगे अच्छी तरीके से तो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगाने पड़ेंगे। जब पैसे लगेंगे तो जो इंजीनियर हैं, R&D के इंजीनियर हैं, लड़के पढ़ लिख के आए हैं IIT से और इंजीनियरिंग कॉलेज से, उनको मौका मिलेगा। मेटलर्जिकल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, इन सब की जरूरत पड़ेगी। जब आप ग्रो करेंगे तो, जब आपके एक्सपोर्ट का ऑर्डर आएगा तो इन सब की जरूरत पड़ेगी। निचले स्तर पर कारीगर, मैं लेबर नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज ये एक बड़ा स्पेशलाइज टास्क है, दिस इज नॉट लेबर, वेरी स्पेशलाइज टास्क, तो आपको ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए, और वो ट्रेन्ड मैन पावर हमारी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या जो ITI है वो सिखाते हैं, वहां से लड़के लड़कियां चाहिए, ट्रेन मैन पावर। एक जैसे छोटी सी आपको उदाहरण देता हूं, एक जहाज में अगर एक रिवेट भी लगाना होता है वो एक स्किल्ड जॉब है, हाईली स्किल्ड जॉब है, कई सालों के परीक्षण के बाद वो लगता है एक रिवेट भी। जब आप जहाज में जाते हैं, एक सिविल एयरक्राफ्ट में जाते हैं, आपको उसके विंग पर रिवेट लगे देखेंगे जो उसको होल्ड करते हैं, बड़ा हाईली स्किल्ड जॉब है। और सोच लीजिए मिलिट्री में कितना हाईली स्किल्ड जॉब होगा, वो जब लड़ाकू विमान की स्पीड ही 2000 किलोमीटर है तो उसको एक डिफरेंट किस्म की फ्रिक्शन चाहिए, डिफरेंट किस्म का मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए आपको। MRO हब यानी मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल हब बनेंगे। साफरान एक इंजन मेकर है फ्रांस का, उन्होंने यहां बनाया, साफरान के इंजन रफाल में यूज होते हैं, तो आपको इंजीनियर चाहिए उनके। तो ये जॉब मार्केट पे इंपैक्ट करता है सबको, छोटे शहरों के लड़के लड़कियों को भी इंपैक्ट करता है जो कि पढ़ लिख के आगे जाएंगे।
1: जी हाँ कुलकर्णी जी, अगर इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, हमने भारत की उपलब्धियों की चर्चा की, थोड़ी चर्चा चुनौतियों की भी कर लेते हैं कि रक्षा निर्माण के क्षेत्र में अभी किस तरह की चुनौतियां हैं भारत के सामने और उसको डील करने के लिए सरकार किस तरह का काम कर रही है।
0: अपने को मालूम है ये हमारे दुश्मन कौन है, इसमें तो ये सोचने की तो बात नहीं, और पैदा हो सकते हैं दुश्मन, क्योंकि कोई भी जो इस तरह के देश है वो भारत को उन्नति तरक्की करते हुए देखना पसंद नहीं करते। सबको लगता है कि भारत गरीब है, तो भारत अपने बलबूते पे एक लोकतंत्र होने के नाते जिस प्रकार से धीरे धीरे करके उस पायदान पे जा पहुंचा है, वहां पर अगर अपने को रहना है उससे और आगे बढ़ना है। अगर नंबर 1 GDP वाला अगर $22 trillion का है, नंबर 2 तकरीबन 17-18 trillion का है, तो नंबर 3, 4, 5 पे नहीं रुक सकता है, उसको भी कम से कम 14-15 trillion की इकोनॉमी बननी पड़ेगी। तो अपने को बहुत आगे जाना है, उसमें बहुत जरूरी है कि हम सबने मिलकर के सोचा है ये हमारा देश है और उस देश को यकीनन जो भी है शक्ति में शांति है। हम जो इतना सब कुछ बनाते हैं लड़ने के लिए नहीं बनाते, यकीन करने के लिए, लड़ाई अगर होगी तो दूसरे जो भी लड़ेगा उसको मालूम है कि उसने मधुमक्खी के छत्ते में उंगली मारी है और अब वो मधुमक्खियां जो है भिनभिना गई, उनको नुकसान होगा, ये वो बात है। और इसके लिए हम लोगों को सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है हर एक फील्ड में। और ये कह रहे टेक्नोलॉजी पहले 10-15 साल में एक बार चेंज होती थी, अपने पास हथियार जो पुराने होते थे वो चलते, अब नहीं, टेक्नोलॉजी 3-5 साल में बदली हो जाती है। तो आज देखेगा कौन सा है वो स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3, फटाफट कौन सा जनरेशन है 1, 2, 3, 4, 5। अब हवाई जहाज देखिए, आपने रफेल इम्पोर्ट किया, 4.5 जनरेशन 5th 6th जनरेशन स्टिल। तो आप देखते किस तरीके से लगातार जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती है। जो जब आप भारत के अंदर हम बनाते हैं, हम आत्मनिर्भर होते हैं, तो हम उसको अपग्रेड करने की काबिलियत

0: हमें मालूम है हमने इसको किस तरीके से बनाया है, इसको किस पे जो चाहे वो इंडियन ओशन में हमें शिप्स इस्तेमाल करनी है।
1: कि जीत मेरी होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि जीत मेरी होगी। मैंने मेहनत करनी है, मैंने कोशिश करनी है, सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की, अब जिम्मेवारी मेरी है। जब ये माहौल एक पैदा हो जाता है देश के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि देश तरक्की के रास्ते पे है और देश जिस मकाम पर जाना चाहिए भारत को, वो मकाम जाएगा।
2: बैनर्जी साहब, कार्यक्रम में समय कम है, आखिर में आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए कि जब रक्षा उत्पादन भारत का बढ़ रहा है, तो इससे भारत की विदेश नीति और रक्षा कूटनीति को भी मजबूती मिल रही है? अगर हाँ तो कैसे?
3: जी बिल्कूल, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि हमने ब्रह्मोस 3 ऐसे मुल्कों को बेची है जिनका चीन के साथ रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है। वो साउथ चाइना सी में जो विवाद है उसका पार्ट है, वो उनमें से 2 एटलीस्ट, फिलीपींस और वियतनाम, और तीसरा इंडोनेशिया, जिसको हमने बेची है ये ब्रह्मोस। ब्रह्मोस बड़ी स्पेसिफिक ब्रह्मोस उनको बेची है कि लैंड से चलेगी टुवार्ड्स द शिप, जमीन से सामने के युद्धपोत पे मारने के लिए। दूसरी बात जो आपने पूछी, कैसे हमारी कूटनीति पे फर्क पड़ता है, हमारी कूटनीति पे जैसे तुर्की ने कुछ दिन पहले बोला कि भारत हमको इनसर्कल कर रहा है, आर्मीनिया को आम कर रहा है, साइप्रस को, ग्रीस को, जिस जिस से तुर्की की नहीं बनती उसको हम वेपन हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अब कूटनीति में एक और बात आती है, जैसे अब आप फ्रांस के साथ आपका बहुत अच्छा टाइप है, यूएसएसआर यानी अब सोवियत रशिया के साथ, और रशिया के साथ मॉस्को मान लीजिए बहुत अच्छा टाइप है विमान बनाने के लिए, इंजन बनाने के लिए, को प्रोडक्शन के लिए, टैंक्स को प्रोडक्शन के लिए, इंजन के, हमारे जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं उसमें साफरन नामक एक कंपनी है फ्रांस की, उसके इंजन लगे हुए को 20 साल से, इंजन यहीं इंडिया में बनते हैं, रॉ मटेरियल भी यहीं से आता है, यहीं के लड़के लड़कियां उन फैक्ट्रीज में काम करते हैं। दूसरी बात, एयरबस का C-295 विमान वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन लगी हुई है उसकी, कुछ इंपोर्ट होता है, कुछ यहां बनता है, कुछ तो बना रहे। मेरा मानना यह है एक टारगेट हमको रख के चलना चाहिए, हमने बहुत अच्छा काम किया, 1,78,000 करोड़ पे आ गए, मगर एक कहावत है ना कि अभी रास्ता बहुत लंबा है, और वो रास्ता वाकई में बहुत लंबा है। और इसमें एक तो हमारे मुल्क में एक बड़ी रियलिटी आनी चाहिए कि हम हर चीज को क्रिटिसाइज करना चाहिए, 30 साल लग गए जी 30 साल लगते हैं जहाज बनाने को, बिकॉज आपके को हाथ पकड़ के सिखाता नहीं है, कोई टीचर नहीं है वहां कि आपने ये बनाना, देयर इज नो टीचर, आपने खुद ही गलती करनी है, गिर के फिर सीखना है, और कोई बताएगा नहीं आपको कि इंजन कैसे बनेगा, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा विमान का डिजाइन कैसे और उड़ता क्यों है, कितना थ्रस्ट चाहिए इंजन को, इसमें वेपन कैसे लगेंगे, वेपन फायर कैसे होंगे, रडार ने वो वेपन कैसे उठाने हैं, जमीन से आपने जब मिसाइल चलानी है तो रडार की क्या फ्रीक्वेंसी है, रडार उसको पकड़ के मिसाइल को बताएगा ऑटोमेटिकली कि फायर कर दो, ये कुछ सिखाएगा नहीं, कोई देयर इज नो टीचर, आप खुद ही टीचर हो, तो लेट अस नॉट क्रिटिसाइज कि 30 साल लगे 20 साल लगे, लगते हैं इतने जी बिल्कुल लगते हैं, तेजस को 33 साल लगे जी बिल्कुल लगते हैं, परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी को 30 साल लगे जी बिल्कुल लगते हैं इतने, हम जर्मनी से या फ्रांस से या अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वो एक बहुत विकसित मुल्क है, हम भी एक डेवलपिंग कंट्री है। तो एक तो नो क्रिटिसिज्म, दूसरा R&D, वेरी स्ट्रांग R&D, अनुसंधान जिसे बोलते हैं हिंदी में, बहुत स्ट्रांग चाहिए हमें इस टाइम, नो शॉर्टकट्स, जहां शॉर्टकट लगा वहां खेल खत्म है, नो शॉर्टकट्स, बेंचमार्क शुड बी वेरी हाई, रक्षा मंत्रालय ने बेंचमार्क बहुत हाई रखे, अभी बेंचमार्क हाई रखना पड़ेगा, नो शॉर्टकट्स, R&D बहुत स्ट्रांग, ये वे फॉरवर्ड है।
2: कुलकर्णी जी, कार्यक्रम का आखिरी सवाल आपसे है, जैसा कि बैनर्जी साहब कह रहे हैं कि राह पनघट की आसान नहीं होती है लेकिन कदम तो बढ़ाने ही होते हैं, तो अगले 5 वर्षों में भारत के रक्षा उत्पादन के नजरिए से आप कहां देखते हैं?
1: मेरे को लगता है धीरे धीरे करके कम से कम अगर हम अपना इम्पोर्ट जो है 21% तक रखें और 80% हम अपना खुद बनाने की कोशिश करें, और जब हम खुद बना रहे हैं वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसमें कोई ये नहीं कट कॉर्नर्स करो ना, ये मानना करना पड़ेगा ये हमारा है और हमने इसको आले दर्जे का बनाना है। अगर हमने ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना है तो सबको लगना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम एक बात माने कि ये हमारे लिए बना है, हमने इसको इस्तेमाल करना है। मुझे लगता है वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर अगले 5 साल के अंदर। एक तो हमारा एक्सपोर्ट जो है मुझे लगता है उसमें काफी जबरदस्त बढ़ोतरी, अभी तकरीबन 40-45 हजार करोड़ का है, वो खुद ही 50 हजार करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, और अपना जो इंटरनल जो अपना डिफेंस प्रोडक्शन, जैसे अभी डोमेस्टिक प्रोडक्शन 1,78,000 करोड़ पे पहुंचा है, उम्मीद करता हूँ ये भी 3,00,000 करोड़ पार कर जाएगा। हमारे पास बहुत अच्छे दिमाग हैं, हमारे पास कैपिटल है, हमारे पास इच्छा है, करने की काबिलियत है, और हम करेंगे, चाहे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा हो, बट मेक इन इंडिया विल बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
2: आज की चर्चा से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि एक सशक्त राष्ट्रीय संकल्प है जो अब धरातल पर परिणाम देता दिखाई दे रहा है। यह बदलाव केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक स्वतंत्रता और वैश्विक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। जब किसी राष्ट्र के सैनिकों के हाथों में उसके अपने देश में बने हथियार और तकनीक होती है तब आत्मविश्वास भी बढ़ता है और रणनीतिक स्वायत्तता भी बढ़ती है। आयातक से निर्यातक बनने की ये यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन ये सफर हमें बताता है

0: है कि दूरदर्शी नीतियां, तकनीकी नवाचार और सामूहिक प्रयास किसी भी लक्ष्य को संभव बना सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ता रहे, हम नित नई ऊंचाइयों को छूते रहें, हमें कार्यक्रम में अनुमति दीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब आपका, अजय जी आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: थैंक यू।
2: जय हिंद।
3: अभी आप सुन रहे थे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है

श्रोताओं, जमाई राजा फिल्म से ये गीत आपने सुना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और एस जानकी की आवाजों में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में इसके बोल लिखी थी जावेद अख्तर ने। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं खूबसूरत फिल्म से ये गीत कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाजों में। संजय छेल की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने।

श्रोताओं, पुकार फिल्म से ये गीत आपने सुना, शंकर महादेवन, कृष्ण कविता कृष्णमूर्ति और साथियों के स्वर में। मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था A.R. रहमान ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं A.R. रहमान के संगीत निर्देशन में गुलजार का गीत, उदित नारायण और महालक्ष्मी की आवाजों में, दिल से फिल्म से।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में दिल से फिल्म से ये गीत आपने सुना उदित नारायण और महालक्ष्मी की आवाजों में। गुलजार की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था ए आर रहमान ने। श्रोताओं, इन गीतों के साथ ही फिल्म

गीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 10:30 हुए हैं, श्रोताओं वक्त है शास्त्रीय संगीत का। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित मणि प्रसाद से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग कौशिक ध्वनि, विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है। मुखड़े के बोल हैं हे राजा राम, द्रुत ख्याल की बंदिश तीन ताल में निबद्ध है। मुखड़े के बोल हैं पिया बिना आई। तो आइए सुनते हैं पंडित मणि प्रसाद से राग कौशिक ध्वनि में ख्याल गायन।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे पंडित मणि प्रसाद से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग कौशिक ध्वनि। श्रोताओं, इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का हमारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी समाचार, तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार। प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमिया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6वां सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
2: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर 4th प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। सुबह 5:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।